0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.

0: FM2, Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: गुरुवार 10 सितंबर की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे है.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
0: Radio

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: सुबह के 5:06 हुए हैं. कल रात सपने में और हर रात सपने में आप ही आप आते हो और हमारी हकीकत को भी आप खूबसूरत बना जाते हो. वो है आप हमारे प्यारे लिसनर्स, हमारे प्यारे हम सफर. स्वीकार करें नीतू का कर्ज और प्रणाम. कैसे हैं माय डियर लिसनर्स? गुड मॉर्निंग एवरीवन. थर्सडे मॉर्निंग ऑलरेडी एंड रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है. मौसम कुछ बेईमान है, ठंडी हवाएं बह रही है, ठंड भी पड़ रही है, ऊपर से बारिश भी कहीं कहीं हो रही है. जस्ट बी वेरी केयरफुल, स्पेशली अगर आप निकल चुके हैं घर से, रास्ते पर हैं, ड्राइव कर रही है, मत भी कि आपके यहाँ पानी ना हो, बारिश ना हो, कहीं भी बारिश हो सकती है. डू लेट मी नो ऑन साइट कात नफ नफ दोज नफ कात 5499-1294 पर, ताकि जो बाकी रोड यूजर्स है एटलीस्ट उनको तो पता चल जाए. दे हैव टू बी प्रिकॉशियस. व्हाट से सो 5499-1294 पर ही आपके मैसेजेस, आपके अपनों के नाम पैगाम का इंतजार. 7 बजे तक ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ इन राहों में आपको ले चले हैं जो है गोल्डन एरा.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 5:18, time for some of your messages. Pranam Radio Musti, aur aap hai Satch Hospital se. Mr. Jason, saath mein Temba, Omiran, Danu, Jiban, Angotia, Akash. साथ में है शर्वन मेविन एंड थैंक यू. हम आपको कहेंगे दोस्त जो आप हमारे हम सफ़र बने हुए हैं और इन गानों के साथ जुड़े हुए हैं. गुड मॉर्निंग धीरज, आयुष, विदिशा, साथ में अश्विन, ज्योति, ग्रांडसन अरविक, हरक परिवार, मौदा ब्यासे, आज विजल साथ देने के लिए थैंक यू. कैसे हैं आप शीला जी, लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशन से सब ठीक ठाक. गुड मॉर्निंग आपको नुशरीन एंड सभी दोस्त जो इस वक्त काम पर हैं एट फिलिंग स्टेशन. आपको भी अब्दुल, सायरा बानू, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू. गणपति बप्पा मोरिया, साधना, मुकेश लाल माची से हैं और राम राम आपको भाई सूरज शर्मा, सजादा एंड पूरे परिवार. विंडी वेदर इन थ्रियोले, यस प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. और ऐसा नहीं है कि बस आप नॉर्थ में हैं तो वहाँ पर सिर्फ गर्मी है, बिल्कुल नहीं, हवाएं बह रही है. यू जस्ट बी वेरी केयरफुल. 5499-1294 पर चले हमारे साथ जुड़े रहे. यहाँ पर है कौन? इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग. प्रणाम आपको जय गणेश. आपके नाम बहन है बेटा नितेश और सब फ्रेंड्स मिला रामदिकल मोताब्लॉन्च से आपके नाम पूरे परिवार के लिए भी. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू ज्योति फ्रॉम शतु बिनागस, आशनी, रेखा, सुरेखा, एज यूजुअल माधव परिवार. गुड मॉर्निंग आपको मिस्टर दीपक एंड गुजरात टू हमारी टीम. थैंक यू सो मच.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 5:33 पिनाटून से बढ़कर कौन है भाई, सबसे पहले उन्हीं की तो पूजा होती है, सुगणपति बप्पा मोरिया, और गणेश जी का आशीर्वाद उनकी कृपा आप सब पर रहे। बस सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करें, सब मंगल ही होगा। अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपको भी, हैप्पी बर्थडे टू विशाल, राम सरन, बेस्ट विशेज आपकी बेटी अनुष्का, अवनी, स्नेहा, सभी राम रतन, राम सरन परिवार की ओर से, एंड ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती परिवार की ओर से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे आप हैं ऑन सुजोशे से। नेक्स्ट गाना आपके नाम प्लेंदी पापा से प्रेमिला जी, पति है रंजीत, और आपके सभी परिवार के नाम। यहाँ पर प्रेमा जी कहती है, तेज हवाएं बह रही है पुत्र दो में, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, रास्ते पर होंगे जितने भी लोग, ड्राइव केयरफुली। गुड मॉर्निंग नीमा जी बन, आप है मौदाल बेसी, गाना आपके पति, और काम विशाल काम पर जा रही हैं, तीन बेटे यादव, नीलेश और वीरेश, और हमारी टीम के लिए भी थैंक यू सो मच माई डियर। आपको भी गणपति बप्पा मोरे, आपके पिक्चर मैसेजेस के लिए, कैसे हैं इंदिरा जी, रेशमा, विमलन, जो कृषा, केशव, नील, माई शाता, अनिया, मोता, ब्लॉन्श से सब परिवार के नाम। तो जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस ये अगला गाना आप सभी के नाम।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musti.
2: रफी साहब मन्ना डे की आवाजों में ये है अभिलाषा फिल्म का सदाबहार गाना। इस गीत के बाद आपका होरोस्कोप।

0: चले महफिल में आज का दिन कैसा रहेगा?
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
0: And as usual, आपके साथ शुरुआत करते हैं.
2: Aries मेष राशि.
0: वल आज आपका प्रभाव और मान सम्मान दोनों बढ़ सकते हैं. राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रहेगा. उनकी प्रतिष्ठा मजबूत रहेगी. हालांकि किसी की कही बात को दिल से लगाने से मन परेशान हो सकता है. छोटी सी बात को बड़ा बनने से बचे और धैर्य बनाए रखे.
2: टॉरस वृषभ राशि.
0: आज संपत्ति और निवेश के मामलों में भाग्य आपका साथ दे सकता है. एक साथ कई जिम्मेदारियां आने से व्यवस्था रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का लंबे समय से देखा सपना पूरा होने के संकेत है. वैसे कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से उत्साह बढ़ेगा. हालांकि किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा ना करें.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
0: आज आपके अच्छे काम और समाज सेवा आपकी पहचान को और मजबूत कर सकते हैं. नई कोशिशों में सफलता मिलेगी. आपकी तारीफ भी होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए. मन आज थोड़ा मौज मस्ती में रहेगा. दैट्स व्हाई जरूरी काम टालने से बचे प्लीज. और परिवार में विवाह से जुड़े किसी रुकावट को दूर करने में किसी करीबी का सहयोग मिल सकता है.
2: कैंसर कर्क राशि.
0: ऑलराइट, आज का दिन कई अच्छी संभावनाएं लेकर आएगा. हालांकि मन किसी बात को लेकर थोड़ा बेचैन रह सकता है. भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर बनेंगे. कार्यक्षेत्र में कोई आपके ऊपर गलत आरोप लगाने की कोशिश कर सकता है. दैट्स व्हाई अपनी बात समझदारी और शांति से रखें. संतान की उपलब्धि आपको गर्व और खुशी देगी. स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, लेकिन पेट से जुड़ी परेशानी को भी आप नजरअंदाज ना करें.
2: लियो सिंह राशि.
0: आज का दिन सामान्य से बेहतर रहने वाला है. पड़ोस या आसपास के विवादों में पड़ने के बजाय दूरी बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा. पुराने लेन देन की कोई उलझन सुलझ सकती है. अपने काम की जिम्मेदारी खुद संभालें और दूसरों पर जरूरत से ज्यादा प्लीज निर्भर ना रहे.
2: वर्गो कन्या राशि.
0: वल आज सफलता के नए दरवाजे खुल सकते हैं और तरक्की की राह भी आसान होगी. लंबे समय से अटका हुआ सरकारी काम पूरा होने की उम्मीद है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. निवेश में पढ़ाई बल्कि विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. बड़ों से हुई बातचीत आपकी किसी बड़ी उलझन का समाधान दे सकती है.
2: लिब्रा तुला राशि.
0: आज आपकी मेहनत आखिरकार अपना असर दिखाएगी और आपको उसका पूरा लाभ मिल सकता है. फ्यूचर को सुरक्षित बनाने के लिए धन निवेश की कई योजनाएं जो है उन पर आप विचार करेंगे.

0: कानूनी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सतर्क रहे। किसी सहयोगी की बात मन को ठेस पहुंचा सकती है। वैसे परिवार का कोई सदस्य नौकरी के सिलसिले में दूर जा सकता है, जिससे घर का माहौल कुछ भावुक हो सकता है।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज आपका दिमाग नए विचारों से भरा रहेगा और कई शानदार योजनाएं सामने आ सकती है। व्यापार में नई शुरुआत भविष्य में अच्छा लाभ दे सकती है। जीवन साथी के करियर में भी कोई नया अवसर दस्तक दे सकता है। आय में बढ़ोतरी से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, मन भी प्रसन्न रहेगा। लंबे समय से अटका कुआ काम पूरा होने से बड़ी राहत मिलेगी।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज पैसे के लेन देन में विशेष सावधानी बरतना जरूरी होगा। आपका निर्णय यानी कि डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन किसी के बहकावे में आकर फैसला लेने से बचे। बड़ों की कोई बात आपको थोड़ी बुरी लग सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई सहयोगी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,

0: जी हाँ, आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आएंगे। यात्रा या घूमने फिरने के दौरान कोई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो आगे आपके काम आएंगे। वैसे जिम्मेदारी या सम्मान मिल सकता है अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो। नया वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। पुरानी लेन देन से जुड़े कोई बात थोड़ी चिंता दे सकती है, लेकिन संतान की ओर से मिलने वाली खुशखबरी पूरे दिन का माहौल खुशनुमा कर देगी।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आपके आसपास खुशी और मौज मस्ती का माहौल रहेगा। छोटे बच्चे के साथ बिताया समय आपकी सारी थकान और तनाव दूर कर सकता है। बड़ों की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट या सुखद समाचार मिल सकता है। यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान का ध्यान जरूर रखें। धन और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत हैं। स्वास्थ्य से जुड़े परेशानी, पुरानी परेशानी वैसे उसमें राहत मिलने से मन हल्का होगा और कोई खास इच्छा भी पूरी हो सकती है।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: फाइनली आपके लिए आज भागदौड़ कुछ ज्यादा रहेगी और कई कामों के कारण मन थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर सकता है। जिम्मेदारियों में लापरवाही करने से आगे परेशानी हो सकती है, इसलिए हर काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा, वरना परीक्षा के समय मुश्किल हो सकती है। दूसरों के मामलों में बिना जरूरत सलाह देने से बचें और आपके भीतर ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी, बस उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक एंड ए वेरी गुड डे अहेड।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: इधर आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. कलेवानी वंदना शालिनी विश्वमार सितुंदरम हमारी पूरी टीम के नाम थैंक यू सो मच. विशिंग बेबी कियारा पूरन अ वेरी हैप्पी बर्थडे ब्लेसिंग्स ममा रीमा पापा सूरज भाई रियांश दादी अमृता चाचा रोशन सब परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. ये अगला गाना गुजारती हूँ. माय ब्लेस्ड थर्सडे आपको अंजनी जी. नमस्कार रेडियो मस्ती टीम. हेमा भंजन आप हो माय डियर भजन फ्रॉम पुएर्टो पिमो. कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आप सब ठीक? बस नेक्स्ट गाना गुजारती हूँ आपके पूरे परिवार के नाम. ओम श्री गणेशाय नमः आपके लिए सुया जी एंड बिहारी परिवार फ्रॉम कुंगुमा. यही अगला गाना आपके नाम चलाते हैं. यहाँ पर ब्रोइन लो राज बिहारी और बहना है सिस्टर लाजवंती बिहारी. आप दोनों रहते हैं कौ काहुल केन्या और आज दोनों अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. तो सभी परिवार नेमली बिहारी चंदी परिवार की ओर से आप सबको हमारी ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं. और ये गाना हम मिली जाएगा 6 बजे के समाचारों की ओर.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti. The Masti.
4: Shivaji hai. सुनिया संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति नमस्कार.
5: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार. नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सीईओ कुणाल नाइक और चेयरपर्सन नादिया पीगन ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को गांजे से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय रणनीति की रिपोर्ट सुपुर्द की. इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त हुई सिफारिशें शामिल हैं. ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए आम जनता और विभिन्न संबंधित पक्षों से 1800 से ज़्यादा सुझाव और राय इकट्ठा की गई थी. मंत्रिमंडल को सौंपे जाने से पहले नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के स्तर पर इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी. कुणाल नाइक ने प्रधानमंत्री को नैडेक के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में भी जानकारियां दी. उन्होंने बताया कि प्रधान

0: मंत्री की तरफ से उन्हें इन समस्याओं का समाधान तलाशने में पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन मिला है। शागोस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगेगा। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर दूसरे वर्किंग सेशन के लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि और मॉरिशन अधिकारियों के बीच बातचीत चलेगी। बरतानी संसद में कल हुई बहसों में शागोस का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया। कंजर्वेटिव नेता केमी बाथेनोच ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जेगो गार्सिया की लीज पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार क्यों हैं, जबकि वे बरतानी रक्षा बजट के लिए फंड देने से इनकार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 87 अन्य लोगों के बारे में पता नहीं चल रहा। इस पर्यटन नौका एमवी जून से 42 लोगों को बचाया जा सका है। हादसे के वक्त क्रू 10 सदस्यों सहित नौका पर 134 लोग सवार थे। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। अब हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो आज शाम 4 बजे तक के लिए बरकरार रखी जाएगी। मस्कारेंस के दक्षिण में पाई जाने वाली जोरदार आंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज दिन के दौरान रहकर पश्चिमी इलाकों पर बारिश होती रहेगी, ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ऊंचाई वाले जगहों और खासकर गाड़ी चलाते हुए क्रॉस विंड्स वाले इलाकों में खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा, 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर दक्षिणी तथा पश्चिमी लगूनों और तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। इसलिए खासकर मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से इन इलाकों से बचने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:10 पर सूर्योदय, शाम को 6:03 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

किसी और चीज में पागल होने से बेहतर है कि आप प्यार में ही पागल हो जाए. वाट से 6:10 वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन आप सभी को. नीतू आपके साथ बस और थोड़ी देर विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. आपके मैसेजेस ऑन 5499 1294 एंड काफ़ी लोग काम पर जा रही है तो सबको बों को आज डेफिनेटली विश करना चाहेंगे. यहाँ पर ललिता जी

एंड फैमिली साथ देने के लिए थैंक यू माय डियर. सो आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294. कहीं बारिश कहीं तेज हवाएं बह रही हैं. हाँ, आपने सुना ना, 2 डिग्री से आज भी कम होंगे टेम्परेचर. सो स्वेटर वगैरह अपने साथ लेते रहिए क्योंकि काफ़ी लोग बीमार पड़ रही है, सर्दी खांसी ये सब वो. सो आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिएगा. हाफ जो ब्रेकफास्ट पानी पीजिएगा, जूस पीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा एंड अभी सुबह सुबह मिस मत कीजिएगा अपना ब्रेकफास्ट. एंड घर से निकल रही है वंस अगेन बो कुराश टू यू बोल.

लगे हाथ वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार आपको रेखा एनांश आपका बेटा पूरे परिवार मोजो से साथ निभाने के लिए थैंक यू आपको भी प्यारी सी पारुषी परिधि प्रीतमी प्रियान परिवार कैथकोबोन से

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: ये उन सभी के नाम जो घर से निकल तो रहे हैं लेकिन थोड़ी सी नज़र पड़ोसी की ओर भी या फिर उनकी नज़र शीशे पर भी पड़ जाए, बस घर से निकल रही है. सो बी वेरी केयरफुल. उदित नारायण की आवाज में लवली ट्रैक्स फ्रॉम द 90s. 6:18. घर से निकल ही रहे हैं तो सबको गुड मॉर्निंग, बोंजू या फिर नमस्ते, प्रणाम सबको विश करते चले. एक स्माइल आपके चेहरे पर, एक स्माइल दूसरों के चेहरे पर भी. हैप्पी 15th बर्थडे टू प्रिंसेस नहेजा रागिया रेन इन आइलैंड, प्रयास, जेसिका, रविश, प्रिशा, लवशा फैमिलीज, डियर वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार आपको.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:25 6:30 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन तनुष के बाद वेदिता के साथ ऑफ कोर्स मस्ट मॉर्निंग बल्कि मॉर्निंग बीट

हेडलाइंस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के अधिकारियों ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को गांजे से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय रणनीति की रिपोर्ट सुपुर्द की। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त सिफारिशें शामिल हैं। शागोस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच

0: अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सीईओ कुणाल नाइक और चेयरपर्सन नादिया पिरन ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन नवाब गुलाम को गांजी से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय नीति की रिपोर्ट सुपुर्द की। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त सिफारिशें शामिल हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए आम जनता और विभिन्न संबंधित पक्षों से 1800 से ज़्यादा सुझाव और राय इकट्ठा की गई थी। मंत्रिमंडल को सौंपे जाने से पहले नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के स्तर पर इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। कुणाल नाइक ने प्रधानमंत्री को नादेक के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में भी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें इन समस्याओं का समाधान तलाशने में पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन मिला है। नादेक के सीईओ को सुनते हैं।
1: C'est un processus qui est inclusif. Nous avons consulté plus de 1800 personnes qui ont contribué dans le rapport à travers le deepening qui nous fait à l'ANADEC, à travers le plateforme online qui nous fait, à travers un focus group qui nous fait avec mes patients, mes immunes qui nous affectent directement, mes parents, et aussi mes consultations nationales qui nous fait. Ce n'est pas un rapport qui n'ADEC qui nous fait là, c'est un rapport qui nous fait par mes experts de différents ministères, de différents backgrounds aussi, incluant le Attorney General's Office, tenant le National Human Rights Commission, tenant le FSL, tenant mes experts dans l'addiction, mes experts en médecine, et mes anthropologues. Donc, c'est un rapport qui nous fait, qui peut vraiment prendre en compte un aspect scientifique de toute sa question qu'il appelle autour de cannabis. Il nous explique qui problématique et non, bien sûr, il les a au courant. Il nous explique aussi qui mène d'affaires qui nous peut remettre en place. Et même cause aussi, même si blocage qui nous peut gagner et qui est aligné avec nous, il peut donner tout notre soutien qui nous peut besoin. Donc, moi satisfait de ce côté-là et moi remercie bien sûr qui se peut croire dans nous.
0: 20 साल हुए हैं जब से देश में मेथाडोन सब्स्टिट्यूशन थेरेपी प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस साल 10 जुलाई तक 8,118 लोगों को इस प्रोग्राम से लाभ हुआ है। उन्हें देश भर में कथित 70 डिस्पेंसिंग केंद्रों पर रोज दवा का डोज मिलता है। इस इलाज का औसत सालाना खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 16,356 रुपये पड़ता है। आज ये मॉरिशस ये प्रोग्राम राष्ट्रीय हार्म रिडक्शन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंकड़ों से परे मेथाडोन कई लोगों के लिए अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी स्थिर करने और धीरे धीरे आम जीवन में लौटने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। पेश है विधिमा सिबोरन की रिपोर्ट।
2: एक पूर्व नशा करने वाले व्यक्ति को मेथाडोन उपचार लेते हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं। वो बताता है कि उसने 25 साल की उम्र में ड्रग्स लेना शुरू किया था। आज वो 51 वर्ष के हैं। वो बताता है कि मेथाडोन उन्हें बेहतर महसूस कराने और सक्रिय रहने में मदद करती है, खासकर उनके काम में। लेकिन 36 घंटे तक मेथाडोन न मिलने पर वो जल्दी ही खुद को बेदम या लाचार महसूस करने लगता है। मेथाडोन नुकसान कम करने कार्यक्रमों का हिस्सा है, विशेष रूप से नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेने वाले लोगों में एचआईवी के संक्रमण को कम करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के हार्म रिडक्शन यूनिट के प्रमुख डॉक्टर नीतीश राज सुकुल इस बात पर जोर देते हैं कि संबंधित 92% मरीज नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेते थे। वे बताते हैं कि मेथाडोन का वितरण पेशेवरों की एक टीम की देखरेख में किया जाता है।
3: Il est dispensé par une équipe pluridisciplinaire qui comprend psychiatre, psychologue, médecin qui a l'expérience dans le domaine, man specialized harm reduction nurses, specialized harm reduction HCAs et aussi avec le concours de ban NGOs qui offert ce service par rapport à la prise en charge sur le plan réhabilitation et éventuellement réinsertion dans la société.
2: इमरान धनु, जो इद्रिस गुमानी सेंटर के अध्यक्ष हैं, के अनुसार मेथाडोन एक अधिक प्रभावी विकल्प उपचार साबित हुआ है। हालांकि उन्होंने उपचार के दौरान उचित मार्गदर्शन और सहायता के महत्व पर जोर दिया है।
4: Définitivement, on a une partie d'immune de par la nature de ce discours, de cet historique de consommation, je trouve bizarre. La prise de méthadone tous les jours, parce qu'il y a une maladie chronique, mais vous pensez la même d'immune qui aurait dû réduire cette dose.
2: आंकड़ों से परे मेथाडोन कई लोगों के लिए उनके दैनिक जीवन को स्थिर करने और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का एक जरिया है।

0: शागस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगेगा। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर दूसरे वर्किंग सेशन के लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की प्रतिनिधि और मॉरिशस अधिकारियों के बीच बातचीत चलेगी। बरतानी संसद में कल हुई बहसों में शागस का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया। कंजर्वेटिव नेता केमी बादेनोक ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जेगो गौसिया की लीज पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार क्यों हैं, जबकि वे बरतानी रक्षा बजट के लिए फंड देने से इनकार कर रहे हैं। उनको सुनते हैं।
1: I'll tell you what he is funding though, Mr. Speaker. Keir Starmer's £35 billion surrender of the Chagos Islands and its crucial military base. That is British sovereign territory. This is a weak decision and it is no wonder that Argentina is now threatening the Falklands. We need to project strength. We need to show that British sovereign territory is non-negotiable. So why, just like Keir Starmer, is he planning to surrender the Chagos Islands? We are talking about paying £35 billion to give away British territory. And all of that is happening while his government is cancelling £30 million of vital training for British soldiers. To govern is to choose. So why is he choosing to send £35 billion to Mauritius when they cut the money to train our troops?
0: जबकि जवाब में बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने बल देकर कहा कि यूके जेगो गौसिया में अपना सैन्य अड्डा नहीं छोड़ेगा और इस बारे में अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव नेता को इस मुद्दे के संबंध में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एंडी बर्नहम को सुनते हैं।
2: Mr. Speaker, I have to say to the right honourable lady, she does have to do better than that. I mean, they are the worst kind of points to be scoring when the country is watching. We will not surrender our base at Diego Garcia. We are in discussions with the United States about that. And we will always respect the rights of the Falkland Islanders to choose to be British. That will never change under this government. And we will be relentless in defending that.
0: पिछले कुछ दिनों के दौरान देश में काफ़ी बारिश पड़ी है, लेकिन पानी के भंडार पर दबाव कम करने के लिए ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के महानिदेशक श्याम तानु के अनुसार महुआ कुआ जलाशय में पानी का स्तर अभी भी लगभग 39% है। उनका अनुमान है कि अगर जल स्तर लगभग 40% हो तो भंडार का संचालन करना आसान होगा, जबकि 20% से नीचे जाने पर स्थिति चिंताजनक हो सकती है। इस कारण से देश में पानी के इस्तेमाल को लेकर पाबंदियां अभी भी बरकरार हैं। CWA ने मौजूदा भंडार को अगले नवंबर या दिसंबर महीने तक बचाकर रखने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही नीतियों में किसी भी संभावित बदलाव पर विचार करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा। विस्तार विधि मासीपुरन के साथ।
3: L'invalia du jour au niveau de réservoir Mahuvacua et Nicolier n'a pas arrivé à un niveau confortable que le cas
4: Mahuvacua aur la Nicolier mein jal star ki sthiti utni achhi nahi hai jahan par hum apne faisle par phir se gaur kar sake jaisi sthiti pai ja rahi hai to filhal pani ke vitaran ki samay sarini par badlav nahi kiya ja sakega pichli bar humne bataya tha ki Mahuvacua mein jal star 39% tha jab wo 20% se kam ka hoga to isme se pani nikalna namumkin hoga। इस स्थिति को नवंबर दिसंबर तक झेलनी पड़ेगी। मौसम विज्ञान हमें जानकारी देता रहेगा जिससे हम अपने फैसले पर पुनः विचार कर सकें। जो जरूरी है वो ये कि जनता से पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है।
0: पॉब्लेमोसिस की अदालत पिछले 26 अक्टूबर को रिश्तेया के एक हाइपरमार्केट के सर्वेलेंस कैमरे के फुटेज को सबूत के तौर पर स्वीकार करने के बारे में अपना फैसला सुनाएगी। ये तस्वीरें पूर्व मंत्री कल्पना कुंजुशा के मुकदमे के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, जिन पर चोरी और चोरी का सामान रखने के आरोप लगे हैं। इस मामले में कल 3 गवाहों के बयान लिए गए। हाइपरमार्केट के सिक्योरिटी मैनेजर त्यागूर, CID के एक सर्जेंट और पुलिस IT यूनिट के अधिकारी, उन्होंने अदालत को बताया कि हाइपरमार्केट के कंट्रोल रूम में मौजूद सर्वर से रिकॉर्डिंग निकालने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सीनियर काउंसिल आइवान कोलेंडाविलू के नेतृत्व

0: में बचाव पक्ष इस फुटेज और पुलिस आईटी यूनिट द्वारा तैयार की गई आईटी रिपोर्ट को पेश किए जाने का विरोध कर रहा है। बचाव पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट वीडियो की असलियत साबित करने में नाकाम रही है। कल्पना कुंजुशा ने खुद को बेगुनाह बताया है। उनका कहना है कि वे कॉस्मेटिक सामानों के पैसे देना भूल गई थी जो उनकी बाकी खरीदारी से अलग रखे गए थे। ट्रैवल एजेंसी ब्लू कनेक्ट लिमिटेड के पूर्व टिकटिंग एजेंट केल्विन सुताना को कल इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि उसने ज़रूरी फीस दिए बिना कूपन कोड का इस्तेमाल करके एयर फ्रांस की बुकिंग में बदलाव किए। जुलाई 2024 और अगस्त 2025 के बीच कथित तौर पर 34 यात्रियों की 28 बुकिंग की गई। इनमें से कुछ बुकिंग उसने अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए की थी। ब्लू कनेक्ट लिमिटेड को हुए आर्थिक नुकसान का अनुमान 70,000 यूरो यानी लगभग 35 लाख रुपए से ज़्यादा है। बताया जाता है कि एयर फ्रांस के इंटरनल ऑडिट के दौरान इस धोखाधड़ी का पता चला है। सीसी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया है। वाकवा के रहने वाले इस व्यक्ति के घर की तलाशी के दौरान एक मोबाइल फ़ोन, एक टैबलेट और एक लैपटॉप जब्त किया गया। एफसीसी की एक और जांच इस बार धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दागुचिया रहने वाले 32 साल के हंसराज कृष्णा को एक कल गिरफ्तार किया गया। पेशे से चालक, उस पर आरोप है कि उसने खुद को एफसीसी का अधिकारी बताकर गाड़ियों की बिक्री के नाम पर पैसे ऐंठे। पीड़ित ने एफसीसी को इसकी सूचना दी थी। उसके घर की तलाशी में एक लैपटॉप, एक यूएसबी ड्राइवर और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया। एफसीसी को शक है कि और भी लोग इसके शिकार हो सकते हैं और उसने प्रभावित लोगों से कमीशन के संपर्क के साथ संपर्क करने की अपील की है। कल बेल एंड रिमांड कोर्ट में मेडागास्कर के व्यवसायी मामी हवा तुमांगा की जमानत अर्जी पर गवाहों की सुनवाई पूरी हुई और सुजियात ग्रुप जो खेती और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री समेत कई सेक्टर में काम करने वाली मेडागास्कर की एक बड़ी होल्डिंग कंपनी है, उसके सीईओ ने मेलरोज हाई सिक्योरिटी कैद खाने से वीडियो लीक के जरिए गवाही दी जहां उन्हें रखा गया है। मामी हवा तुमांगा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि एफसीसी ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वे एक इन्वेस्टर हैं और अपराधी नहीं। मॉरिशस में जल्द ही बुजुर्गों के लिए एक ऑम्बुड्स पर्सन की नियुक्ति होगी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों के अनुसार चयन प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। हालांकि इस नए संस्थान की स्थापना बुजुर्गों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए चल रहे लेजिस्लेटिव कार्यों पर निर्भर करती हैं। पिछले मार्च महीने में कैबिनेट ने प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्संस एक्ट की धारा 9 लागू करने की मंजूरी दी थी, जिसमें दुर्व्यवहार के मामलों में प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का प्रावधान भी किया गया है। मॉरिशस में एजिंग पॉपुलेशन के मुद्दे पर कल हुई सलाहकारी कार्यशाला और अलग अलग पीढ़ियों के बीच सॉलिडारिटी डायलॉग्स की शुरुआत के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। विस्तार शैली निर्बन और विधि मासी बोरन के साथ।
1: L'année dernière, on n'a pas encore fait ça. Il prend un petit peu de temps parce qu'il ne faisait pas tout le même procédure légal. On a fait confirmer même au particulier qu'il était là.
2: पिछले साल से हम इसकी शुरुआत करना चाहते थे। इसमें समय लगता है क्योंकि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। एक मंत्रालय ने अब अपनी राय दी है। ओम्बुड्स पर्सन फॉर वी एल्डरली जरूरी होगा ताकि वृद्ध लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। बहुत जल्द नए कानून लाए जाएंगे जहाँ प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जाएगा। ये सब कानूनी कार्रवाई है, कानून को तैयार करना पड़ता है और ये राष्ट्रसभा के कार्यों पर निर्भर है।
0: अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है जबकि

87 अन्य लोगों के बारे में पता नहीं चल रहा। इस पर्यटन नौका एमवी जून से 42 लोगों को बचाया जा सका है। हादसे के वक्त क्रू सदस्यों सहित नौका पर 134 लोग सवार थे। में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है, जो आज शाम 4 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज दिन के दौरान पूर्वी पश्चिमी इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं और रह रहकर बारिश होती रहेगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ऊंचाई वाली जगहों पर न जाने और खासकर क्रॉसविंड्स वाली जगहों पर गाड़ी चलाते हुए खास सावधानी बरतने की मांग की जाती है। प्रवालिका के परे समंदर खराब रहेगा, 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिसका असर तटीय इलाकों और लगूनों खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों पर पड़ेगा। इसलिए मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से और आम जनता से इन तटीय इलाकों और लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सामान्य से कम 2 डिग्री कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह 6:10 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:03 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के अधिकारियों ने कर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन गुलाम को गांजे से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय रणनीति की रिपोर्ट सुपुर्द की। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त सिफारिशें शामिल हैं। शागोस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस लगेगा। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर दूसरे वर्किंग सेशन के लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि और मॉरिशन अधिकारियों के बीच बातचीत चलेगी। मॉरिशस में जल्द ही बुजुर्गों के लिए एक ओम्बुड्स पर्सन की नियुक्ति होगी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुबों के अनुसार चयन प्रक्रिया अंतिम चरण पर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत। देश विदेश की इन खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फैजान हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए। उचाना लेन लेस्काली में, उचाना लेन लेस्काली में 73 साल की 73 years old श्रीमती गीता उचाना, श्रीमती गीता उचाना, पैदाशी नाम सीमा थ्री, जो गीता नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ थी आज दिन के 1:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनके मकान उचाना लेन लेस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1:30 PM। लाहू थोंकिल वाकवामी, वो थोंकिल वाकवामी 94 साल की 94 years old श्रीमती सीता रघुवर, श्रीमती सीता रघुवर जो तारा नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान गोथों किलवाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वा मामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिश

Today at 1 p.m. रेलरोड लासूजीन लेस्कालिये में रेलरोड लासूजीन लेस्कालिये में 78 साल की 78 years old जनाब हसनजी उजीगली जनाब हसनजी उजीगली जो हसन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज सुबह 10:30 बजे इनके मकान रॉयल रोड लासूजी निस्काली से उठा कर दफनाने के लिए लिस्काली का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM रॉयल रोड पोलॉजे बेलेरिवियासेश में रॉयल रोड पोलॉजे बेलेरिवियासेश में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड श्री विनोद मेगन जो कोको नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3:30 बजे इनके भाई श्री लोलो मेगन के मकान रॉयल रोड पोलॉजे बेलेरिवियासेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वो शौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM नंबर 69 राजकुमार स्ट्रीट बेतो काथोबोन में अस्सी साल की 80 years old श्रीमती पुष्पावती अपादू पिताशी नाम सनासी जो लक्ष्मी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के सवा एक बजे इनके मकान नंबर 69 राजकुमार स्ट्रीट बेतो काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:15 PM मोसेल मोसोना अलेब्रियन कास्टेल में 41 साल की 41 years old श्री लक्ष्मणन रामास्वामी जो नंदी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके भाई श्री नाजागेन रामास्वामी के मकान मोसेल मोसोना अलेब्रियन कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून शुमे बैलेंस कारोलिन में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड श्री धर्मानंद सालिका जो पुलो नाम से ज़रा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान शुमे बैलेंस कारोलिन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM नेहरू रो थ्वाबुचिक में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रूमा बेनीमांधप जो तताई नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान नेहरू रोड थ्वाबुचिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन वेल थ्वाबुचिक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM एथनी सिटी लेन कमर्सन स्ट्रीट क्यूबेक में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड श्री चंद्रदेव अभिलक जो देवा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती चांदिनी अभिलक के मकान एथनी सिटी लेन कमर्सन स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM शिवसागर लेन नोत्रदाम में 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड श्रीमती लक्ष्मी देवी राजा पिताशी नाम तिमल जो फिया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे इनके बेटे श्री अक्षय राजा के मकान शिवसागर लेन नोत्रदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए नोत्रदाम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10:30 AM डॉक्टर मनीलाल रोड पेची जुली में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सावित्री रामनोहर पिताशी नाम शीतल जो सलोनी

0: नाम से ज़रा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 10 बजे इनकी अर्थिया सुबह 10 बजे इनके मकान डॉक्टर मनीलाल रोड पेची झीली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 10 AM। नंबर 172 बी है पासगे क्यूपिप रोड क्यूपिप में ए पासगे क्यूपिप रोड में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड सुमति दुमा पैदाश नाम कुंज बिहारी जो शांति नाम से ज़रा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 1 बजे इनकी अर्थी आज दिन की 1 बजे इनके बेटे श्री श्याम दुमा के मकान नंबर 172 बी ए पासगे क्यूपिप रोड क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। नंबर 57 मामाद इलाम हुसैन स्ट्रीट सेंट क्रॉ मी मामाद इलाम हुसैन स्ट्रीट सेंट क्रॉ मी 87 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पुष्पावती बिजान पैदाशी नाम दूरबीस जो शांति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी बेटी श्रीमती रेणुका देवी बिजान के मकान नंबर 57 मामान इलाम हुसैन स्ट्रीट सेंट क्रॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाले देवपद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 1 PM। सोलफेरिनो नंबर एक वाकवा में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड मिसेस बीबी आयसा एडन पैदाशी नाम राजा जो आयसा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के ग्यारह बजे इनके मकान सोलफेरिनो नंबर एक वाकवा से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टू डी एट 11 AM। लॉट नंबर 55 अवियों रेजिडेंस ट्रियानोमी अवियों रेजिडेंस ट्रियानोमी 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कुमारी खुर्गधारी पैदाशी नाम चगनलाल जो कुमारी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे लाशा पैलाव दौतेलियंस बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti
1: North
2: South
1: 103.5
2: East
1: West
2: 96.4
1: Center
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti
2: The
1: latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: 7 baje hai.
3: A good beat for your morning show.
1: RM2 Radio.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Mustie.
2: अरे आगे जानू आई मीन मैं आगे वेदित आपका साथ देने के लिए गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. सुबह के 7:04 हुई हैं. हाउ यू डूइंग दिस मॉर्निंग भाई. बाहर का मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल और मन कहता है कि काम पे जाना ज़रूरी है क्या? सबके दिमाग में यही चल रहा है. लेकिन काम पे जाना ज़रूरी होता है, काम करना ज़रूरी होता है. अब ऐसा कि नहीं कि आप कंबल के नीचे रहें और उठने की कोशिश भी ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. चलो भाई, हम प्यार से आपको जगाने आए हैं और गाने हमारे कुछ ऐसे हैं कि आप अपने आप ब्रेक डांस करते हुए बिस्तर से निकल जाएंगे और तैयार होकर झट से फट से निकल जाएंगे. तो चलिए यहाँ पर आपका वेलकम करती हूँ मैं. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, स्वागत आप सबों का हमारे प्रोग्राम में जो कि है मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Fan Man United, Paris, Liverpool, Paris. Tout près, tout vibrer que tu as envie avec App Canal Plus, un clic dans ton abonnement.
3: Vivez votre passion avec la Première Ligue et l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal Plus Sport.
2: And FA Cup, Carabao Cup and more on Super Sport Channels. Until the 13th of September, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 699 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Offer subject to conditions. Valid in Mauritius. VAT included. Terms and technical access conditions on canalplus.com.
4: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
5: Mon dieu,
6: me prépare pour un top manger pour toi là.
5: Mon dieu,
6: un bon panier macni.
5: Mon dieu.

0: Plaisir, mon doux plaisir.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: A good beat for your morning show.
2: Come on.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: चलो भाई, आपको तो पता है कि मॉर्निंग में हमें आपको खुश करने के लिए बहुत हम लोग मेहनत करते हैं, और आपकी एक स्माइल है ना, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। तो इसीलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसे गेम्स जहां पर आप घर बैठे खेल सकते हैं और जीत सकते हैं इनाम। तो हमारे पास आपके लिए है इनाम सेक्स जावाता। जी हाँ, अगर आप इसके लिए दो टिकट्स जीतना चाहते हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ ये जो मैजिक थ्रिल्स लाफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेस हैं देखना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आपको क्या करना है, हमारे साथ खेलना है और जीतना है इनाम। तो चलिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जी हम आपको आपसे ये जानना चाहते हैं कि व्हाट डू वी कॉल अ बाइसिकल दैट हैज ओनली वन व्हील। What do we call a bicycle that has only one wheel? आपके जवाब आपको मुझे देने हैं on 549 and 1294 यादर के पूरे नाम और पते के साथ।
1: Morning beat.
4: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: चलिए अब आपके लिए हम सवाल तो लेकर आए हैं और सही जवाब देकर विनर कौन बना है ये जानने का टाइम आ गया है। And yes, what do we call a bicycle that has only one wheel? The right answer is a unicycle. And jeetne wale ko mil raha hai do tickets. Yes, congratulations. You have just won tickets to Cirque Zavata. And you have to get ready for an unforgettable experience filled with magic, thrills, laughter and spectacular circus performances for the whole family. So you can catch Cirque Zavata at Bagatelle with shows every Thursday and Friday 6 PM and Saturday and Sunday 2:30 PM and 5:30 PM. Aapke bookings ke liye and information ke liye you can call on 5250-9413. Cirque Zavata, don't miss the magical big show and the winner. Hamare winner hai Devika Ram Biran from Palma. Congratulations, aapko mile hai 2 tickets. Aap ye tickets aakar MBC collect kar sakte hain. सुबह 9 बजे से सवेर के 3 बजे के बीच अपने आईडी कार्ड के साथ कंग्रेचुलेशंस।
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती योर नंबर वन बेलोवेड स्टेशन।

0: CWA की तरफ से एक कम्युनिके सुन लीजिए. माओवाकुआ के जलाशयों में मरम्मत कार्यों की वजह से CWA इन ग्राहकों को जो लामारी कॉन्डोस वाकुआ फिनिक्स क्यूपे फोरेसाइड फ्लोरियाल सैंपियर मुका रहते हैं सूचित करता है कि गुरुवार 10 सितंबर और शुक्रवार 11 सितंबर को मरम्मत कार्यों की वजह से पानी की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है और इस असुविधा के लिए CWA क्षमा प्रार्थी है.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलिए जी, आप विदिता का साथ दे रहे हैं और यहाँ पर रेडियो मस्ती में मस्ती जारी है. अब सवाल ये है कि अपना बर्थडे मना रहा है कौन. जी हाँ, आप में से कोई भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट, चाहे आप अपना बर्थडे क्यों ना सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें तो क्यों नहीं. अब अगर आप रेडियो मस्ती के फैन हैं और आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें और आपको बर्थडे विश करें, डोडो हाइपर मार्केट की तरफ से आपके लिए एक वाउचर है जो हम आपको देना चाहेंगे. तो अगर आप नहीं तो कोई और जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप उनका नाम और फ़ोन नंबर हम तक पहुँचा सकते हैं. हमारा नंबर आपको पता ही है, इट्स 549-1294.
1: Morning beat.
3: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वेल दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जब हम बर्थडे सरप्राइज करते हैं लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से आपको मिलता है एक वाउचर जो आपको आज नहीं तो कल कलेक्ट करना पड़ता है अपने आईडी कार्ड के साथ एट एमबीसी तो यहां पर हम फोन तो लगा रहे हैं लेकिन देखना यह है कि क्या ये फोन उठाते हैं या नहीं तो यहां पे मैसेज आया है श्वेता का और उन्होंने कहा कि उनकी बेस्टी है जो ओके तो बेस्टी जी ने फोन उठा लिया चलिए मिलते हैं हेलो गुड मॉर्निंग दिस इज भावना राइट Hi Bhavna, how are you?
3: Fine.
2: Okay, I heard you're not going to work today because it's raining, it's cold.
3: Yes. No, I'm on vacation.
2: You're on vacation? No, you're not on vacation.
3: Yes.
2: Are you sure you're on vacation?
3: Yes.
2: Okay, so what are you going to do today?
3: I don't know, I'm not feeling better.
2: Do you want to sing with me? You want me to sing something for you?
3: Yes.

0: Radio Masti.
1: Hi Bhavna, this is Vedita from Radio Masti team and I wish you a very happy birthday. Kaisi hain aap? Dara diya morning mein? Nahi na?
2: Aisa
1: laga ki are main to so rahi thi, kaam pe jana hai. And I can feel ki Bhavna jo hai wo abhi kambal ke niche se utri hai aur keh rahi hai ki kyun meri neend kharab ki. Ek to mausam itna barsati hai, thand hai, gaane chal rahe hain to romantic ho jate hain. Ye ladki ne mujhe kyun jagaya? To aapko isliye jagaya taki hum aapko happy birthday wish kar sake. Aur ye shararat aapki dost, aapki bestie Shweta Hukum ne ki hai. Unhone kaha jagao isko, usko bolo happy birthday aur saath mein aapko Lulu Hypermarket ki taraf se mil raha hai ek voucher jo aapko collect karna पड़ेगा आज नहीं तो कल at MBC अपने आईडी कार्ड के साथ. ऑलराइट भावना, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स हमारी पूरी रेडियो मस्ती टीम की तरफ से. थैंक यू सो मच. एंड वापस सो सकती हैं.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: भाई आज मॉर्निंग में जो मौसम है ना, ये तो कह रहा था कि प्लीज स्टे इन बेड, लेकिन अलार्म कह रहा था नहीं नहीं नहीं, जागने का टाइम है, जागने का टाइम है। चलो ठंडी हवा, बारिश की बूंदे और कुछ परफेक्ट चाय की प्याली। जी हाँ, ये बारिश में चाय पीने का इतना मन क्यों करता है, आई डोंट नो, मैं समझी नहीं। आपको अगर पता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर भी राखी कहती हैं कि भाई गाने तो बड़े मज़ेदार हैं, अच्छा हैं, आंखें खुली हुई हैं, ड्राइव कर रही हैं, वरना पता नहीं हमारा क्या होता, क्योंकि आज तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं था। एनी वे, एन्जॉइंग द सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच गाइज। एंड 5491294 पर आपके मैसेजेस आओ, मोस्ट वेलकम। चलिए अभी आपको, बहुत सारे लोग हैं रोड पर हैं, अभी ऑफिस के लिए कोई निकल रहा है, स्कूल के लिए बच्चे भाग रहे हैं, और रेडियो मस्ती आप सुन रहे हैं। लेडीज़ हमारे घर का काम काज में शुरुआत हो गई उनकी, मुझे पता है अभी आप का मूड जो है कह रहे हैं कि ब्रेक ले लो, लेकिन आप ब्रेक लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम होता तो शायद आपका काम डबल हो जाता है। लेकिन लाइफ में कम से कम 5 मिनट खुद को देना चाहिए, एक कप चाय तो आप आराम से पी लो, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाने की ओर बढ़ते हैं, और इंतज़ार करते हैं हमारे दोस्त अरविंद का, जो लेकर आ रहे हैं हमारे लिए स्पोर्ट्स अपडेट।

0: to Radio Musti.
1: La Early Childhood Care and Education Authority informe les parents que les inscriptions dans les écoles préscolaires publiques pour l'année 2027 se tiendront du 7 au 30 septembre 2026. Tout enfant âgé de 3 ans au plus tard le 31 décembre 2026 est éligible à l'admission. Les inscriptions se feront dans l'école préscolaire publique la plus proche du domicile de 9h30 à 11h30 et de 13h à 14h30. Les parents devront se munir de leur carte d'identité, de l'acte de naissance de l'enfant et d'une preuve d'adresse. Les places seront attribuées en priorité aux enfants résidant le plus près de l'école. Les demandes reçues après le 30 septembre 2026 ne garantissent pas l'admission dans l'école choisie. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter la Early Childhood Care and Education Authority, ECCEA, au 460 42 78.
2: Get ready, Mauritius! The grand finale of Island Cricket Extravaganza Season 4 is here. Organized by the Mauritius Cricket Federation in partnership with Indian Oil Servo and co-sponsored by MYOP. This thrilling season kicked off on 1st August with 6 power-packed teams: Continental, AMG, APP, Campus Abroad, One Health and Thomas Cook. And now it's time for the big finale. Continental Cheetahs versus Campus Abroad Lions होने वाला है on Sunday 13th of September SSR National Cricket Ground Mapu. Match starts at 10 a.m. So join us live at the ground for the day full of high energy cricket fun and excitement. Cheer for your favorite team, enjoy great food, music and stand chance to win exciting gift vouchers, all while Radio Masti goes live as from 11 to 2:30 p.m. So do not miss the biggest cricketing showdown of the year with RM2 Radio Masti Island Cricket Extravaganza Season 4, the grand finale.
0: RM2 Radio Masti
3: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
0: Sports News
4: Radio Masti in the mix.
5: एंड यस, जैसे हमने आपको बताया कि अरविंद आ गए हैं अपने स्पोर्ट्स अपडेट्स के साथ, और चलिए जानते हैं चैंपियंस लीग में क्या चल रहा है. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अरविंद.
6: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग आरएम2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. चैंपियंस

लीग में अंदोनी इराउला का पहला मैच और पहली जीत, सफल एंट्री। लिवरपूल ने 2-1 की जीत हासिल की और अपने नए चैंपियंस लीग कैंपेन की शुरुआत की। लिवरपूल 2 एटलेटिको मैड्रिड 1, पहला गोल एटलेटिको मैड्रिड ने स्कोर किया फर्स्ट हाफ में लोरेंटे ऑन टारगेट। फर्स्ट हाफ में ही जोबोस्लाई ने इक्वलाइज किया आरोयो के पास पर। सेकंड हाफ में मार्क अलिस्ट का गोल, इसके बाद नए खिलाड़ी बाकोला को इंजुरी के कारण निकालना पड़ा। मैनेजर इराउला ने कहा कि चिंता की बात नहीं, केवल क्रैम्प है, इंजुरी नहीं। जिस दिन मैकालिस्टर ने प्रेस वालों को कहा कि उसे दुख है कि अब तक लिवरपूल ने उसके नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं की, उसी दिन उसने अपनी वफादारी दिखाई मैदान में विनिंग गोल स्कोर करके। आर्सेनल की भी जीत हुई 1-0 से नापोली के खिलाफ। सुपर्ब स्ट्राइक मार्टिन ओडेगार्ड का रहा। इस सीजन ओडेगार्ड का चौथा गोल 5 मैचों में। बहुत अनगिनत अच्छे अच्छे मौके मिले आर्सेनल को, 26 शॉट्स पर गोल केवल एक। डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन ने बेरहमी से स्लोवान ब्रातिस्लावा को पछाड़ा। फेरान टोरेस का हैट्रिक, डेम्बेले का डबल, फाबियन रुइज ने भी स्कोर किया। पेरिस सेंट जर्मेन 6, स्लोवान ब्रातिस्लावा 1। याया टूरे की टीम को तोड़ मरोड़ डाला पेरिस सेंट जर्मेन ने। बार्सिलोना के यहां भी गोलों की बारिश, 5-1 से बार्सा ने फेयेनूर्ड को चैंपियंस लीग में खेलने का मजा चखाया। राफिना का डबल, अदयेमी, यमाल और गैब्रियल जेसस का 1-1 गोल। अन्य मैचों में स्टुटगार्ट 3, वाइकिंग 1, स्पोर्टिंग की जीत 3-1 से गलातासराय पर। सो अब तक इंग्लैंड की 4 टीमें जीत चुकी हैं। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की बारी। बहुत दिनों बाद ओल्ड ट्राफोर्ड में चैंपियंस लीग की वापसी हो रही है। सामने है पहली बार चैंपियंस लीग में खेलने वाली टीम सबा उज़्बेकिस्तान से। अन्य मैच फेनेरबाचे एएस रोमा, पेरिस सेंट जर्मेन का मुकाबला शाख्तार दोनेत्स्क से, बायर्न म्यूनिख बोडो ग्लिंट, कोमो आरबी लाइप्ज़िग, स्लाविया प्राग लांस। इंग्लैंड के कराबाओ कप में 9 गोलों वाले मैच में चेल्सी ने 6-3 से लीड्स यूनाइटेड को हराया। लीड्स यूनाइटेड एक समय 2-0 से आगे था, पर जब ज़ावी अलोंसो ने अपने स्टार खिलाड़ियों को मैदान में भेजा तब बाजी चेल्सी के हाथ में आई। पाल्मर का डबल, वेलबेक का डबल, नेटो बाग को भी स्कोर कर पाए। स्कॉटिश प्रीमियर लीग में रेंजर्स 1, सिड मिरन 0, सिड जॉनस्टन 0, सेल्टिक 1। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में डर्बी 0, वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन 1, नॉर्विच 2, बर्मिंगहम सिटी 1। चार्ल्टन एथलेटिक और क्वींस पार्क रेंजर्स के बीच मैच ड्रॉ 0-0। सप्ताहांत के दौरान वीकेंड के प्रमुख प्रीमियर लीग फिक्स्चर्स पर एक नजर डालते हैं। चेल्सी हल सिटी, लिवरपूल फुलहाम ये 6 बजे शनिवार को, और टोटनहम हॉटस्पर एवर्टन ये सैटरडे को ही शनिवार को 8:30 बजे, और 11 बजे लेट नाइट किक ऑफ संडरलैंड आर्सेनल, ये शनिवार सैटरडे के मैच हैं। और संडे धमाल मैनचेस्टर डर्बी 7 बजे ओल्ड ट्राफोर्ड में, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। टेनिस, US ओपन में 2 मैच पॉइंट बचाकर कोको गोफ सेमीफाइनल में पहुंची। मीरा एंड्रीवा को हराने में कोको गोफ को जमीन आसमान एक करना पड़ा। सेमीफाइनल में उसका सामना वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाली एलेना रिबाकीना से होगा। रिबाकीना ने 2-1 से जेंग को हराया। जेसिका पेगुला भी क्वालिफाई हुई एमा नावारो को हराकर। लड़कों में कचानोव, बेन शेल्टन क्वालिफाई हुए। शेल्टन ने अल्काराज को नाराज किया 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-1 के मैराथन मैच में। आज अलेक्जेंडर वेरेव क्वालिफाई हुआ। सो सेमीफाइनल अलेक्जेंडर वेरेव, कारेन कचानोव, फ्रांसिस चियाफोए, बेन शेल्टन। क्रिकेट, इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 133 पर रफा दफा किया, ऑल आउट किया। फिर इंग्लैंड की टीम 156 156 रन बनाकर खेल रही है। 4 विकेट खोकर यानी
23 रन की लीड। आज दूसरे दिन का खेल होगा। इधर वुमेन्स एशिया कप का पहला सेमीफाइनल आज होगा बांग्लादेश और टीम इंडिया के बीच, दूसरा सेमीफाइनल कल पाकिस्तान और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच। और बताते चले मॉरिशस में

0: ही आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का फाइनल मैच इस रविवार को इस संडे को 10 बजे मापू के एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, चैंपियंस लीग इज ऑन और इंग्लैंड की टीम में 4-4 यानी अभी तक 4 टीमों की जीत हो गई। कल लिवरपूल और आर्सेनल की बारी थी, उधर पेरिस सेंट जर्मेन और बार्सिलोना बमबारी कर रहे हैं। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करेगा साबाह टीम के खिलाफ, ओल्ड ट्रॉफिड में ये मैच है, देखेंगे जरूर। हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती। आई विल कैच यू वेरी सून। टेक केयर। बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
1: वेल माई डियर फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि आप लोग मॉर्निंग में सरा उठने में तकलीफ हो रही है आपको, लेकिन कितने सारे लोग हैं जो भी काम पर जाने के लिए रेडी भी हो गए हैं, काम पर पहुँच भी गए हैं। जी हाँ, इस टाइम पे बहुत सारे लोग काम पे पहुँच जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, स्वागत आप सबों का। चलिए तो यहाँ पर हम थोड़ी देर में आपके लिए गेम भी लेकर आ रहे हैं, तो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम पे, हम आपको बता दें कि अभी अगर आप लोग रोड पर, अगर आपको कहीं पर दिख रहा है कि भाई बारिश की वजह से रास्ता थोड़ा ज़्यादा वो हो गया है, जैसे ट्रैफिक आ गई है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर ऑन 549-1294। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं एक गेम के साथ।
3: RM2
2: रेडियो मस्ती। टेक मैग पावर्ड बाय 365 bien plus encore.
4: Bluetooth is becoming less like a private cable and more like a small radio station. Auracast allows one compatible device to broadcast audio to many compatible headphones, earbuds or hearing aids at the same time. Instead of pairing one-to-one, listeners can select an available audio stream, much like joining a Wi-Fi network. Imagine hearing a silent television at the gym, an airport announcement more clearly, or sharing one film with several people without passing around earphones. The catch is that the transmitter and receiving devices must support Auracast.
2: Tech Mag was powered by 365. Bien plus encore.
3: RM2
2: Radio Musti.
3: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio

0: चलिए जी, आपके लिए हम लेकर आए हैं एक वाउचर. जी हाँ, ये है स्वाद रेस्टोरेंट. सो ऑल यू हैव टू डू इज टू प्ले विद RM2 एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ 500 रुपीज गिफ्ट वाउचर कर्टेसी ऑफ इंडियन स्वाद रेस्टोरेंट, वेयर यू कैन सेवर द ऑथेंटिक फ्लेवर्स ऑफ इंडिया. एंड ये हो रहा है इसलिए क्योंकि हम जा रहे हैं सेलिब्रेट करने क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा. जी हाँ, द ग्रैंड फिनाले ऑफ आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा जो है वो सीजन चार जो है शुरू हो चुका है. ऑर्गेनाइज बाय द मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो को स्पॉन्सर्ड बाय MIOP एंड फूड पार्टनर फॉर फाइनल्स जेन लिटिल इंडिया. तो चलिए, 1 अगस्त को जो शुरुआत हुई है इसके चलते यहाँ पर जो फाइनल हो रहा है ये SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू में जो मैच है वो स्टार्ट हो रहे हैं 10:30 AM. तो हमारा सवाल आपके लिए ये है, आप मुझे ये बताइए कि रणवीर सिंह ने मूवी 83 में किस इंडियन क्रिकेटर का किरदार निभाया था. रणवीर सिंह ने मूवी 83 में किस इंडियन क्रिकेटर का किरदार निभाया था, आपको मुझे जवाब देना है 1549 और 1294.
1: मॉर्निंग बीट.
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: यस, हमारा सवाल था आपसे कि फिल्म 83 में रणवीर सिंह ने किस इंडियन क्रिकेटर के किरदार को निभाया था. एंड द राइट आंसर इज कपिल देव. और यहां पर सही जवाब देकर बहुत सारे लोगों ने हमें साबित कर दिया कि वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं. तो अगर आप फैन हैं, गेट रेडी मॉरिशस, द ग्रैंड फिनाले ऑफ द आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 इज हियर ऑर्गेनाइज्ड बाय द मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP एंड फूड पार्टनर फॉर फाइनल्स जेन्स लिटिल इंडिया. सो ये जो थ्रिलिंग किक ऑफ हुआ था 1st of August विद 6 पावर पैक टीम्स आर नाउ हियर एंड ऑल कम्स डाउन टू अ बिग फिनाले बिटवीन कॉन्टिनेंटल चीटास वर्सेस कैंपस अब्रॉड लायंस ऑन संडे 13 September SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू में मैच शुरू हो रहा है दिन के 10 बजे. सो आप लोग वहां पर आके जो हाई एनर्जी क्रिकेट फन एक्साइटमेंट है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एंड यू कैन चीयर योर फेवरेट टीम, एंजॉय द ग्रेट फूड एंड म्यूजिक एंड स्टैंड अ चांस टू विन एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर्स. एंड ये सब होएगा और जाएगा सीधे रेडियो मस्ती पर लाइव फ्रॉम द ग्राउंड. सो डोंट मिस द बिगेस्ट क्रिकेटिंग शोडाउन ऑफ द ईयर आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 द ग्रैंड फिनाले. तो चलिए, विनर को मिल रहा है इंडियन स्वाद रेस्टोरेंट की तरफ से 500 रुपीज का एक वाउचर. तो ये विनर कौन है, नाम कौन है, जान लेते हैं. तो विनर है कोहव जगादू फ्रॉम ब्रह्मस्थान. कंग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है हमारे साथ यानी RM2 के साथ खेलने पर ये 500 रुपीज का वाउचर फ्रॉम स्वाद रेस्टोरेंट. आपको ये जो वाउचर है बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा और हम चाहते हैं कि आप एंजॉय करें वहाँ का खाना. फिलहाल अभी के लिए जो मूड है वो कहता है कि बारिश का मौसम और ये गाना ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. चलिए, इस गाने के साथ बढ़ते हैं अब हम 8 बजे के समाचारों की ओर.

नमस्ते, पेश है भोजपुरी के समाचार। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सीईओ कुणाल नाइक और चेयरपर्सन नादिया पिगन कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की गांजा से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय रणनीति की रिपोर्ट सुपुर्द कर लंजा। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर ही होल सलाह मशवरा से मिलल सिफारिश शामिल बाटे। ये रिपोर्ट तैयार करे खातिर आम जनता और विभिन्न संबंधित पक्ष लोग से 1800 लीजस्ती सुझाव और राय इकट्ठा करल गल है। मंत्रिमंडल की सौंपल जावे से अगते नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के स्तर पर ही ये रिपोर्ट की समीक्षा करल जाए। कुणाल नाइक प्रधानमंत्री के नदेक के समक्ष आवे होला चुनौती के बारे में भी जानकारी दिलन। उ बोलन कि प्रधानमंत्री देने से उनकरा इस सब समस्या के समाधान तलाश के पूरा सहयोग मिले के आश्वासन मिलल बाटे। 20 बरिस होल बाटे जब से देश में मेथाडन सब्स्टिट्यूशन थेरापी प्रोग्राम शुरू करल गल रहल। ई बरिस 10 जुलाई ले 8118 जना के ई प्रोग्राम से लाभ होल बा। ओ लोग के देश भर में स्थापित 70 गो डिस्पेंसिंग केंद्र पर ही रोज के दवा के डोज मिलेला। ई इलाज के औसतन सालाना खर्च एगो व्यक्ति खातिर लगभग 16,356 रुपया पड़ेला। आज ई प्रोग्राम राष्ट्रीय हार्म रिडक्शन पॉलिसी के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा है। शागस मामला के लिए कि आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगी। दोनों देश के बीच समझौता के लिए के दूसर का वर्किंग सेशन

0: शन खातिर फॉर इन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि आर्मर्शन अधिकारी लोग के बीच बातचीत चली। बरतानी संसद में कल होल बहस में शागोस के मुद्दा एक बार फिर से उठावल गल रहल। कंजर्वेटिव नेता केमी बेनेनोक बोलन की उनका समझ में नहीं आवता कि प्रधानमंत्री जेगो गौसिया की लीज पर ही इतना बड़का रकम खर्च करे खातिर तैयार काहे होल हवन जब वो बरतानी रक्षा बजट खातिर फंड देवे से इनकार करत हन। जवाब में बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम इ बात पर ही बल दिलन कि यूके जेगो गौसिया में अपन सैन्य अड्डा नहीं छोड़ी और इ बारे में अमेरिका के संगे बतियावल जाता है। कर संगे ही वो बोलन कि कंजर्वेटिव नेता के इ मुद्दा के संबंध में राजनीतिक फायदा उठावे की कोशिश नहीं करे के चाहिए। प्रॉब्लम उसकी अदालत गल 26 अक्टूबर के रिश्ते के एगो हाइपर मार्केट की सर्वेलेंस कैमरा के फुटेज के सबूत के तौर पर ही स्वीकार करे के बारे में अपन फैसला सुनाए। ये सब तस्वीर पूर्व मंत्री कल्पना कुंजोशा के मुकदमा खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकी, जिकर पर चोरी या चोरी के सामान रखे के आरोप लगावल गल है। इ मामला में कल तीन गो गवाह के बयान निवल गल। हाइपर मार्केट की सिक्योरिटी मैनेजर तेज सीआईडी के एगो सर्जेंट आर पुलिस आईटी यूनिट के एगो अधिकारी वो सब लोग बतैलन अदालत के बतैलन कि हाइपर मार्केट के कंट्रोल रूम में मौजूद सर्वर से रिकॉर्डिंग निकाले खातिर कौन कौन कदम उठावल गल है। जबकि दूसर दिन सीनियर काउंसिल आइवान कोलेंदावेलू के नेतृत्व में बचाव पक्ष ई फुटेज और पुलिस आईटी यूनिट देने से तैयार करल गल आईटी रिपोर्ट में पेश करल गल बात के विरोध करलन जा और बचाव पक्ष ई बोलले बाटे की रिपोर्ट वीडियो के असलियत साबित करे खातिर नाकाम रहल। ट्रैवल एजेंसी ब्लू कनेक्ट लिमिटेड के पूर्व टिकटिंग एजेंट केल्विन सुताना के काल इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के आरोप पर गिरफ्तार करल गल। ओकर पर आरोप है कि वो जरूरी शुल्क देवे के बिना ही कूपन कोड के इस्तेमाल करके एयर फ्रांस के बुकिंग में बदलाव करलक। जुलाई 2024 और अगस्त 2025 के बीच कथित तौर पर ही 34 गो यात्री लोग के बुकिंग 28 बुकिंग करल गल रहल। एकर में से एकाध को बुकिंग वो अपन परिवार और अपन खातिर कर ले रहल। ब्लू कनेक्ट लिमिटेड के होल आर्थिक नुकसान के अनुमान 70,000 यूरो यानी करीब 3.5 मिलियन रुपया लेजस्ती के बतावल जाता। और दूसर देश की खबर में फिलीपींस में एगो नौका परी भड़कल भयानक आग में कम से कम 5 जना की मौत होल बा जबकि 27 अन्य आदमी लोग के कोनो खबर नहीं बाटे। ई पर्यटन नौका से 42 गो जना के बचावल गल है। रहल भोजपुरी के समाचार। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की तरफ से कम्युनिके सुन लीजिए। CWA लमारी कोंडोस वाक्वा फिनिक्स क्यूपी परफोरेसाइड फ्लोरियल सैं पियर और मोका के रहने वाले अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मऊ वाक्वा के जलाशयों में मरम्मत कार्यों की वजह से गुरुवार 10 सितंबर और शुक्रवार 11 सितंबर को मरम्मत कार्यों की वजह से पानी की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है। इस असुविधा के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी क्षमा प्रार्थी है।
2: Morning Beat. James. RM2 Radio Musty in the mix. Jeez,

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: हाँ जी, यहाँ पर तो सभी मॉर्निंग में बल्ले बल्ले कर रहे हैं और यहाँ पे भंगड़ा पा रहे हैं, क्या बात है। सब सारे मूड में आ गए हैं बारिश की वजह से। हाँ, लगता है बारिश ने कोई मैजिक तो ज़रूर किया होगा, मैजिक किया होगा हमारे म्यूज़िक ने भी, क्योंकि बारिश का अपना मैजिक होता है और म्यूज़िक का अपना मैजिक होता है। और उसमें अगर गर्मा गर्म चाय, ये मैं बार बार चाय की बात क्यों कर रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लगता है हमें भी चाय की तलब लग गई है। और बारिश जो होता है वो चाय और पकौड़े के बिना कम्प्लीट होता ही नहीं है। चलो कोई नहीं जी, माफ़ किया एक के लिए। अभी मौसम दिन भर कैसा रहेगा ये जानने के लिए चलिए अदिति से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग,
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
3: ऑन इट टू स्विनर्स।
4: अब हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो आज शाम 4 बजे तक के लिए बरकरार रखी जाएगी। मस्कारेंस के दक्षिण में पाई जाने वाली जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज दिन के दौरान लहरें कर पश्चिमी इलाकों पर बारिश होती रहेगी, ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ऊंचाई वाले जगहों और खासकर गाड़ी चलाते हुए क्रॉस विंड्स वाले इलाकों में खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा, 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर दक्षिणी तथा पश्चिमी लगूनों और तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। इसलिए खासकर मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से इन इलाकों से बचने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहेगा, सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:10 पर सूर्योदय, शाम को 6:03 पर सूर्यास्त होगा।
0: Your weather forecast on RM2
1: Radio Musti.
5: Avis à tous les amoureux des animaux! 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. 1.2 kg de Whiskas Gourmet Seafood à 349,95 € et les 100 g de Manger pour chat et chaton Alpha Pet à 34,95 €. Profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille!
6: On est tous! Sweet.

RM2, Radio Musty, in the mix.

0: FM2
1: Radio Musty.
2: Des projets plein la tête? Avec la SICOM My Speedy Loan, prenez les devants pour faire de votre envie une réalité. Tels que l'achat ou la rénovation de votre chez vous, de voyage ou le financement des études des enfants, ou encore de s'offrir une nouvelle voiture avec la SICOM. Dès aujourd'hui, vous pouvez prendre un prêt d'un maximum de 300 000 roupies sans garantie et donner un nouveau souffle à vos projets avec la SICOM My Speedy Loan. Offre uniquement pour les fonctionnaires, les employés des organisations para-étatiques et les pensionnaires de la SICOM. Conditions applicables. Pour plus d'infos, appelez-nous sur le 200 384 70 ou visitez notre site web sicom.mu.
3: Sicom Group, a lifetime commitment.
2: Sicom Financial Services Limited opère sous licence de la BOM et de la FSC. Loan is not an insurance policy under Insurance Act 2005.
4: Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में. साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट. आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है. आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट. और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो. तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसान के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, हमने आपसे एक बात कही थी. हमने कहा था कि लाइफ में हर एक ऑब्स्टिकल जो होती है ऑब्स्टिकल नहीं होती. कभी-कभी कुछ चीजें लाइफ में होती हैं ताकि हम कुछ सीखें, कुछ जानें, कुछ पहचानें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं. उसी तरह हर एक बीमारी, सर्दी, खांसी, जुकाम भी नहीं होती. कभी-कभी लोग जो होते हैं ना, आपको हंसते खेलते दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शायद कुछ ऐसा है जो उनको खाए जा रहा होता है. कुछ ऐसा अकेलापन होता है जिसको वो ख़त्म करने के लिए या उनसे दूर भागने के लिए वो कुछ लोगों से उम्मीदें रखते हैं. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि लोग जो होते हैं हमेशा लोगों को जज करने के लिए बैठ जाते हैं. तो जब आप लोगों को जज करते हैं, मेक श्योर कि ये जो उनके चेहरे पे स्माइल होती है, कहीं कहीं कुछ दर्द छुपा है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है. हर कोई अपनी ज़िंदगी में अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है. अगर आपके पास उनको हेल्प करने के लिए समय नहीं है, तो उनको जज करने के लिए भी टाइम ना निकालें. करना है तो कभी आप दिल की बात जानने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी लोग हंसते हंसते हंसते एकदम चुप हो जाते हैं. तो वो जो चुप्पी का कारण होता है ना, हो सकता है कि वो उनके लिए कोई बीमारी हो. तो जैसा कहा मैंने कि हर एक बीमारी सर्दी खांसी जुकाम नहीं होती. नेक्स्ट टाइम आप किसी से मिलो ना, हंस के मिलो, प्यार से मिलो, बिकॉज यू डोंट नो कि वो किस साइक्लोन से गुजर रहे होते हैं, किस मुश्किल से गुजर रहे होते हैं.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
5: Petite, on me disait ce que je devais faire, mais moi, je voulais juste faire du sport.
1: Milo, libère ta force.
5: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
1: Milo, libère ta force.
5: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए एक और गेम के साथ आए हैं कानमा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026 ऑफ कोर्स यहां पर गेट रेडी टू प्ले एंड विन विद RM2 यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन टू एंट्री टिकट्स टू द फिनाले ऑफ फोर्टिस ब्यूटी विद अ नॉर्मल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026 अब सैटरडे 12 सितंबर को हो रहा है एट 7:30 PM एट थ्रियानो कन्वेंशन सेंटर. तो आपको करना क्या है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, खेलना है और इनाम जीतना है और वहां पे जाके इसका हिस्सा बनना है. तो आर यू रेडी टू प्ले? ओके, चलिए ऑल द बेस्ट टू यू जो लोग पार्टिसिपेट कर रही हैं. चलिए देखते हैं लकी ड्रॉ में किसका नाम आएगा. अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मुझे बताना है इंडिया ने अब तक कितने सारे मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है. इंडिया ने अब तक कितने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है. यू हैव टू गिव मी द राइट आंसर ऑन 549 और 1294 पूरे नाम और पते के साथ.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए जी, हमारा सवाल आपसे था कि इंडिया ने अब तक कितने सारे मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है. द राइट आंसर इज एक्चुअली 6 times. और मैं आपको बता दूं कि पहली जो हमारी मिस वर्ल्ड थी फ्रॉम इंडिया वो थी रेटा फारिया 1966, फिर उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी इन साल था 1999, प्रियंका चोपड़ा इन 2000 यानी बैक टू बैक, एंड मनुष्य चिलर इन 17 साल के बाद. और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिया है. विनर कौन बने हैं, चलिए जानते हैं. यहाँ पर लकी ड्रॉ के बाद नाम आया है आपका, रणधीर गोविंद फ्रॉम वेलवी मोबाइल. कंग्रेचुलेशन, आपको मिल रहा है 2 entry tickets to the grand finale of 40's beauty with a normal purpose Miss India Worldwide Mauritius 2026 जो सैटरडे 12th of September को हो रहा है 7:30 PM at Triano Convention Center. सो आपका जो टिकट है आपको ABC आकर कलेक्ट करना पड़ेगा सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच अपने ID कार्ड के साथ. एंड यस, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टेकुलर नाइट कानमा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026. Congratulations.
0: Morning Beat.
1: James. RM2 Radio Musti in the mix.

0: good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: वीडियो मस्ती के बारे जितने भी लिसनर्स हैं वेलकम स्वागत आप सबों का. कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब ठीक, हाल चाल सब फाइन है ना? ओके, तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं. एंड डोंट फॉरगेट कि हम लोग हैं आपके साथ जहाँ भी आप हमें सुन रहे हैं. अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं, मौसम बता नहीं, आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है. अगर मैं बोल रही हूँ ठंड है तो भाई मैंने उस ठंड को फील किया है. आई नो व्हाट आई एम सेइंग. चलिए इसी के साथ हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आपको भी. हाफ शेला टिप्सू फ्रॉम मेबर्ग, आज उनका बर्थडे है तो उनको हम डेडिकेट करते हैं नेक्स्ट गाना. और उनके हस्बैंड की तरफ से, उनके पूरी फैमिली की तरफ से उनको विश करते हैं अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आई होप कि आज का जो मॉर्निंग है वो बहुत खूबसूरत हो. यही भी हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. थैंक यू मॉर्निंग मॉर्निंग में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे गाने इन्जॉय कर रहे हैं. और कहते हैं ठंड तो इधर बहुत ज़्यादा ही है लेकिन मज़ा आ रहा है जब ऐसे खूबसूरत गाने चल रहे हैं. तो यहाँ पर कलेवानी और वंदना, शालिनी और विश्मा, आरसी, सुंदरम, सबके लिए गाना मांगा गया है. तो आपके लिए भी हम डेडिकेट करते हैं हमारे इस प्रोग्राम का अगला गाना. थैंक यू सो मच. एंड बाकी हमारा जो नेक्स्ट गाना होगा, चलिए इसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं. वैसे हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बात कौन आने वाली है. आ गई क्या?

आइए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की तरफ से कम्युनिकेशन लीजिए। सीडब्ल्यूए ए जो है अपने इन ग्राहकों को सूचित करता है जो लामारी कॉन्डोस वाक्वा फिनिक्स क्यूपिप फ्रेसाइड फ्लोरियल सैंपियर और मोका के रहने वाले हैं। आपको सूचित किया जाता है कि गुरुवार 10 सितंबर और शुक्रवार 11 सितंबर को मरम्मत कार्यों की वजह से यानी कि माओ वाक्वा जलाशय में जो मरम्मत का कार्य चल रहा है उसकी वजह से पानी की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है। इस असुविधा के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी क्षमा प्रार्थी है।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया. Morning beat.
2: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2 Radio Musti in the mix.
4: चलिए दोस्तों, मेरे जाने का टाइम हो गया है और पूनम के आने का. अब आपसे बाद में मुलाकात करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. आपको विदिता की ओर से बहुत सारा प्यार. नमस्कार.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं।

0: मिला लीजिएगा, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। स्टूडियो में अदिति उपस्थित हो गई है। नमस्कार अदिति, इनसे समाचार सुनिए।
1: नमस्कार अनुराधा, श्रोताओं को भी नमस्कार। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की सीईओ कुणाल नाइक और चेयरपर्सन नादिया पिरन ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन गुलाम को गांजे से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय रणनीति की रिपोर्ट सुपुर्द की। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त हुई सिफारिशें शामिल हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए आम जनता और विभिन्न संबंधित पक्षों से 1800 से ज़्यादा सुझाव और राय इकट्ठा की गई। मंत्रिमंडल को सौंपे जाने से पहले नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के स्तर पर इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। कुणाल नाइक ने प्रधानमंत्री को नादेक की समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें इन समस्याओं का समाधान तलाशने में पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन मिला है। शागस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस लगेगा। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर दूसरे वर्किंग सेशन के लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि और मॉरिशस अधिकारियों के बीच बातचीत चली। बरतानी संसद में कल हुई बहसों में शागस का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया। बेल एंड रिमांड कोर्ट में कल मडागास्कर के व्यवसायी मामी गवातुमांगा की जमानत अर्जी पर गवाहों की सुनवाई पूरी हुई। कृषि और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री समेत कई सेक्टरों में कार्यरत सोडियट ग्रुप मडागास्कर की एक बड़ी होल्डिंग कंपनी है। इसके सीईओ ने मेलरोज हाई सिक्योरिटी कैदखाने से वीडियो लिंक के जरिए गवाही दी, जहां उन्हें रखा गया है। मामी गवातुमांगा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि एफसीसी ने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो एक इन्वेस्टर हैं, अपराधी नहीं। पॉम्पलोमोसिस की अदालत पिछले 26 अक्टूबर को रिश्टेयर के एक हाइपरमार्केट के सर्विलेंस कैमरों के फुटेज के सबूत के तौर पर स्वीकार किए जाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ये तस्वीरें पूर्व मंत्री कल्पना कुंजू शाह के मुकदमे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, जिन पर चोरी और चोरी का सामान रखने के आरोप लगे हैं। इस मामले में कल 3 गवाहों के बयान सुने गए। हाइपरमार्केट की सिक्योरिटी मैनेजर तेहूर, सीआईडी के एक सर्जेंट और पुलिस आईटी यूनिट के एक अधिकारी, उन्होंने अदालत को बताया कि हाइपरमार्केट के कंट्रोल रूम में मौजूद सर्वर से रिकॉर्डिंग निकालने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। सीनियर काउंसिल आइवान कोलेंदावेलू के नेतृत्व में बचाव पक्ष इस फुटेज और पुलिस आईटी यूनिट द्वारा तैयार की गई आईटी रिपोर्ट को पेश किए जाने का विरोध कर रहा है। बचाव पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट वीडियो की असलियत साबित करने में नाकाम रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में एक

0: नौका पर भड़की भयानक आग, कम से कम 5 लोगों की मौत का कारण बनी, जबकि 87 अन्य लोगों के बारे में कुछ जानकारियां नहीं हैं। इस पर्यटन नौका से 42 लोगों को बचाया जा सका। हादसे के वक्त क्रू सदस्यों सहित नौका पर 134 लोग सवार थे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग नमस्ते. 9:10 हो चुके हैं दोस्तों. आप जुड़े हैं अपने ही मस्ती मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ और आप सभी जो कि बिजी हैं इस समय गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम में और इतनी भक्ति में मग्न हैं और इतने सारे कामों के साथ में आपने बस सोच लिया है कि अब जो आगे टाइम आएगा ये गणेश चतुर्थी तक बस अपने दिल और दिमाग को शांत रखना है. और ऊपर वाले ने भी कहा है, अरे कोई थोड़ी सी ठंड ले लो, थोड़ी सी बारिश ले लो, मैं भी तो क्यों पीछे रहूँ. तो चलिए, थैंक यू सो मच गॉडू, आप हमको इतनी प्यारी सी मौसम दे दिया है जहाँ पर एक तो पूरी भक्ति में चल रहे हैं सब लोग और दूसरी तरफ सेम टाइम हुआ है रोमांटिक टाइम. तो मैं तो यही कहूँगी कि दोनों को बैलेंस करते हैं और साथ में जो इस समय काम कर रहे हैं वो करते रहिए, इंजॉय कीजिए गानों को, साथ में अपने दिन की शुरुआत कीजिए प्यारे प्यारे गानों के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ, गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ, गर्मा गर्म गानों के साथ. मैं हूँ आपके साथ पूनम, इंजॉय कीजिए इन गानों को.
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: 9:19 हो चुके हैं दोस्तों. कई बार ऐसा होता है ना कि मूड बिना किसी वजह से बहुत अच्छा अच्छा सा लगता है. अरे बस ये तागिना दिन नक दिन जो गाना है ना, इसने मूड बना दिया. तो मेरे को भी लगा कि मैं भी पूछूं कि आज कौन कौन अचानक से बस अंदर अंदर से खुशी मिल रही है. कोई स्पेशल कुछ नहीं हुआ, घर में किसी ने कुछ स्पेशल नहीं कहा, किसी फ्रेंड ने कुछ नहीं कहा, पर अंदर से खुशी होती है. और सेम टाइम में कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं हुआ होता बट अंदर से टेंशन होती है, थोड़ा सा नाराज़गी हो जाती है, थोड़ी सी उदासी होती है. तो सब चीज़ों का हटा दीजिए दिमाग से, क्योंकि अगर खुश है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उदासी है तो फिर आपको वापस खुशी लानी है, ढूंढना है. आपको म्यूज़िक से मिलती है, आपको काम करके अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि किसी को कॉल करके पूछ लूँ कि भाई कोई सैटरडे संडे का कुछ प्लानिंग है. तो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहो जिससे आपका मूड जो है ना रीजनरेट होता रहे, मस्ती होती रहे. तो वही मस्ती के साथ में तो हम आते हैं बहुत सारे गानों को लेके. तो बस आपको इतना ही कहते हैं, अपने गानों के साथ इंजॉय कीजिए, अपने दिन की शुरुआत बहुत ही प्यारे और मुस्कुराहट से कीजिए, कोई उदासी चेहरे पे ना आए. और अगर कुछ हो गया है तो उसको करो पीछे. बाय बाय.
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: भाई क्या बात कह रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सबने बोल दिया कि 5491294

0: जो है ना इस पे मैसेज करने के बाद हर रिप्लाई आता है और हर मैसेज हम पढ़ते हैं. तो अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं 5491294 पर, जो नंबर आपको पता है आपके दिल में छपा हुआ है. पर हम आपको इतना ही बोलेंगे, जो लोग इस समय ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव बिल्कुल आराम से कीजिए, बिल्कुल ज़बरदस्त भगाने की ज़रूरत नहीं है. और साथ में जो लोग इस समय हमारे बुज़ुर्ग हैं या यंगस्टर्स भी हैं, प्लीज़ रोड्स बहुत गीली हैं, थोड़ी स्लिपरी हैं, थोड़ी ठंड है, थोड़ी धूप है, तो इसलिए प्लीज़ कुछ कम्फर्टेबल शूज़ डाल के जाइएगा, पूरा अपनी बॉडी को कवर करके जाइएगा, अम्ब्रेला साथ लेके जाइएगा, पानी लेके जाइएगा या कुछ खाते पीते रहिएगा. ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. हम सबको मॉर्निंग में इतना ही कहते हैं, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि रास्ते में कुछ हो जाए तो फिर मुश्किल होती है आपके लिए भी और हमें भी दुख लगता है. तो प्लीज़ सड़कों का भी ध्यान रखिए क्योंकि गीली है, और अपना ख्याल तो रखना ही है आपको. तो बस हम तो इतना ही कहेंगे. गाने आपके साथ चल रहे हैं, जहाँ पर भी आपको गाने की आवाज़ सुनाई दे वहाँ पर थोड़ा सा मस्ती कर लीजिए, डांस कर लीजिए, नहीं तो गुनगुना लीजिए, और या अपने सर को ही थोड़ा सा झुमा दीजिए, तब भी आपको एहसास होगा कि देखो डोपामिन रिलीज हो गया और आपके चेहरे पर अपने आप बहुत प्यारी सी मुस्कान अपने आप आ जाएगी. तो चलिए कि गानों के साथ में हम साथ बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद हम गेम भी खेलेंगे आपके साथ, तो इसीलिए गेम के लिए रेडी रहिएगा.
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: 9:35 हो चुके हैं दोस्तों। हमने अभी आपको कहा था कि हम आपके साथ खेलने जाएंगे थोड़ी देर में गेम, तो अब वो टाइम आ चुका है जहां पर आप जीत सकते हैं ग्रैंड फिनाले के लिए 2 एंट्री टिकट। तो चलिए, एक ये मौका है आपके लिए जीतने का मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026 के ग्रैंड फिनाले की 2 एंट्री टिकट जीतने का। ग्रैंड फिनाले होगा सैटरडे 12 सेप्टेम्बर को त्रियानो कन्वेंशन सेंटर में, जो कानमा कैंसर एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के सहयोग से हो रहा है। तो देखते हैं आज ये 2 टिकट्स कौन जीतता है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर उससे पहले आपको ये बताएं, आपको जो भी आंसर देना है उसमें आपने अपना टेलीफोन नंबर, अपना नाम और अपना एड्रेस जरूर डालना है। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिशनल सेगा डांस आमतौर पर कैसे किया जाता है? ए बेयरफुट यानी कि फुटवेयर के बिना, बी स्पोर्ट्स शूज पहनकर, सी हाई हील्स पहनकर। तो सोचिए ए बी या सी। सही जवाब भेजना है आपको 5499-1294 पर। दो गानों के बाद हम आपका देखेंगे कौन जीता है इस प्यारी सी गेम को। तो बस हमारे साथ बने रहिए आरएम2 रेडियो मस्ती पे। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
0: वेलकम टू आरएम2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: 9:44 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आप खेल रहे थे हमारे साथ प्यारी सी गेम का, आंसर आपने ढूंढ लिया और इतने आंसर्स आए हैं और अभी तो लेटेस्ट किसने बोला मैं ही जीतूंगी, पर हमें तो बस ये पता होता है कि हम सबके नंबर्स डालते हैं, अभी भी वहाँ पे चल रहा है कि कौन विन करने वाला है। तो चलिए तब तक हम आपसे बात ये करते हैं कि आपको जीतने का मौका मिला था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026 के ग्रैंड फिनाले के लिए 2 एंट्री टिकट्स। ग्रैंड फिनाले होगा सैटरडे को यानी कि शनिवार को 12 सितंबर को त्रियानो कन्वेंशन सेंटर में कानमा कैंसर एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के सहयोग से होने जा रहा है। तो आपको जीतने का मौका मिला था, आपसे हमने एक सवाल किया था, चलिए भाई मेरे पास भी स्लिप आ गई कि किसने जीता है। तो चलिए हमने आपसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा पूछा था, ट्रेडिशनल सेगा डांस आमतौर पर कैसे किया जाता है। ए हमने पूछा था बेयर फुट बिना फुटवेयर के, बी स्पोर्ट्स शूज पहनकर, सी हाई हील्स पहनकर। तो सोचिए आपने जो आंसर्स दिए, सबने जो जो आंसर दिए, कईयों ने गलत दिए कईयों ने सही दिए, पर हमारे पास एक आ गया है नाम, चलिए जानते हैं कौन है बनी विनर। कॉन्ग्रेचुलेशंस संध्या डोली जी, जो कि है फ्लोरियाल से, आपने जीता है 2 एंट्री टिकट्स और हम तो कहेंगे सभी को थैंक यू सो मच। पर फिर भी हम पूरे दिन साथ हैं आपके, 24 आवर्स साथ रहते हैं और बहुत सारी गेम्स होने वाली हैं और भी जिन्होंने नहीं जीता है, आंसर्स भी राइट दिए पर हमें एक को तो चूज़ करना ही था। तो फिर हमारे पास आ गया है वो नाम, तो हम तो आपको कॉन्ग्रेट्स कहेंगे और साथ में जुड़े रहिए, थोड़ी देर में हम आप सुन पाएंगे हॉरोस्कोप।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: RM2 Radio Musti.
1: Your daily horoscope.
0: RM2 Radio Musti.
2: सुबह अपने रंग में आ चुकी है, किसी को काम की जल्दी और किसी को घर की जिम्मेदारी, तो चलिए जानते हैं आज आपके सितारे आपके लिए क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले
3: एरीज मेष राशि,
2: आज काम में आपकी तेजी खूब काम आएगी। पैसों से जुड़ा कोई छोटा फैसला समझदारी से लीजिएगा। घर पहुंचकर अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर बिताइएगा और निकालिएगा। लकी कलर बनेगा रेड, लकी नंबर है 5।
3: टॉरस वृषभ राशि,
2: आज किसी पुराने काम का अच्छा नतीजा मिल सकता है। खरीदारी करें तो जरूरत और बजट दोनों को ध्यान में रखकर करें। लकी कलर बनेगा ग्रीन, लकी नंबर है 4।
3: जेमिनी मिथुन राशि,
2: आज आपकी बातचीत किसी काम को आसान बना सकती है। दोस्त या कलीग से अच्छी खबर मिल सकती है। स्टूडेंट भी पढ़ाई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस और एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर रखें। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 3।
3: कैंसर कर्क राशि,
2: आज घर परिवार की कोई बात दिल खुश करेगी। काम में भी किसी का अच्छा सहयोग आपको मिल सकता है। सब एक दूसरे की केयर करने वाले हैं आज लगता है। लकी कलर बनेगा व्हाइट, लकी नंबर है 2।
3: लियो सिंह राशि,
2: आज आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस दोनों साथ देंगे। काम में अपनी बात रखने का अच्छा मौका मिलने वाला है। किसी की तारीफ जरूर कीजिएगा। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
3: वर्गो कन्या राशि,
2: आज आपकी प्लानिंग कई काम आसान कर देगी। स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन का अच्छा दिन है। लकी कलर बनेगा ब्लू, लकी नंबर है 6।
3: लिब्रा तुला राशि,
2: आज रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से बातचीत हो सकती है। कोई काम आपके लिए नए खुल सकते हैं। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
3: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
2: आज कोई नया आइडिया आपके करियर को बना सकता है। आपकी क्षमता जरूर अपनी तोलें और देखें कि आप वो काम कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। लकी कलर बनने वाला है आपका पर्पल, लकी नंबर है 8।
3: सजिटेरियस धनु राशि,
2: आज कुछ नया सीखने का मन बन सकता है। कुछ आउटिंग के लिए कुछ प्लानिंग हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए। खर्च थोड़ा सा हिसाब से कीजिएगा। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
3: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
2: आज काम में आपकी मेहनत नोटिस हो सकती है। कोई पेंडिंग जिम्मेदारी पूरी करके आपको राहत मिलने वाली है। बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 5।
3: एक्वेरियस कुंभ राशि,
2: आज आपका अलग सोचना, आपका एक अलग तरीका आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आपकी पहचान आगे बहुत अच्छी बन रही है। लोग आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 4।
3: मीन राशि,
2: आज दिल और दिमाग दोनों अच्छे तालमेल में रहने वाले हैं। अगर पढ़ाई करते हैं तो हमेशा की तरह कंसंट्रेशन बहुत अच्छे रहने वाला है। म्यूज़िक पसंद करते हैं तो म्यूज़िक आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आप कोई अच्छे काम करते हैं तो उसकी प्लानिंग आप बहुत अच्छे करने वाले हैं। लकी कलर बनेगा आपका पिंक, लकी नंबर है 6। तो दोस्तों ये था आपका हॉरोस्कोप। आपको यही कहेंगे जिंदगी को बैलेंस करके चलिए, इंजॉय कीजिए गानों को।
1: Your daily horoscope.
0: RM2 Radio Musti.
4: Welcome to RM2
0: Musti Mornings Radio Musti.

0: Radio Masti, your number one Balalut station.
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Masti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Masti.
1: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: Time check, सुबह के 10 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से. अदिति, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार. गुलशन गोविंद से जुड़ी जांच में एक नई बात सामने आई है. आरोप है कि आजसू के सदस्यों ने उन्हें अपना वकील बदलने के लिए मनाने की कोशिश की है. ये दावा उनके वकील रुबेन मोहंगापिले ने किया. उनके मुताबिक ये घटना पिछले हफ्ते उनके मुवक्किल के फोन की फोरेंसिक जाँच के दौरान पेश आई. वकील का कहना का आरोप है कि गुलशन गोविंद को एक सिम कार्ड वाला फ़ोन दिया गया और उनसे कहा गया कि वे अपनी पत्नी एमपी वेरोनिक लेगोविन को फ़ोन करें और उनसे कोई दूसरा वकील रखने के लिए कहें. खबर के अनुसार 3 और 4 सितंबर को 2 कॉल किए गए थे. वेरोनिक लेगोविन को भी कई कॉल और मैसेज मिलने का आरोप है. वकील मोहंगापिले का कहना है कि उन्होंने उन नंबरों से जुड़े यूजर्स की पहचान करने की कोशिश की है लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. उनका मानना है कि डिजिटल निशान से पता लगाने में मदद मिल सकती है कि वे नंबर कहां से आए थे. वकील का कहना है कि वे बदले की कार्रवाई के डर के बिना गुलशन गोविंद का पक्ष रखना जारी रखेंगे. ट्रैवल एजेंसी ब्लू कनेक्ट लिमिटेड के पूर्व टिकटिंग एजेंट केल्विन सुताना को कल इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के आरोप पर गिरफ्तार किया गया. उन पर आरोप है कि उसने ज़रूरी शुल्क दिए बिना कूपन कोड का इस्तेमाल करके एयर फ्रांस की बुकिंग में बदलाव किए. जुलाई 2024 और अगस्त 2025 के बीच कथित तौर पर 34 यात्रियों की 28 बुकिंग की गई. इनमें से कुछ बुकिंग उसने अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए की थी. ब्लू कनेक्ट लिमिटेड को हुए आर्थिक नुकसान का अनुमान 70,000 यूरो यानी करीब 3.5 मिलियन रुपए से ज़्यादा का है. बताया जाता है कि एयर फ्रांस के इंटरनल ऑडिट के दौरान इन धोखाधड़ियों का पता चला. एफसीसी ने इस मामले में जांच शुरू की है. वाकवा में उसके घर की तलाशी के दौरान एक मोबाइल फ़ोन और एक टैबलेट तथा एक लैपटॉप जब्त किया गया. बेल एंड रिमांड कोर्ट में कल मडागास्कर के व्यवसायी मामी आवातुमांगा की जमानत अर्जी पर गवाहों की सुनवाई पूरी हुई. कृषि और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री समेत कई सेक्टरों में कार्यरत सोडियट ग्रुप मडागास्कर की एक बड़ी होल्डिंग कंपनी है. इसके सीईओ ने मेलरोज हाई सिक्योरिटी कैदखाने से वीडियो लिंक के जरिए गवाही दी जहाँ उन्हें रखा गया है. मामी आवातुमांगा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि एफसीसी ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि वे एक निवेशक हैं, अपराधी नहीं. उन्होंने बताया कि वे 30 से ज़्यादा सालों से मॉरिशस में व्यापार कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा मॉरिशस के बैंकों को राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्ति के तौर पर अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी है. दोनों पक्षों के वकील आज दोपहर अपनी दलीलें पेश करेंगे. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 87 अन्य लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही. इस पर्यटन नौका से 42 लोगों को बचाया जा सका है. हादसे के वक्त क्रू सदस्यों सहित नौका पर 134 लोग सवार थे. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. शोक समाचार सुनिए. मैडम लोलो रोजबेल में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बिस्वंती भूपत. श्रीमती बिस्वंती भूपत पैदाशी नाम सियरनामा जो शांति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके मकान मैडम लोलो रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन

0: टुडे एट 3 PM शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:10 हो चुके हैं और गणेशा तो हमारे साथ ही है और सभी बच्चों के साथ है और हम तो यही जानते हैं कि एग्जाम्स बिल्कुल पास हैं और हमारे बच्चे दिन रात एक कर रहे हैं. घर में भी आजकल बस पढ़ाई और रिवीजन की तैयारी का माहौल चल रहा होगा, तो क्यों ना हम मिलकर उनका सब बच्चों का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ा सा होता है कि हम बच्चों के लिए कुछ कहें. तो हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे, आपको हमें मैसेज करना है 5499-1294 पर, सिर्फ अपना नाम लिखना है जो विशेष भेज रहा है और उस स्टूडेंट का नाम भेज रहा है. दैट्स ऑल आप हमें भेज सकते हैं, हम भी उनके लिए थोड़ा सा हौसला बढ़ाएंगे और हम उनसे बात करेंगे कि भाई जो गाने चलाएं, एक दो गाने हम उनके लिए चलाएं, क्योंकि ये जो टाइम है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ज़रा सा भी एक मैसेज आप सबकी तरफ से अगर उनके लिए आ गया तो बस उनका दिल बड़ा हो जाएगा और वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर पाएंगे. तो हम भी चाहेंगे अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499-1294 पर.
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना रब्बा जानदा रब्बा जानदा। अरे भाई हम भी जान गए हैं आप सबको कितना प्यार है अपने लोगों के साथ। तो चलिए भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैसेजेस आए हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी और प्यार भरे मैसेजेस भेज रहे हैं। सबसे पहले आया है गायत्री बच्चे के लिए, उनके परिवार की तरफ से बेस्ट विशेज़ और उन्हें कह रहे हैं बस अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मम्मी पूनम की तरफ से एलिना एंड क्लॉस को बेस्ट विशेज और पूरे परिवार की तरफ से बेस्ट विशेज। नेहा के लिए बेस्ट विशेज फ्रॉम मामा एंड पापा। रिद्वान के लिए उनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज। कृतिका ग्लेन पार्क से उनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज। ज्योति के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज। सुमित एंड प्रतीक्षा, कपिल, रिद्धि, सुनीता, फरहान, रेशमा, सत्यन, नीतू, निशा, सुधा एंड सिद्धार्थ की तरफ के लिए बहुत सारे बेस्ट विशेज उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनके फैमिली की तरफ से, उनके मम्मी पापा और भाई बहनों की तरफ से। रॉयल पोर्टलिस के लिए सभी स्टूडेंट्स की तरफ के लिए सभी टीचर्स की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं और बहुत सारी टीचर्स ने कहा है प्लीज़ हमारे सभी बच्चों के लिए बस एक प्यारा सा गाना चला दो क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड हैं कि आप कौन सा गाना चलाने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हम भी एक ढूंढ कर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना। इन्जॉय कीजिएगा और बच्चा पार्टी, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आपके पेरेंट्स के सपने पता नहीं पूरे हुए नहीं हुए पर आपके कुछ तो होंगे, अगर नहीं है तो ज़रूर देखना शुरू करें। इन्जॉय कीजिए गानों को और साथ में पढ़ाई बिल्कुल मस्त और कहते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इन्जॉय कीजिए इस गाने को।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: Allo occasion Ganesh Chaturthi, Fresh Flora Malini Fleuris Plantea importateur fleur puis offre un discount spécial l'eau se ban guirlande bouquet et fleur dans tout ban magasin à travers l'île. L'Almaty, Flac Cœur de Ville, Goodlands Cœur de Ville, Royal Road Goodlands, Rivière du Grand Port, Flac Retail Park, Bel Air et Richter Mall.

0: plus de renseignements, contactez-nous au 57 96 92 24 57 96 92 24.
1: RM2 Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:37 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। और मस्ती मॉर्निंग हमेशा आपके लिए लेकर आता है कई बार बहुत सारे गानों के साथ कई टिप्स और कई सारी गेम्स, कई बार बहुत सारे वाउचर्स। तो हम आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें देते रहते हैं, पर एक प्यारा सा टिप लेकर आए हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है, जिसे कई बार शुगर भी कह देते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो उसमें क्या होता है कि बहुत मीठा हो जाता है जब आपकी बॉडी में। तो हम कहते हैं कि अपने चेहरे पर जैसे कभी कभी हम क्लीनिंग करते हैं सोप से तो क्लीन हो जाता है, वैसे ही हमारे पेट के अंदर कैसे क्लीनिंग करें। तो आपको क्या करना है कि जो मेथी सीड्स होते हैं, आपको मेथी सीड्स को एक पॉट में अपने घर पे 2-3-4 पॉट छोटे छोटे छोटे से उगा लीजिए। उसके अंदर थोड़ी सी बस मेथी डाल दीजिए और थोड़े दिन के बाद, मतलब 10-15 दिन के बाद, आपको देखेंगे कि मेथी आने लग गई। हाँ, कसूरी मेथी जो मार्केट में मिलती है वो सेम होती है पर सूखी होती है। आपको क्या करना है, जो मेथी है उसके ऊपर से स्टेम्स काट के उसको थोड़ी से आटे में डाल के गूंद के प्याज डाल दीजिए, गार्लिक डाल दीजिए, जिंजर डाल दीजिए और अच्छे से परांठे बना के आप खा सकते हैं, क्योंकि ये शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपका जो कड़वाहट है वो भी अच्छी रहेगी। और अगर आपको मेथी, येलो मेथी ही यूज़ करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पानी में सोक कर दीजिए पूरी रात को और उसका जो पानी है सुबह पी लीजिए। और जो मेथी बचेगी जो सुबह होगी, आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से मसल दीजिए और उसके बाद रोटी के ऊपर रखिए, उसमें प्याज वगैरह डालिए, उसका परांठा बनाइए, बहुत ही ऑसम बनता है, बहुत ही हेल्दी है। मतलब उसके अंदर आपको लगेगा उसमें दाल भी डाल सकते हैं जो आपने कुक की हुई है रात को, जो बची हुई दाल है, बेसन है, सब कुछ डाल दीजिए, मेथी के वो जो दाने हैं जो गीले हैं वो भी डाल दीजिए। आपको देखिएगा इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी डायबिटीज़ पे। और ये बहुत ही अच्छा टिप है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, एंजॉय कीजिए गानों को।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings, Radio Musty.
3: 10:43 हो चुके हैं और आपके लिए एक हल्कोरी फैशन की तरफ से एक प्यारा सा टिप देने के लिए आई है बात। तो चलिए भाई, हम भी टिप देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो एक क्या होता है, कई बार जैसे आप मेकअप कर रहे हैं और मेकअप करते ही कभी मेकअप रिमूवर होता है जो जिसमें ऑयल बेस्ड होता है, कभी वो आपकी ड्रेस पर गिर जाए, या कहते हैं कि कभी आप हेयर सीरम लगा रहे हैं और वो आपकी ड्रेस पर गिर जाए, तो उस वो छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ऑयल के निशान दिखते हैं, उसको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेना है, आपको जहाँ पर गिरा है उसके ऊपर वो कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा चुटकी या एक चम्मच डाल दीजिए। उसके बाद हल्का सा उसे 2-3-4 मिनट उसे रहने दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा बेबी पाउडर, कोई भी बेबी पाउडर है वो भी एक चम्मच उस पर डाल दीजिए, और उसके बाद फिर हल्का सा उसको मतलब 5 मिनट रहने दीजिए। जब ये दोनों चीज़ें ऑप्शन 5-5 मिनट कर लेंगे, तो हल्के से फिर से आपने उसे हटाना है और उसके बाद फिर से कॉर्नफ्लावर डालना है एक चम्मच, और वहाँ पर रहने देना है। वो जो जितना भी ऑयल है वो सारा उस ड्रेस से निकल जाएगा, और आपको एक हल्के से ब्रश से उसको क्लीन करना है। जैसे वो क्लीन हो जाए, उसके बाद एक हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेके, एक बूंद या दो बूंद पानी लेके उसके ऊपर से क्लीन करते हुए जाना है। जैसे वो पूरा क्लीन हो जाएगा, ब्रश से क्लीन हो जाएगा, आपका पानी से क्लीन हो जाएगा, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी के ऊपर या आपके जो जो क्लॉथ है उसके ऊपर 1% भी जो ऑयल का निशान नज़र आ रहा था वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पानी से धोएंगे तो आपको वो स्टेन रह जाएगा, अगर आप सोप लगाएंगे तो बड़ा सा स्टेन रह जाएगा। सो ये सिंपल सा ट्रिक है। कॉर्नफ्लावर यूज़ कीजिए या बेबी पाउडर यूज़ कीजिए, या एक एक करके दोनों चीज़ें यूज़ कर लीजिए, और बस स्टेप बाय स्टेप करते रहिएगा, आपका ऑयल निकल जाएगा।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन।

दोनों तरफ फैलने लग जाती है, तो भूख भी बड़ी जोर से लगने लग जाती है। तो 11 बजने वाले हैं और मुझे पता है आपके पेट में भी गुड़गुड़ कर रहा होगा मेरी तरीके से, क्योंकि हमें भूख लग जाती है। पर क्या करें, भूख लगने से पहले जो काम मिले हुए हैं वो भी तो निपटाने हैं, इसलिए कहते हैं भागो भागो और फटाफट से काम फिनिश करो। और इस गाने के बाद आप जुड़ पाएंगे संक्षिप्त समाचारों की और उसके बाद फिर से हम शुरू करेंगे हमारा मस्ती मॉर्निंग।

0: म्यूजिक फील द मस्ती
1: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप समाचार अदिति से। अदिति आपको नमस्कार।
2: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। गुलशन गोविंद से जुड़ी जांच में एक नई बात सामने आई है। आरोप है कि आरएसयू के सदस्यों ने उसे अपना वकील बदलने के लिए मनाने की कोशिश की है। ये दावा उसके वकील रूबेन मोंगापिले ने किया। उसके मुताबिक ये घटना पिछले हफ्ते उसके वकील के फ़ोन की फोरेंसिक जांच के दौरान हुई। वकील का ये भी आरोप है कि गुलशन गोविंद को एक सिम कार्ड वाला फ़ोन दिया गया और उनसे कहा गया कि वो अपनी पत्नी वेरोनिक लेगोविन को फ़ोन करे और उनसे कोई दूसरा वकील रखने के लिए कहें। खबरों के अनुसार 3 और 4 सितंबर को 2 कॉल किए गए थे। वेरोनिक लेगोविन को भी कई कॉल और मैसेज मिलने के आरोप हैं। वकील मोंगापिले का कहना है कि उन्होंने उन नंबरों से जुड़े यूजर्स की पहचान करने की कोशिश की है लेकिन उन्हें ना कामयाबी नहीं मिल पाई है। उनका मानना है कि डिजिटल निशान से ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि वो नंबर कहां से आए थे। ट्रैवल एजेंसी ब्लू कनेक्ट लिमिटेड के पूर्व टिकटिंग एजेंट केल्विन सुताना को कल इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के आरोप पर गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि उसने ज़रूरी शुल्क दिए बिना कूपन कोड का इस्तेमाल करके एयर फ्रांस की बुकिंग में बदलाव किए। जुलाई 2024 और अगस्त 2025 के बीच कथित तौर पर 34 यात्रियों की 28 बुकिंग की गई। इनमें से कुछ बुकिंग उसने अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए की। ब्लू कनेक्ट लिमिटेड को हुए आर्थिक नुकसान का अनुमान 70,000 यूरो यानी करीब 3.5 मिलियन रुपये से ज़्यादा का बताया जाता है। बेलन रिमांड कोर्ट में कल मडागास्कर के व्यवसायी मामी गमतुमंगा की जमानत अर्जी पर गवाहों की सुनवाई पूरी हुई। कृषि और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री समेत कई सेक्टरों में कार्यरत सोडियट ग्रुप मडागास्कर की एक बड़ी होल्डिंग कंपनी है। इसके सीईओ ने मेलरोज हाई सिक्योरिटी कैदखाने से वीडियो लिंक के जरिए गवाही दी जहां उन्हें रखा गया है। मामी गमतुमंगा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि एफसीसी ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। 87 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। इस जहाज से 42 लोगों को बचाया जा सका है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। मैडम लुलु रोजबेल में 65 साल की 65 years old श्रीमती बिस्वंती भूपत पेदाशी नाम सियानामा जो शांति नाम से ज्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके मकान मैडम लुलु रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागीचानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। न्यू रोड रोशनवा में 89 साल के 89 years old श्रीमती परबावती महेश की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11:30 बजे इनकी बेटी श्रीमती रानी हीरा के मकान न्यू रोड घोषणा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लस्कौ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरा 10:30 AM। बुलाकी लेन मिडलैंड्स में 67 साल की 67 years old श्रीमती चंद्रिका सेलिन पैदाइशी नाम नेपाल जो गीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे इनकी माँ श्रीमती सविता नेपाल के मकान बुलाकी लेन मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 11 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
3: Welcome to RM2.
0: Musty Mornings Radio.

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: ग्यारह बजकर 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। जैसे तैसे सुबह की नींद से तो उठकर ऑफिस या बिजनेस या मीटिंग्स आपने कर ली होंगी, आपने संभाल ली होंगी, लेकिन इस ठंडे से मौसम में भूख को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें। तो आपको क्या करना है कि लंच कट आवर आने ही वाला है और कई लोगों को एहसास हो रहा हो कि भाई भूख लग रही है, तो आप क्या कर लो कि अभी से ही एक ग्लास पानी पी लो। थोड़ा सा एक फ्रूट है आपके आसपास लेकर आए हो घर से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ भी मिल रहा है वहाँ से एक या दो छोटे छोटे फ्रूट्स भी खा लो तो बहुत अच्छा है। सलाद दिख रही है तो सलाद खा लो, फ्रूट सलाद भी मिल रही है तो वो खा लो। तो जब ये जब खा लेते हैं ना, उसके बाद आप जब खाना खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप थोड़ा कम खा पाएंगे, अच्छा खा पाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही आपको मतलब एनर्जी वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको टायर्डनेस हो रही है या आपको नींद आ रही है, क्योंकि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके बाद नींद आने लगती है। और जो ड्राइव कर रहे होते हैं या जिनको अभी मीटिंग में जाना है, जिनको काम करना है, उनके लिए तो शाम तक एनर्जी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी पी सकते हैं, मतलब 3 बजे या 4 बजे के आसपास, पर आप पहले अभी पानी पी लो और उसके बाद देखिएगा 12 बजे के बाद जब आप खाना खाएंगे उसके बाद पानी नहीं पीना, जो हम हमेशा कहते हैं, तो आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी, गानों का साथ भी रहेगा, आर एम टू रेडियो मस्ती जैसे हमेशा आपके साथ रहता है, आपको छोटी छोटी बातें याद दिलाता रहता है। सबको पता है ये सारी चीज़ें, पर कई बार होता है दिमाग से उड़ जाता है, तो उड़ाइए मत, पहले अपने पास रखिए, इंजॉय कीजिए गानों को।
0: वेलकम टू आर एम टू
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 11:27 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ और इतने सारे मैसेजेस आ रखे हैं और सब पेंडिंग में चल रहे थे। चलिए भाई दो तीन मैसेजेस प्यारे प्यारे से ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आशा जानू जी। आज उनके नेफ्यू ऋषभ का बर्थडे है और जो कि आज 5 साल के हो गए हैं। बेस्ट विशेज फ्रॉम नानी माँ कुमारी शुभम, आशा आरती, राज, किश्तमा फैमिली एंड सभी टीचर्स एंड फ्रेंड्स की तरफ से। और बोल रहे हैं बहुत ही खुश हैं वो लोग क्योंकि आज आप छुटकू आपका बर्थडे है। क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे मैसेजेस आने अच्छे लगते हैं। राजन रघुवत जी साथ दे रहे हैं लंदन से और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से, इन्जॉय कर रहे हैं। ललिता जीतन जी आज ऑफिस नहीं है आपका और मस्ती कर रही हैं, पर कह रही हैं कैसे कैसे हो सकता है मैं अपने दोस्तों को भूल जाऊँ। कुमारी गीता सरोजी, गिनती वीना, ललिता, संजय विजय कुमार, देवी चरण जी के लिए प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। कह रही कोई भी गाना लगा दो मस्ती ही होगा, तो मुझे भी पता है कि मस्ती चलने वाला है क्योंकि मस्ती मॉर्निंग है। थैंक यू सो मच, आप इतना पहचानती हैं हमको इसके साथ में ही। और मैसेज आया है किसका, स्वीटी जी का आया हुआ है और कह रही हैं कि मैं इंजॉय कर रही हूँ मॉर्निंग से, थैंक यू सो मच आपका साथ देने के लिए। वीना गंगाधर जी साथ दे रहे हैं और देव जी यानी अपने हस्बैंड के लिए प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। और आज कियांश भी 3 साल के हो गए हैं, पापा मामा दादी नाना नानी चाचा चाची सिस्टर्स ब्रदर फूफू ग्रैंड माँ मामू सभी परिवार वालों की तरफ से उस प्यारे से बच्चे के लिए भी बेस्ट विशेज आई हैं। और कह रहे हैं कि जब बच्चों का बर्थडे होता है तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, हम खुद बच्चे बन जाते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ ये फीलिंग सभी के साथ ही होती है। तो चलिए भाई सभी का बर्थडे विश करते हैं और सबके लिए कहते हैं कि विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज बर्थडे है, जिन्होंने मैसेज किया नहीं किया, पर जिन्होंने मैसेज किया है वो तो अच्छी बात है, जो भूल गए उनका क्या होगा, इसलिए उनके लिए हम चलाते हैं ये

0: 92
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
1: Radio Musti.

0: दे रहे होते हैं, आपका ख्याल रख रहे होते हैं, आपसे पूछ रहे होते हैं कैसे हो, कहाँ हो, किधर हो. कई लोग कहते हैं ना, मतलब दिखते नहीं हैं बट कहीं ना कहीं से वो ख्याल ज़रूर रख रहे होते हैं, बट हमें कई बार एहसास नहीं होता. तो हमें इस एहसास को जगाते रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखते रहना है, एक दूसरे से हालचाल पूछते रहना है. जो इस समय एक किसी ना किसी लाइन में भी लगे होंगे तो एक दूसरे का साथ देते रहे, क्योंकि नंबर तो सबका ही आना है, कोई आगे कोई पीछे, चाहे वो हॉस्पिटल में लाइन में लगा होगा, कहीं वो अपॉइंटमेंट की लाइन में लगा होगा, हो सकता है कोई बैंक की लाइन में लगा हो, तो बैंक ये सब चलता रहेगा, ज़िंदगी भर सारे काम होंगे. थोड़ा सा एक दूसरे को स्माइल देते रहिए, बोलते रहिए यस यस यू आर फर्स्ट, दे दो जगह, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ी देर रुको, एक दूसरे को देखो, किसी ने क्या पहना हुआ है, कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं. थोड़ा सा जब घर जाओगे ना, आपको उनसे थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, जब ये आप एनर्जी लेके जाओगे तो बिलीव मी आपको अच्छा भी लगेगा और आपको एहसास भी होगा कि आप बाहर आए हैं. क्योंकि हम सिर्फ काम करने के लिए नहीं आए, बस बाहर आए और काम किया और भाग गए, नहीं नहीं, आराम से थोड़ा सा वक्त खुद को देते रहिए, इंजॉय करते रहिए गानों को.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:40 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं मस्ती मॉर्निंग के साथ. इस समय मैं आपका साथ दे रही हूँ पूनम. पर क्या कहते हैं ना कि जब हम तो यहाँ से रेडियो से साथ देते हैं, पर आपके आसपास बहुत सारे लोग आपका साथ दे रहे होते हैं, चाहे फ़ोन से दे रहे होते हैं, मैसेजेस से

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:54 हो चुके हैं दोस्तों. ये गानों के साथ में 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला मुझे यहाँ पे. पर मैं तो काम कर रही थी और मुझे पता है आप जहाँ पे काम कर रहे थे आपको भी नहीं एहसास हुआ होगा कि कहाँ ये काम हाथ कहाँ चल रहे हैं और कहाँ से काम हो रहा है. बस हम अपने खुरापाती दिमाग में से हर कोई इंसान कुछ ना कुछ निकालता रहता है. तो बस हम यही कहेंगे बस आप प्यार देते रहिए एक दूसरे को हमेशा. जो ये इतना जो एक बॉन्डिंग बनी होती है ना आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ में आप सबके आपके मैसेजेस के साथ में आपकी बातों के साथ में और आपकी जो फील हमारे साथ जुड़ी होती है हमें एहसास हो जाती है. तो बस ये इस ठंडे से मौसम में प्यारे प्यारे गरम गरम गाने आप सबके लिए तैयार हैं और थोड़ी देर में ही आप लंच कर रहे होंगे इस समय यार करने

0: वाले होंगे, हम आपको यही कहेंगे अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, पर मेरे बाद आपके साथ देने वाली है नीलमणि रेट्रोरिदम में, और पुराने गाने का सफर स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, तो बस उनका साथ दीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा गानों को मेरी तरफ से। बाय बाय।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सीईओ कुणाल नाइक और चेयरपर्सन नादिया पिरन ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को गांजे से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय रणनीति की रिपोर्ट सुपुर्द की। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त हुई सिफारिशें शामिल हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए आम जनता और विभिन्न संबंधित पक्षों से 1800 से ज़्यादा सुझाव और राय इकट्ठा की गई थी। मंत्रिमंडल को सौंपे जाने से पहले नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के स्तर पर इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। शागोस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस लगेगा। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर दूसरे वर्किंग सेशन के लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि और मॉरिशन अधिकारियों के बीच बातचीत चलेगी। बरतानी संसद में कल हुई बहसों में शागोस का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया। कंजर्वेटिव नेता केमी बदेनोक ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जेको गौसिया की लीज पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार क्यों हैं, जबकि वे बरतानी रक्षा बजट के लिए फंड देने से इनकार कर रहे हैं। जवाब में बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने बल देकर कहा कि यूके जेको गौसिया में अपना सैन्य अड्डा नहीं छोड़ेगा और इस बारे में अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। पॉपलोबोसिस की अदालत पिछले 26 अक्टूबर को रिश्ते के एक हाइपर मार्केट के सर्वेंस कैमरों के फुटेज को सबूत के तौर पर स्वीकार करने के बारे में अपना फैसला सुनाएगी। ये तस्वीरें पूर्व मंत्री कल्पना कुंजुशा के मुकदमे के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, जिन पर चोरी और चोरी का सामान रखने के आरोप लगे हैं। इस मामले में कल 3 गवाहों के बयान लिए गए। हाइपर मार्केट के सिक्योरिटी मैनेजर तेरूज, सीआईडी के एक सर्जेंट और पुलिस आईटी यूनिट के एक अधिकारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 87 अन्य लोगों का पता नहीं चल रहा। इस पर्यटन नौका से 42 लोगों को बचाया जा सका है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त है। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। क्लेयर फोन नंबर तीन फिनिक्स में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री जुनाई जीवन जो बेबे नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे इनकी पत्नी श्रीमती सुनीति सुमन गोपी के मकान नंबर क्लेफो नंबर 3 फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भुइयों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3:30 PM। जावियर रोड कास्कावेल में 36 साल के 36 ईयर्स ओल्ड के श्री केविन सोहराय जो कुनाल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनके पिता श्री मनोज सोहराय के मकान जावियर रोड कास्कावेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोसोंश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 2 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: Retro Rhythm.
3: RM2.

0: रेट्रो रिदम।
1: यहाँ पर एक हम है और रेट्रो रिदम का सिलसिला शुरू हो चुका है किशोर साहब और आशा भोंसले जी की आवाज से।

0: एंड आशा करते हैं कि आपने लंच कर लिया, अगर नहीं तो विश करते हैं आपको बन अपेटी विद योर आरएम जो रेडियो मस्ती एंड आल्सो जुड़े रहना हमारे साथ क्योंकि गेम्स भी ऑन द वे है. आप बस कनेक्टेड रहना, वाइब करते रहिए क्योंकि टाइमलेस सॉन्ग्स आ रहे हैं वन आफ्टर अनदर.
1: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे सौदा हमारा सिंपल था, आपको बताना था जवाब किस प्रश्न का। वेल द क्वेश्चन वाज सीक वर्ड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंड बहुत सिंपल था, इट्स अ सर्कस एंड आवर जावाटा वना का नाम क्या है, चलिए जानते हैं। And yes, so congratulations to Geeta ji, जो कि साउथ में मेबर्ग से है, आपको मिल गया सिया के जावता के दो टिकट्स, ना आप आराम से या तो वीकडेज पर थर्सडे फ्राइडेज को जा सकते हो at 6 PM, या फिर अगर वीकेंड्स पर आप फ्री हो, सैटरडेज संडेज को भी होता है मैजिकल शोज एज फ्रॉम 2:30 and 5:30, एंड टिकट्स कलेक्ट करने के लिए आपको आना है आईडी कार्ड के साथ MBC पर विद इन वर्किंग आवर्स 9 से लेकर 3 बजे तक इन बिटवीन। अभी के लिए एक म्यूजिक ब्रेक ले लेते हैं रेट्रो की दुनिया में, एंड देन वापस आएंगे विद अनदर गेम।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Retro Rhythm.
1: यस, ऐसे ही सेकंड नगीम का टाइम हो गया, जहाँ पर दो टिकट्स है हमारे साथ उनके लिए जिनके पास है सही जवाब। रेट्रो का टाइम है और हमारे लिसनर्स को पैम्पर करने का भी टाइम। गानों के साथ आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं। और अभी के लिए सवाल फॉर यू है कि जो गाना हमने अभी अभी चलाया, उस गाने का सिंगर कौन है? एंड यस, 5499-1294 पर अपने आंसर्स भेजिए और दो टिकट्स आपको मिल सकते हैं टू अटेंड द ग्रैंड फिनाले ऑफ फॉरेस्ट ब्यूटी विद अ नोबल पर्पस, यानी कि यो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड मॉरिशस 2026, जो कि होने वाला है इन 2 days, यानी कि 12 सितंबर को एट ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, आजा पिया तो है प्यार दूं के सिंगर कौन है? 5499-1294 पर आप हमें भेजिए।
0: Retro Rhythm. RM2.

0: रेट्रो रिदम।
1: यस सर, रेट्रो रिदम में अभी गेम चल रहा है। सवाल हमने पूछा था कि आजा पिया तू ही प्यार का गाना कि सिंगर कौन है, एंड सही जवाब है लता मंगेशकर जी। एंड सही जवाब हमें मिला फ्रॉम, आपका नाम क्या है? एंड यस, आप हैं मौशमी जी, कंग्रेचुलेशंस दिया। आपको मिला है 2 tickets टू अटेंड द ग्रैंड फिनाले ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड मॉरिशस 2026। टिकट्स कलेक्ट करने के लिए आपके पास आज का टाइम है एंड कल का। डोंट फॉरगेट कि फाइनल 12 सितंबर को है, तो जल्दी से MBC आकर अपने टिकट्स कलेक्ट कर लीजिए। फॉर नाउ अनदर प्यारा गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में, खास आपके आफ्टरनून को और भी स्पेशल बनाने के लिए RM2 रेडियो मस्ती पर ही।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे सुमेरा नमस्कार।
4: नमस्कार आदाब। कल 32 साल हंसराज कृष्णा को गिरफ्तार किया गया। वो दागोचिया का रहने वाला है, पेशे से ड्राइवर। उस पर शक है कि वो FCC का अफसर बनने का नाटक करता है, जो गाड़ियां बेचने का जिम्मेदार है और पैसे ले जाता है। एक व्यक्ति ने FCC को इत्तला किया। शकी मुजरिम के घर की तलाशी दी गई। एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव और एक मोबाइल फोन को जब्त किया गया। FCC को शक है कि शकी मुजरिम ने कई और लोगों के साथ ये हरकत की होगी। मॉरिशस में 11 से 13 सितंबर तक यानी कल से वर्ल्ड तमिल्स इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में लगाया जाएगा, जहां पर ठेकेदार, अर्थशास्त्री और विभिन्न देशों से आए पेशेवर भाग लेने वाले हैं। इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थनीति की चुनौतियों पर बात की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर बातचीत की जाएगी। पहली बार के लिए मॉरिशस में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के महानिदेशक दाहेन तांग ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। मॉरिशस ने

0: WIPU के समर्थन की मांग की है ताकि विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा सके। इनमें आयात के संदर्भ में बातचीत शामिल है। और विदेश में अमेरिका ने कहा है कि अगर सभी अमेरिकी $5,000 का पे आउट करे तो रिपब्लिकन और चैम्बर्स ऑफ कांग्रेस यानी दोनों का इलेक्शन में जीत हो तो सभी अमेरिकी बालिगों को $5,000 मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Misty.

0: रेट्रो रिदम। जी हाँ, रेट्रो रिदम पर आपका फिर से भरा सा वेलकम है दोस्तों। यहाँ गाने सिर्फ चलाए नहीं जाते, यादें जगाते हैं। 70s, 80s एंड 90s का वो ज़माना जब एक गाना सुन के पूरी कहानी याद आ जाती थी, और पहले एक कैसेट के लिए रिवाइंड बटन भी 10 बार दबाना पड़ता था। तो अभी के लिए वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा दीजिए, नॉस्टैल्जिया को दिल में जगा दीजिए, और चलिए कंटिन्यू करते हैं आपका अपना रेट्रो रिदम बॉलीवुड मस्ती गेम और आपके मैसेजेस के साथ। सो 5499124 पर अगर आपके पास है कोई मैसेजेस या डेडिकेशंस, डू नॉट हेजिटेट, 2 बजे तक इट्स नलमनी जो है साथ में फॉर यू।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम
1: और अभी के लिए वक्त है आपकी मैसेजेस क्या, क्योंकि रेट्रो रिदम तभी कंप्लीट होता है जब आपकी कहानी भी साउंड ट्रैक का हिस्सा बने। यार ओ ये मैसेज देखिए, आप है पद्मिनी जी और कह रही है कि आज है आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आप एक गाना सुनना चाहते हैं खास मूवी वक्त से, कोई भी गाना, क्योंकि आपके हस्बैंड आपके लिए गाया करते थे। हाउ स्वीट है, धुन कर जल्द ही चलाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। वी ऑल्सो हैव प्रकाशवती जी जो साथ दे रहे हैं। आप कह रहे हैं हाय नीतूषा, अरे

0: Natural Rhythm.
1: वैसे आज का फन क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया है। अगर आप

0: गली खोली नंबर 420
1: एक्सक्यूज मी प्लीज
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस
2: ओह माय
0: राइट मैं दुनिया पे अकेला हूँ
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड By the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माई नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: Oh, cute.
0: Right, my

0: रेट्रो रिदम।
1: गाने में वो बोलते हैं मैंने पिया आपने पिया, अरे हम बात कर रहे हैं पानी की। पानी पीना जरूरी है बॉस, वरना गाना तो रेट्रो हो जाएगा लेकिन हम खुद डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। तो एक काम कीजिए, अभी के लिए एक ग्लास पानी लीजिए और सिप लीजिए और फिर बोलना हाँ जी नीलमणि जी हमने पानी पी लिया है। वेरी गुड। तो चलिए अब हाइड्रेशन के साथ एक रिफ्रेशिंग रेट्रो नंबर हो जाए। किसको याद है ये नेक्स्ट गाना, चलिए खुद ही चेक कर देते हैं।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check, 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
5: नमस्कार और आदाब. कश्तियों को दी जा रही सेवाओं को आसान बनाने के लिए बंदरगाह आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है. मुर्शिदपुर पोर्ट अथॉरिटी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है. प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज बनाया जा रहा है. मैरीटाइम सिंगल विंडो के जरिए बेहतर संचालन पर जोर दिया जा रहा है. इस साल मुर्शिद में वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा. 11 से 13 सितंबर तक पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में ठेकेदार, अर्थशास्त्री और मुख्तलिफ मुल्कों से आए पेशेवर वैश्विक अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय तिजारत की चुनौतियों पर बात करेंगे. पहली बार के लिए मुर्शिद में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है. आज इस अंतर्राष्ट्रीय इदारे के महानिदेशक दागिन थांग ने विदेश मंत्री से मुलाकात की. मुर्शिद ने कई परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग की मांग की. विदेश में फिलीपींस के पलावन राज्य में कश्ती में आग लगी. कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और 87 लोग जख्मी. तटरक्षकों के मुताबिक 82 लोगों को बचाया गया, जिनमें 38 मुसाफिर और 4 क्रू सदस्य शामिल हैं. और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर नवंबर के चुनावों में रिपब्लिकन्स की जीत हुई तो हर अमेरिकी नागरिक को $5,000 मिलेगा. अपनी कार्यावधि के मध्य में पार्टी के पहले जुटाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. मामजल जान गुडलैंड में 85 साल की थी. 5 ईयर्स ओल्ड श्रीमती यशुमती लकू. श्रीमती यशुमती लकू पैदाइशी नाम रामेश्वर, जो दादी बानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल 10 बजे इनके बेटे संजीव लकू

0: उनके घर मामजे निशान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: RM2 Radio Musty.
1: Bombay Talkies
2: Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: सो वेल फ्रेंड्स, 2:10 एंड आज है थर्सडे आफ्टरनून. हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक ठाक, एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, लाइफ है, ऊपर नीचे होता रहता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं. लेकिन आफ्टरनून 2 to 4 तक ये हम एंड शो करते हैं कि आपके लिए हम कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स लेकर आए, लेटेस्ट ट्रैक के साथ बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स भी आप तक पहुंचाए. सो वेल, अभी के लिए परी की ओर से प्यार भरा नमस्कार हमारे सभी लिसनर्स को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन दिस ब्यूटिफुल थर्सडे आफ्टरनून. बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बारिश कभी हो रही है, कभी रुक रही है, और कभी एकदम छोटे छोटे छींटे पड़ रहे हैं. लेकिन ऐसे में आप हमारा साथ दे रहे हैं. मौसम चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हम आपके दिल का मौसम हमेशा सेट रखते हैं. सो वेल फ्रेंड्स, वार्म वेलकम है आपका, दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज एंड RM2 रेडियो मस्ती पर. मैं हूं परी आपके साथ. अभी से लेकर दिन के 4 तक कुछ ब्यूटीफुल लेटेस्ट ट्रैक्स एंड बीट डाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे. आप भी साथ निभाइए. और ऑफ कोर्स जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब, हमारे सबसे फेवरेट, वो है आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल का हाल, जिसका हम करते हैं इंतजार ऑन 5499-1294. सो चलिए, अभी के लिए कुछ प्यारे गाने हम आप तक पहुंचा रहे हैं. मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं. जैसे हमने कहा कि मौसम जो है वो एकदम बदल रहा है, जहां पर हल्की बारिश और कभी कभार धूप भी निकल रही है, हवाएं काफी तेज हैं. सो ऐसे में हम आपके दिल का ख्याल रखते हैं और फैजल अली खान की आवाज, तो फिर आओ आवारापन टू ऑल द लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हैव अ वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: एंड वेल फ्रेंड्स, 2:22 जब बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं तो बीते महीने यामी गौतम की नई फिल्म नई नवेली का ऐलान किया गया था और आज जब फैंस को एक नया तोहफा मिल गया है, नई नवेली का टीजर जारी कर दिया गया है। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और टीजर की छोटी सी झलक काफी दिलचस्प नजर आ रही है। फिल्म के टीजर की शुरुआत एक मिडिल क्लास भरे पूरे जॉइंट परिवार के साथ होती है। सभी बैठे हैं तभी अचानक से एक इंसान की आवाज़ आती है कि जूते चप्पल नकली वस्तुएं सब उतार कर रख दीजिए। ये आवाज़ लगाने वाला जो शख्स है वो दरअसल घर में आई नई बहू मोहिनी यामी गौतम का देवर बंटू है। बंटू से इस तरह बात किए जाने पर परिवार के सदस्य हैरानी से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है और जवाब मिलता है कि बात ये है और बात बस भाभी के बारे में है। सब परेशान हो जाते हैं कि मोहिनी को आखिर हुआ क्या है और अगले दृश्य में यानी कि अगले सीन में बंटू एक खुलासा करता है और कहता है कि भाभी डायन है। परिवार के सभी सदस्य डांटते हैं और बंटू को चाटा भी रसीद कर देते हैं। उसके बाद यामी गौतम की एंट्री होती है। चटक लाल रंग की साड़ी में नई नवेली दुल्हन के अवतार में यामी बड़े ही कूल अंदाज में कहती है, बस डायन, दो डायन, तीन पिशाच और चार भूत तो मैं सुबह नाश्ते में खा गई हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए यामी गौतम कहती है कि देवी और सज्जनों, एक छोटी सी गुजारिश है, बड़ा सोचो। यानी कि ये डायलॉग से लगता है कि ये जो हॉरर फिल्म है उसमें सस्पेंस और थ्रिल का जो डोज है वो दर्शकों की उम्मीद से बढ़कर मिलने वाला है। बता दें कि ये फिल्म इस साल दशहरा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी और फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय है। डायरेक्शन की कमान बालाजी मोहन ने संभाली है। सो यहाँ पर बता दें प्रोड्यूसर इज आनंद एल राय और डायरेक्शन किया है बालाजी मोहन ने। सो ये जो फिल्म है दशहरा के मौके पर रिलीज होने वाली है और फिल्म है नई नवेली जिसमें नजर आने वाली है यामी गौतम उनके कूल डायन अंदाज में।
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है।
3: Bombay Talkies, Radio Musti,
4: Radio.

0: to Radio Musti.
1: Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में. साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट. आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है. आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट. और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो. तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसान के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: from Radio Masti.
1: तो चलिए आज का दिन, इट्स अ स्पेशल स्पेशल डे. विशाल भैया, विशाल बसीसा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भैया विशाल, और बहुत सारी

शुभकामनाएं ऑन दिस स्पेशल स्पेशल डे। आज तो आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन एवरी डे तहे दिल से हम बस यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराती रहें। अभी के लिए स्पेशल स्पेशल विशेस कमिंग फ्रॉम योर ब्यूटीफुल वाइफ रीना, प्यारा सा बेटा भवेश, सभी बिसेसा परिवार नूरफोन से लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारा प्यार। सारी हमारी कैंटीन टीम आपको विश कर रही है हैप्पी बर्थडे, एंड ऑफकोर्स द फुल MBC टीम विशेज यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके जन्मदिन पर हम क्या ही खास कर सकते हैं, बस तहे दिल से ये कह सकते हैं कि आप जितना भी करते हैं बस बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि कभी कभार हमारी छोटे छोटे जेस्टर्स जो है वो आपको भी स्माइल करने पर मजबूर कर दें। सो टुडे ऑन योर बर्थडे आपको विश कर रहे हैं बहुत सारा प्यार, बहुत सारी गुड विशेज, जिंदगी की सारी खुशियाँ आपको मिले, और अभी के लिए बस आपको हैप्पी वाला बर्थडे और गुड विशेज हमारी पूरी टीम की ओर से।

चलिए विशाल भैया, दिस इज अ स्पेशल स्पेशल विश आपके लिए एंड स्पेशल सॉन्ग आपके लिए ऑन योर जन्मदिन ऑन योर बर्थडे। सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं आप और सुबह से लेकर देर रात तक बस हमारे लिए कुछ खास कुछ स्पेशल करते रहते हैं आप, है तो हम भी यहाँ पर आराम से काम कर पाते हैं। तो अभी आपको बस कहेंगे थैंक यू, लेकिन एवरी डे कोशिश करेंगे कि आपके दिन को हम भी स्पेशल और खास बना सके। ऑन योर बर्थडे विशिंग यू लोड्स ऑफ गुड विशेज, बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल विशेज अभी के लिए फ्रॉम योर ब्यूटिफुल वाइफ रीना, फ्रॉम बेटा भविष्य एंड ऑफकोर्स हमारी पूरी MBC एंड हमारी पूरी RM2 रेडियो मस्ती टीम की ओर से।

0: और इसी गाने के साथ विशाल भैया उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए, जो भी सपने आपने देखे हैं वो पूरे हो जाए और जो भी आपकी विशेस हैं वो कंप्लीट हो जाए। विशेस आप तक पहुंचाते रहेंगे और एवरीडे बस दिल से यही कामना करेंगे कि सारी खुशियां, जीवन की जितनी भी खुशियां हैं सब आपको मिले। वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
3: रेडियो मस्ती।
4: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Mikey's
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: वेल फ्रेंड्स, इट्स 2:46 है। बॉलीवुड में बीते कुछ दिनों में कई नई फिल्में रिलीज हुई जिनमें लीड एक्टर्स का अंदाज बेहद वायलेंट यानी कि आक्रामक दिखाया गया और एक बातचीत के दौरान एक्ट्रेस करीना कपूर ने इस मामले पर खुलकर बात की। साथ ही बॉलीवुड फिल्म मेकर से जुड़ा एक बड़ा बयान भी दिया। सो हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर एक्ट्रेस ने नए दौर की जो वायलेंट फिल्म है उन पर बात करते हुए कहा कि हमारे दर्शक जितना हम सोचते हैं उससे कई ज़्यादा समझदार है। उन्हें पता है कि अच्छी फिल्म कौन सी है और उन्हें कौन सी फिल्म देखनी है। आज बात सिर्फ यंग लव स्टोरी की नहीं है और ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी है। आजकल हिंसा का दौर है यानी कि वॉयलेंस का दौर है। अपनी बातचीत में आगे करीना कपूर ने कहा कि एक एनिमल फिल्म क्या चल गई, हम भी वैसी ही फिल्म बना लेते हैं और क्या हमारी सोच भेड़ चाल जैसी है। हालांकि कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स भी हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जो आपके विचारों को झकझोड़ना चाहते हैं और जिनकी अपनी फैन फॉलोइंग भी है। मुझे लगता है कि अब चीज़ें बदल रही है। दर्शक अब ट्रेलर देखकर ही तय कर लेते हैं कि कौन सी फिल्म उन्हें देखनी है। करीना ने आगे बताया कि ये फिल्म मेकर्स अब अपना पुराना माइंडसेट जो है वो छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यंग ऑडियंस ऐसे सवाल पूछेगी जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। आज के दौर में फिल्म मेकर्स ये सोचकर फिल्म नहीं बना सकते कि ये कॉमेडी है तो चल जाएगी। हर फिल्म 200 करोड़ या 500 करोड़ कमाने वाली नहीं और मुझे लगता है कि हमें इस

0: सोच को बदलना है और इसमें दर्शक जो है वो हमारी मदद कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें करीना की अगली फिल्म दायरा है, इसमें उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में दोनों ही एक्टर्स पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। फिल्म का निर्माण पैन स्टूडियोज और जंगली पिक्चर्स के बैनर तले हुआ है और ये फिल्म 18th of September को रिलीज होने वाली है, यानी कि विद इन 8 days ये फिल्म रिलीज होगी। एंड दैट्स दायरा, जो आजकल काफी चर्चाओं में है, जहां पर करीना कपूर के साथ नजर आने वाले हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि अब दायरा जो है वो लोगों को कितनी पसंद आती है और जो बातें करीना ने कही है, क्या ये फिल्म थोड़ी सी हटकर है, थोड़ी सी ऐसी है जिसे जो दर्शक है देखना पसंद करेंगे, और देखने के बाद क्या होगा उनका रिव्यू इस फिल्म को लेकर, इसके लिए हमें करना है 18 September का इंतजार।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: और चलिए दोस्तों, अभी के लिए आपका प्यार, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं करना है आपको इंतजार। यू कैन सेंड मी आपके मैसेजेस डेडिकेशंस 54991294 पर। कविता हमारा साथ दे रही है और कहते हैं दैट एक ब्यूटीफुल गाना आप चलाना चाहती है, होगा फॉर मोहन, रेखा, अंबिका, प्रमिला, सबीना, सभी के नाम। तो चलिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके नाम। थैंक यू सो मच कविता, साथ दे रही हैं आप। सो वी हैव सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके नाम। साथ ही यहाँ पर विजया जी आप भी जुड़ गई हैं। स्टिल नॉट फीलिंग ओके एंड वी आर सेंडिंग लोड्स ऑफ गुड विशेस आपके लिए, गेट वेल सून एंड दिल से चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए। जावेद लालमाती से आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए सो ये गाना आपके नाम गुजार फॉर ऑल योर लव्ड वंस एंड ऑफकोर्स फॉर ऑल द डियर लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक। दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज।

0: RM2 Radio Musti.
1: So, well, friends, 257 with this track बनने वाले हैं समाचारों की ओर. लौट कर आएंगे बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक.

0: to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti. Feel the Masti.
4: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
5: नमस्कार और आदाब. कश्तियों को दी जा रही सेवाओं को आसान बनाने के लिए मोटरस्पोर्ट अथॉरिटी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज कर रही है. मैरीटाइम सिंगल विंडो के विकास से आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं. इस प्लेटफॉर्म के जरिए कई बंदरगाही सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराया जाएगा. इस प्रणाली से बंदरगाह समुद्री ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संचालित करेगा. गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकना या यानी इलीगल डंपिंग करने की हरकत के सिलसिले में पर्यावरण मंत्रालय ने आज सुबह कुडो में मोरी फैसिलिटीज में एक राष्ट्रीय चेतना अभियान की लॉन्चिंग की. नए उपकरणों को प्रदान करते हुए यह ऐलान किया गया. भारतीय सरकार के सहयोग से 6 स्कैवेंजिंग लॉरियां दी गई हैं. ये चेतना अभियान इलाकाई प्रशासनों की मदद से चलाया जाएगा ताकि जनता के ज्यादा करीब हो. इस साल मॉरीशस में वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा. 11 से 13 सितंबर तक पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में ठेकेदार अर्थशास्त्री और मुख्तलिफ मुल्कों से आए पेशेवर वैश्विक अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय तिजारत की चुनौतियों पर बात करेंगे. विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर नवंबर के चुनावों में रिपब्लिकन्स की जीत हुई तो हर अमेरिकी नागरिक को $5,000 मिलेंगे. अपनी कार्यावधि के मध्य में पार्टी के पहले जुटाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. कोऑपरेटिव रोड लाफलुहा में 91 साल के 91 ईयर्स ओल्ड श्री किसवरदत्त दूरबीजा, श्री केसवरदत्त दूरबीजा, जो चुनन क्वाफिया के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. अर्थी कल 11 बजे के बेटे राज दूरबीजा के घर कोऑपरेटिव रोड लाफलोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रेमेशन टुमारो एट 11 AM. रॉयल रोड पे चिराफ्रे में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मिंत्रावती सिबा, श्रीमती मिंत्रावती सिबा पैदाइशी नाम सुन्यासी, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल दोपहर 1 बजे इनके घर रॉयल रोड पे चिराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है.
0: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: So well, that was Jack Silaj from the film Cocktail 2. और इसी गाने के साथ हमारे सभी listeners का warm welcome. 3:07 दोस्तों और आज है Thursday afternoon, 10th of September. लेकर आए हैं V-Town की updates and कुछ latest tracks. परी का साथ है दिन के 4 बजे तक. For now, मानी के मांगे हिते ये गाना आप सभी के नाम. Enjoy this one.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Mesty, your number one beloved station.
1: Bombay Talkies.
0: Radio Mesty.
2: Radio Mesty.
3: एंड वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए 3:20 एंड टाइम टू प्ले अ गेम आपके साथ, जहां पर आप जीत सकते हैं टू टिकट्स टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ व्हाट इज ब्यूटी विद अ नोबल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026। इस स्पेक्टेकुलर नाइट को अगर आप भी एंजॉय करना चाहते हैं, सिंपल सा सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब अगर आप देते हैं बनते हैं हमारे लकी विनर। सो यू कैन गेट दीज टू टिकट्स एंड एंजॉय दिस वंडरफुल ग्रैंड फिनाले। सो चलिए, अभी के लिए हम आपसे पूछेंगे एक सवाल। वैसे हम तो बस ये टेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को कितना गौर से सुनते हैं। फर्स्ट आवर में हमने एक फिल्म की बात की थी जिसमें नजर आने वाली है हमारी प्यारी सी यामी गौतम एज अ डायन, और वो कौन सी फिल्म है? यस, अपकमिंग फिल्म जो दशहरा के मौके पर रिलीज होने वाली है, जहां पर यामी गौतम नजर आने वाली है एज अ डायन। एंड आपको हमें बताना है इस फिल्म का नाम। इट्स अ हॉरर कॉमेडी फिल्म, यामी गौतम एज डायन। फिल्म का नाम आपको हमें बताना है। आपके सही जवाब 54991294 पर, 54991294 पर। वेटिंग फॉर राइट आंसर्स, आपके पूरे नाम पूरे पते के साथ। यस, मेक श्योर कि आप हमें आपका पूरा नाम और पता बताएं, और जो नाम आपके आईडी पर है वही नाम यहां पर आपको देना होगा, बिकॉज वंस यू कम विथ योर आईडी तो उसी नाम को चेक कर आपको इनाम दिया जाएगा। सो पूरा नाम आपको हमें भेजना है, विदाउट सरनेम ये कंसिडर नहीं होगा। सो यू हैव टू गिव मी योर फुल नेम एंड योर एड्रेस, और साथ ही आप भेज सकते हैं ऑन 54991294, 54991294 पर। वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स, ऑल द वेरी बेस्ट।

तो चलिए दोस्तों यहां पर आपसे सवाल पूछा था दैट अपकमिंग फिल्म ऑफ यामी गौतम जिसमें वो एक डायन के रोल में नजर आने वाली है एंड इट्स गोइंग टू बी अ हॉरर कॉमेडी फिल्म कौन सी है ये फिल्म एंड द राइट आंसर इज नई नवेली यस दशहरा के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी सो गुड न्यूज फॉर ऑल द फैंस ऑफ यामी गौतम सो वेल दोस्तों यहां पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब लकी ड्रॉ के बाद लकी विनर आप है प्रिय राज तिवारी फ्रॉम पालमा का ट्रिबोन दिया आपने सही जवाब बन गए हमारे लकी विनर सुवेल दिया है आपने हमें सही जवाब प्रिय राज तिवारी ऑफ पालमा का ट्रिबोन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने जीती है टू एंट्री टिकट्स टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ फोर्टिस ब्यूटी विद नोबल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मार्क द कैलेंडर मार्क योर कैलेंडर फॉर सैटरडे 12th ऑफ सितंबर 2026 शाम 7:30 बजे से एट ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर यस होने वाला है ऑन दिस सैटरडे 12th ऑफ सितंबर 2026 शाम 7:30 बजे एट ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर और यहाँ पर आप ये स्पेक्टेकुलर नाइट एंजॉय कर सकते हैं सो वेल अगर इनाम को कलेक्ट करने के लिए अपनी टिकट्स को कलेक्ट करने के लिए आपको आना होगा एमबीसी आप यहाँ पर आ सकते हैं फ्राइडे तक यानी कि कल तक आफ्टरनून 3 PM यानी कि सुबह 10 से लेकर आफ्टरनून 3 PM तक एंड डू ब्रिंग योर आईडी अलोंग सो वंस अगेन आपको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन सैटरडे को आप एंजॉय कर सकते हैं इस वंडरफुल स्पेक्टेकुलर नाइट को जहाँ पर आप एंजॉय कर पाएंगे ये ग्रैंड फिनाले सो कॉन्ग्रेचुलेशन जीतने के मौके और भी मिलेंगे स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए यहाँ पर कुछ स्पेशल विशेज आप तक पहुँचाने का टाइम आ गया. इट्स टाइम फॉर योर मैसेजेस या डेडिकेशंस 5499-1294 पर. यहाँ पर हमारी प्यारी सी रोशनी कह रही है कि आज ब्रदर विक्रम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और इस साल वो अपने घर गणपति बापा को भी ला रहे हैं. सो गॉड ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ पीस एंड हैप्पीनेस. सो वेल विक्रम जी, बहुत सारी गुड विशेज ऑन योर स्पेशल डे. गणपति बापा मोरिया, आई एम श्योर दैट बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है ऑन दिस बर्थडे, क्योंकि पापा आ रहे हैं घर. और जब भी वो घर आते हैं तो फिर जो हमारी झोली है उसे खुशियों से भर कर ही जाते हैं. सो बहुत सारी गुड विशेस टू यू विक्रम. स्पेशल विशेस कमिंग फ्रॉम योर डियर सिस्टर रोशनी एंड ऑफ कोर्स हमारी

रेडियो मस्ती टीम आपको विश कर रही है वेरी हैप्पी बर्थडे। इश्ना है हमारा साथ दे रही हैं आप और आज बेबी क्यांश अपना थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेस्ट विशेज स्पेशली फ्रॉम पापा पुवेश, मॉम इश्ना, दादी फिया और ची मामा, ची पापा। साथ में हैं नाना ज्वाला, नानी देवरानी, अंकल नीतीश, आंटी अनुषा, सिस्टर्स एंजल यानी आहना, लिया, पल्लवी, तुष्टि, ब्रदर लियान, उनकी पुपू रोशनी, उनके पुपा एंड उनके ग्रैंड मामा एंड मामा मून।

वेरी वेरी स्पेशल. सो यहाँ पर जो अगला गाना है होगा फॉर मिसेज सरोजनी सीतोहल और आपके लिए स्पेशल स्पेशल विशेज. शुभकामनाएं आप तक हम पहुंचा रहे हैं. 71st बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके लिए बहुत सारा प्यार एंड शुभकामनाओं के साथ आया है आपका पूरा परिवार. सो लोड्स ऑफ लव, लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स. ये है फ्रॉम सचिन, कुणाल और पूरा परिवार. सभी सीतोहल, तोरा चंद, हुसैन बकस परिवार आपको विश कर रहे हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे. साथ ही साथ स्पेशल विशेज उन तमाम लोगों के नाम जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: और चलिए दोस्तों इसी ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. ललिता जी हमारा साथ दे रही हैं, सो जाते जाते ये गाना आपके नाम हैव अ वंडरफुल टाइम. अब्दुल अंसारा बानू आप भी साथ दे रही हैं, सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपके नाम एंड फॉर ऑल द लिसनर्स जो कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ. एंड यहाँ पर आ रही है गिनीशा लेकर यो रफ्तार वाइब, सो उनका साथ निभाइए एंड शी इज गोइंग टू एंटरटेन यू विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज. Enjoy beautiful songs on Radio Masti.

0: सच ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग गाने लेकर आते हैं खासकर आप लोगों के लिए ऑन आवर इंटर रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 4 पीएम.
1: आवर इंटर रेडियो मस्ती. द टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: मैकडॉनल्ड्स. पा पा पा पा आई एम लविंग इट.
1: एंड आरकेजी क्लासिक प्योर काउ घी.
3: Radio Musti.
1: North, South,
3: 103.5.
1: East, West,
3: 96.4.
1: Center,
3: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: The Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ. नमस्कार और आदाब.
6: नमस्कार आदाब. गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकना यानी इलीगल डंपिंग करने की हरकत के सिलसिले में पर्यावरण मंत्रालय ने आज सुबह कुड्डू में मुरी फैसिलिटीज में राष्ट्रीय चेतना अभियान की लॉन्चिंग की. नए उपकरणों को प्रदान करते वक्त ऐलान किया गया. भारतीय सरकार के सहयोग से 6 स्कैवेंजिंग लॉरियां दी गई हैं. ये चेतना अभियान इलाकाई प्रशासनों की मदद से चलाया जाएगा ताकि जनता के ज्यादा करीब जाया जा सके. कश्तियों को दी जा रही सेवाओं को आसान बनाने के लिए मुर्शिद पोर्ट अथॉरिटी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज कर रही है. मैरीटाइम सिंगल विंडो के विकास से आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं. इस प्लेटफॉर्म के जरिए कई बंदरगाही सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराया जाएगा. इस प्रणाली से बंदरगाह समुद्री ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संचालित कर पाएगा. इस साल मुर्शिद में वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा. 11 से 13 सितंबर तक पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में ठेकेदार, अर्थशास्त्री और मुख्तलिफ मुल्कों से आए पेशेवर वैश्विक अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय तजारत की चुनौतियों पर बात करेंगे. पहली बार के लिए मुर्शिद में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है. आज इस अंतर्राष्ट्रीय इदारे के महानिदेशक दागिन तांग ने विदेश मंत्री से मुलाकात की. मुर्शिद ने कई परियोजनाओं के सिलसिले में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग

0: की मांग की है। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर नवंबर के चुनावों में रिपब्लिकन्स की जीत हुई तो हर अमेरिकी नागरिक को 5,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। अपनी कार्यवधि के मध्य में पार्टी के पहले चुटाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड गोंबे में 68 साल की 68 इयर्स ओल्ड श्रीमती साकिला सुवांबेया पैदाइशी नाम लक्ष्मण, जो साकिला के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल शाम 4 बजे इनके पति रमेश सुवांबेया के घर रॉयल रोड गोंबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिमे वैपिये गोंबे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play,
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: बिल्कुल जिसमें तो कोई शक नहीं है कि रेडियो मस्ती इज योर नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन इन मॉरिशस और जहां पे हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे गिने चुने गाने स्पेशली फॉर यू माय डियर लवली लिसनर्स विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम सो हाउ आर यू माय डियर लवली लिसनर्स सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना तो चलिए जी जैसे कि आपको बताया हम आ जाते हैं 4 to 7 तक आपका साथ देने के लिए इन दिस ब्यूटीफुल शो जहां पे गानों का सिलसिला तो चलता ही रहता है और साथ में हम लेकर जाते हैं स्पोर्ट्स न्यूज में बॉलीवुड की दुनिया में और फैशन की दुनिया में भी और आज मेरे पास एक नहीं दो नहीं 10 गेम्स है यानी कि बहुत सारे कैडूज हैं आई हैव टू गिव अवे टू यू माय डियर लवली लिसनर्स सो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू हां जी अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए एंड जस्ट वेट फॉर मी टू आस्क यू द क्वेश्चंस एंड फटाफट से जल्दी जल्दी आप हमें सही जवाब भेजना डू पार्टिसिपेट यू नेवर नो अगर लक ने आज आपका साथ दे दिया सो यू गोना बी हियर माय लकी विनर ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती सो फिलहाल के लिए जस्ट एंजॉय द गुड म्यूजिक एंड ऑल दोस जो ऑफिस से निकल रहे हैं अपने काम के स्थान से निकल रहे हैं घर पे जाने के लिए सो ड्राइव केयरफुली ऑल ड्राइवर्स एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द लवलीस्ट सिलेक्शन जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: Star Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.
4: तो चलिए जी चेक योर टाइम. सवा चार तो बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और इट्स मैं गणेश ऑन द माइक साथ देने के लिए रात के 7 बजे तक इन योर रफ्तार वाइब्स, जहाँ पे हम लेके जाते हैं आपको आपके फिल्मी राइट्स पर और फिल्मी राइट्स पे ले जाते फिलहाल के लिए आपको गिफ्ट की गलियों में लेके जाऊंगी, जहाँ पे हम पूछेंगे एक बहुत ही आसान सा सवाल और सही जवाब देने पर आपको मिलेगी 2 टिकट्स, यानी कि 2 टिकट आपको मिल सकता है टू वॉच द सीख अशिल जवटा. यस माई डियर, अगर आप जाना चाहेंगे अपनों के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए, सो ट्राई योर लक राइट नाउ राइट अवे. यू कैन विन 2 टिकट्स, यस वर्थ 1400 रुपीज टू वॉच सियक अशील जवाता. और सवाल बहुत ही आसान है, सो ग्रैब योर मोबाइल एंड जस्ट गेट रेडी टू सेंड मी द राइट आंसर ऑन 5499-1294 पर 5499-1294. और सवाल ये रहा, सर्कस में डिफरेंट एक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले इंसान को ट्रेडिशनली क्या कहा जाता है, किस

0: to Radio Musti.
1: La Early Childhood Care and Education Authority informe les parents que les inscriptions dans les écoles préscolaires publiques pour l'année 2027 se tiendront du 7 au 30 septembre 2026. Tout enfant âgé de 3 ans au plus tard le 31 décembre 2026 est éligible à l'admission. Les inscriptions se feront dans l'école préscolaire publique la plus proche du domicile de 9h30 à 11h30 et de 13h à 14h30. Les parents devront se munir de leur carte d'identité, de l'acte de naissance de l'enfant et d'une preuve d'adresse. Les places seront attribuées en priorité aux enfants résidant le plus près de l'école. Les demandes reçues après le 30 septembre 2026 ne garantissent pas l'admission dans l'école choisie. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter la Early Childhood Care and Education Authority, ECCEA, au 460 42 78.
0: RM2 Radio Musti.
2: Raftar Vibes. Filmy Rides.
0: RM2.
3: तो चलिए जी, क्यों खूबसूरत गानों का ये सिलसिला हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इन योर रफ्तार वाइब्स योर फिल्मी राइड्स, जहां पे हम अग्निशा साथ दे रहे हैं। और फिलहाल के लिए आई गॉट योर गिफ्ट, यस, टू टिकट्स टू गिव अवे टू यू टू वॉच सियक अशिल जावाता। यस, और पूछा गया था एक बहुत ही आसान सा सवाल जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं हमें, एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। हमने पूछा था कि सर्कस में डिफरेंट एक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले इंसान को ट्रेडिशनली क्या कहा जाता है। यस, व्हाट the person who introduces the different circus acts traditionally called, and the right answer is ringmaster. Yes, ringmaster hi hai sahi jawab. Aur bahut sare logon ne apna luck try kiya hai, lekin only one lucky winner, aur lucky draw mein naam nikal aaya hai hamare lucky winner ka, Riya Sukanna from Montaigne Blanche. So congratulations to you, my beautiful Riya Sukanna Sisaha from Avenue des Perruches, Montaigne Blanche. Congratulations to you, my sweetheart. You've just won two tickets to watch Sia Xavata. So get ready for an unforgettable experience filled with magic, thrills, laughter and spectacular circus performances for the whole family. So catch Sia Xavata at Bagatelle with shows every Thursday and Fridays at 6 p.m. and Saturdays and Sundays at 2:30 p.m. and 5:30 p.m. Bookings ke liye, information ke liye aap phone kar sakte on 5250-9413, yani ki 5250-9413, Cirque Zavata. Don't miss the magical big, big show, my dear. So thank you so much for participating. Aaj ka lucky winner hai Riya Sukanna Sisaha from Montaigne Blanche. Abhi dil chota nahi karte hain. Just like I always remind you ki aaj hamare paas teen games hai. Ek to humne already kar liya hai. So just get ready for the next one.

0: MPC तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

टाइम तो बीता चला जा रहा है 4:26 हो चुके हैं एंड यस लेट्स किक स्टार्ट द सेकंड गेम फॉर यू ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती इन योर रफ्तार वाइब्स. जी हाँ दोस्तों, लेकर आए हैं एक और गेम. सो फिलहाल के लिए जस्ट टू रिमाइंड यू कि यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन टू एंट्री टिकट्स टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ फोर्टिस ब्यूटी विद अ नोबल पर्पस यानी कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026. सो मार्क योर कैलेंडर फॉर सैटरडे 12 सितंबर 2026 शाम के 7:30 अथरियानो कन्वेंशन सेंटर. सो स्टे ट्यून टू आवर एंटी रेडियो मस्ती, प्ले अलोंग एंड ग्रैब योर चांस टू बी पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टेक्युलर नाइट. पूछेंगे एक सवाल, आपको बस सही जवाब देना है ऑन 5499129.

तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

0: तेरे झूठे कस्मे वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।
1: उफ मेरी जान, मार डाला इतना जान, जान बोल के हमारी जान तो ले ही जाएंगे। सच अ लवली पोएम, आपको बस पहचानना है और मुझे बताना है। दिस इज द लवली वॉइस ऑफ अ विच एक्टर, ये जो पोएम हमने आपको सुनाया है ऑन आवर एंटी रेडियो मैसेज, यू जस्ट हैव टू पार्टिसिपेट इन गेम एंड लेट मी नो ये आवाज किसकी है। 5499129495499124, सेंड मी द राइट आंसर विद योर फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ, एंड ऑफकोर्स यू कैन विन two entry tickets to watch Miss India Worldwide Mauritius 2026. Best of luck to you.
2: RM2 Radio Masti.

0: Avatar vibes. Filmy rides.
1: RM2. खूबसूरत खूबसूरत गानों का सिलेक्शन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए योर रफ्तार वाइब्स ऑफ कोर्स लेके जाते हैं ऑन योर फिल्मी राइट्स एवरी आफ्टरनून 4 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक इट्स मेगी निशांत माइक सो आई रियली होप एवरीवन इज फीलिंग गुड अबाउट दिस लवली लवली म्यूजिक जो लेकर आए हैं एंड अगर आप काम से निकल चुके हैं यू आर हेडिंग टवर्ड्स घर वापस जा रहे हो सो प्लीज जितने भी ड्राइवर्स हमारा साथ दे रहे हैं आराम से गाड़ी चलाना मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल ड्राइविंग धीरे धीरे हौले हौले आप बस गाड़ी चलाना और म्यूजिक हम तो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जस्ट टू मेक यू हैव अ गुड वाइब्स एंड स्माइल एंड हैव अ बीन अ गुड मूड और साथ साथ में ऑफ कोर्स कैडोज इतने सारे कैडोज यानी इतने सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अभी के लिए वी जस्ट अभी आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया था एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटा छोटा नहीं काफ़ी लंबा था एक पोएम और हमने पूछा था कि ये कौन सी एक्टर की आवाज़ है एंड यस इट इज़ शाहरुख खान टेकन फ्रॉम द मूवी जब तक है जान दैट वाज द राइट आंसर जी हाँ हमने आपको सुनाया था एक्चुअली ये सवाल कि ये किसकी आवाज़ है तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब भी दिए किसी ने नाना पाटेकर कहा किसी ने सलमान खान कहा लेकिन इट्स नॉट सलमान खान इट्स नॉट नाना पाटेकर इट इज़ शाहरुख खान बिल्कुल जी
2: तेरी जुल्फों की लहर
1: ये है हमारे किंग खान की आवाज टेकन फ्रॉम द मूवी जब तक है जान सो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया लेकिन एज यूजुअल आपको तो पता है कि ओनली वन लकी विनर वी कैन हैव जस्ट फॉर वन गेम और आज किसका नाम निकल आया है लकी ड्रॉ में टू विन दिस टू टिकट्स टू वॉच द ग्रैंड फिनाले ऑफ फोर्सेस ब्यूटी विद द नोबल पर्पस यानी फॉर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026 ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती

0: पार्टिसिपेटिंग. यस, एज यूजुअल जैसे कि हम कहते हैं कि जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो फुल नेम और फुल एड्रेस के साथ यू हैव टू सेंड द राइट आंसर, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द गेम. सो आज का लकी विनर क्रितेश, यू आर गोइंग टू वॉच मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2026. यस माई डियर, एंड मार्क योर कैलेंडर्स फॉर सैटरडे 12th of September at 7:30 PM at Trianon Convention Center. So stay tuned and stay connected always on RNT Radio Masti. Abhi to picture baki hai mere dost, kyunki abhi mere paas aur gifts hai aapke liye. So just stay connected hamare saath.
1: RNT Radio Masti.

0: la SICOM. Conditions applicables. Pour plus d'infos, appelez-nous sur le 203 84 70 ou visitez notre site web sicom.mu.
1: SICOM Group, a lifetime commitment.
0: SICOM Financial Services Limited opère sous licence de la BOM et de la FSC. Loan is not an insurance policy under Insurance Act 2005.
2: RM2 Radio Musti.
3: Raftar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2
4: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: Sports News.
5: Radio Musti in the mix.
6: Well, guys, check your time. 4:45 हो चुके हैं. It's time for some latest sports news. हमारे स्पोर्ट्स गुरु के साथ अरविंद जी. Good afternoon.
7: Good afternoon आपको. Good afternoon RM2 listeners. So, बहुत बड़ा दिन है आज. आज की रात it's going to be something to celebrate. क्योंकि जब बहुत दिनों बाद किसी की वापसी होती है. You know, you feel nostalgic.
6: I know, you've been missing me. बड़े दिनों के बाद
7: मैं आया हूँ ना. Manchester United.
6: Oh.
7: Manchester United.
6: इतना time क्यों लगा रहे हो खुल के बोलो ना.
7: नहीं, it's a बहुत दिनों बाद Manchester United की वापसी in Champions League. एक competition they have won many times. और एक ऐसी प्रतियोगिता competition जिसमें they deserve to be there.
6: Yes.
7: We should admit.
6: Let's wish the Let's wish them best of luck and actually
7: happy welcome.
6: हाँ और कल फिर इस बारे में बात करेंगे ना आप मुझे congratulate भी करेंगे.
7: All right, अब उसका मुकाबला सबाह टीम से है. सबाह की टीम जो पहली बार के लिए चैंपियंस लीग में भाग ले रही है. So it's एक अच्छा मैच हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खासतौर पर ओल्ड ट्राफर्ड में. आज के जो अन्य मैच हैं फेनेरबाचे एएस रोमा, देन वी हैव पेरिस सेंट जर्मेन शाख्तार दोनेत्स्क. ये दो पहले मैच खेले जाएंगे. फिर बायर्न म्यूनिख अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट, कोमो अगेंस्ट लेप्ज़िग, मैनचेस्टर यूनाइटेड सबाह ये 11 बजे और 11 बजे ही स्लाविया प्राग वर्सेस लॉन्स. पूछेंगे कल के मैचों में क्या हुआ. ओके, बता देते हैं. कल बहुत गोल बने, बहुत गोल, कहीं पर 5-1 तो दूसरी ओर 6-1. और डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन जिसकी शुरुआत लीग अ में अच्छी नहीं थी, दो ड्रॉ फिर एक हार, लेकिन यहां पर स्लोवान टीम को तहस नहस कर डाला 6-1. कैन यू इमेजिन 6-1. और उधर बार्सिलोना भी 5-1 से फेयनोर्ड को हरा पाया. स्टुटगार्ट 3 वाइकिंग 1. नापोली होम मैदान में हार गया, उसे आर्सेनल ने हराया 1-0 से ओडेगार्ड का गोल. स्पोर्टिंग 3 गलातासराय 1. किसी एक टीम का नाम सुना आपने? मैंने एक और टीम ने कहा
6: नहीं. मेंशन कीजिए ना.
7: ओके, एटलेटिको मैड्रिड की हार हुई कल, लिवरपूल ने उसे 2-1 से हराया.
6: ओके
7: ओके, लिवरपूल की जीत 2-1 से. हाँ, क्योंकि होता रहता है ना, होता रहता है.
6: कल मैंने कहा ना, कल फिर फुटबॉल के बारे में बात करेंगे.
7: आदत है चैंपियंस लीग में जीतना. ये बात अलग है कि दो तीन सालों से इट्स बिकमिंग क्वाइट डिफिकल्ट. एनीवे, तो ये आज के मैच हैं. लीग वन में भी एक मैच है, स्टेवेनेज वर्सेस ल्यूटन टाउन. और बाकी चैंपियनशिप में भी कल भी कुछ मैच खेले जाएंगे चैंपियनशिप में. और फिर स्कॉटिश लीग कप में सैटरडे फिक्स्चर्स दे दें हमारे लिसनर्स को. सैटरडे फिक्स्चर्स फॉर द प्रीमियर लीग, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 मैच खेले जाएंगे. 6 बजे जी, हाँ 6 बजे. एस्टन विला नॉटिंघम फॉरेस्ट, बोर्नमुथ ब्रेडफोर्ड, चेल्सी हल सिटी, क्रिस्टल पैलेस इप्सविच, लिवरपूल फुलहम, स्पर्स एवर्टन और सन्डरलैंड आर्सेनल वाला मैच ये 11 बजे खेला जाएगा. फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा संडे को, एंड दैट्स द डर्बी. मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ओल्ड ट्राफर्ड में 7:30 बजे मैनचेस्टर सिटी का स्वागत करेगा, कोवेंट्री अगेंस्ट ब्राइटन. तो ये आज और कल, फिर परसों, यानी दो तीन दिनों के मैचों के बारे में है. लेट्स टॉक अबाउट टेनिस. बहुत साल बाद इट्स हिस्टोरिक सेमीफाइनल लाइनअप. हम बात कर रहे हैं यूएस ओपन वुमेन्स कैटेगरी में. टॉप 4 सीड्स हिस्टोरिक सेमीफाइनल लाइनअप में आ चुकी हैं. सो दैट विल बी सबालेंका है, रिबाकीना है, पिगुला है, गोफ, ये लोग पहुंच पाए हैं सेमीफाइनल में. और जो मैच खेले जाएंगे, वेरेव सेमीफाइनल में पहुंचा आज. इस समय उसने वन दे साल्सकॉप को हराया 6-2, 7-5, 6-1. फिर

0: डबल्स के सेमीफाइनल भी आज के लिए निर्धारित हैं। कल कुछ मैच खेले जाएंगे, इंटरेस्टिंग मैच सबालेंका पेगुला द फर्स्ट सेमीफाइनल और दूसरा सेमीफाइनल कोको गोफ अगेंस्ट रिबाकिना। मेंस सिंगल सेमीफाइनल पहला चाफुए अगेंस्ट शेल्टन और दूसरा सेमीफाइनल वेरेव अगेंस्ट काचानोव। इट्स बिकमिंग सीरियस, खासतौर पर जब सेमीफाइनल में ये लोग आ चुके हैं। विल चेक द क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट में दुलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की जीत हुई, ईस्ट जोन, और अभी पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच, इंग्लैंड की टीम 6 विकेट खोकर 303 रन पर बैटिंग कर रही है। पाकिस्तान की टीम 133 रन में आउट हो गई थी। सो आज डे टू सेशन टू, इंग्लैंड लीडिंग बाय 179 रन। आज और मैच है सेमीफाइनल वीमेंस एशिया कप का, जो सेमीफाइनल ये साढ़े 6 बजे होगा। इट्स बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, सो इंडिया वुमेन अगेंस्ट बांग्लादेश वुमेन, अभी से 1 घंटे 40 मिनट बाद ये मैच होगा। सो दैट्स इट, कल सुबह आई होप वी हैव सम गुड न्यूज फ्रॉम ओल्ड ट्रैफर्ड, और शाम को तो गुड न्यूज सेलिब्रेट करेंगे।
1: आप फिकर मत करना, कल के जितने भी न्यूज आप लेके आएंगे ना, इट्स गोना बी फर्स्ट क्लास मेरे लिए।
0: मैं सोच रहा हूँ अगर कुछ गड़बड़ हो जाए,
1: कोई गड़बड़ तो, नहीं, आप अच्छे अच्छे सोचो, अच्छे अच्छे बोलो ना।
0: नहीं, मैं सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं बोलूंगा कैसे, साबा कहाँ बा,
1: कहाँ
0: बा,
1: फर्स्ट क्लास बा।
0: चलिए,
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
3: आरएम2.

0: holly jealousy nete
1: such a happening song for you playing right now on Orange to Radio Masti the Durbin featuring Ragini Lamborghini yes toll drivers drive carefully hey meri jaan aur aaram se gaadi chalate chalate hame sunte rehna on Orange to Radio Masti and ji ha it's Megan Nishant the mic so time check it's 5 pm
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड फोन नंबर

0: उफ उफ उफ मेरी जान क्या गाना था सच लवली एनर्जेटिक सॉन्ग जब भी कुछ ऐसे गाने हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए हम तो खुद यहाँ स्टूडियो पे हम तो नाचते ही रहते हैं और हमारे सांसें फूल जाती हैं हाय मेरी जान जब से मेरे दिल को उफ सो केम ट्रू 5:11 हो चुके हैं विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम स्वागत है आप सभी का राइट नाउ वंस अगेन इन दिस लवली शो इन द सेकंड आवर ऑफ योर रफ्तार वाइब्स हां जी लेके जाते हैं आपको फिल्मी राइड्स पे एंड आई रियली होप दैट एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम टू ऑल दोस जो बस में बैठे हैं गाड़ी में बैठे हैं टैक्सी में बैठे हैं मेट्रो में बैठे हैं कहीं पे तो बैठे होंगे हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए फॉर ट्यूनिंग इन ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती लेटे भी होंगे अगर आप घर पहुंच गए हैं आराम फरमा रहे हो अपने बिस्तर पे सो कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक ऑलवेज जो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती फिल्मी राइट्स में तो लेके जाते हैं लेकिन आके कैडोज के गलियों में यानी कि आई गॉट यू वन मोर गिफ्ट हां जी जैसे हमने किक स्टार्ट किया द सेकंड आवर सो व्हाई नॉट वी नीड टू किक स्टार्ट द गिफ्ट सो गेट रेडी मॉरिशस वंस अगेन द ग्रैंड फिनाले ऑफ द आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 इज हियर जी हां इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो को-स्पॉन्सर्ड बाय म्योपा एंड फूड पार्टनर फॉर फाइनल्स जेंट्स लिटिल इंडिया सो दिस ट्रेलिंग सीजन किक ऑफ ऑन द 1st ऑफ अगस्त विद सिक्स पावर पैक्ट जो टीम्स हैं और अभी इट ऑल कम्स डाउन टू द बिग फिनाले बिटवीन कॉन्टिनेंटल चीटास वर्सेस कैंपस अब्रॉड लायंस ऑन संडे एंड 13 सितंबर इन एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पे होने वाला है अटमापू सो मैच स्टार्ट्स एट 10 एएम सो जॉइन अस लाइव यानी कि आरएनटी रेडियो मस्ती जॉइन अस लाइव एट द ग्राउंड फॉर अ डे फुल ऑफ हाई एनर्जी क्रिकेट फन एंड एक्साइटमेंट सो चीयर फॉर योर फेवरेट टीम एंजॉय ग्रेट फूड ग्रेट म्यूजिक एंड स्टैंड अ चांस टू विन एक्साइटिंग gives vouchers throughout the whole day all while Radio Masti goes live from the ground so don't miss the biggest cricket showdown jo cricket showdown of the year it's Island Cricket Extravaganza season 4 the grand finale ji haan dosto aur filhal ke liye hum aapko yaad dila de ki aap participate kar sakte hain aur aaj aap jeet sakte hain ji haan a voucher yes right now I've got a voucher again to give away to you so play with RM2 and stand a chance to win a voucher worth 500 rupees a gift voucher courtesy of Indian Swad restaurant where you can savor the authentic flavors of India Indian food khane ke shaukeen ho so why not you can participate right now right away my dear to ji haan dosto puchenge ek bahut hi aasan sa sawal aapko sahi jawab dena hai aur jaise hi hum sawal puchenge aapko jawab dena hai on 5499-1294 par 5499-1294 full name aur full address ke saath then only you're going to be eligible to participate in the game sunayenge ek gana aapko bas mujhe batana hai ye khoobsurat sa gana it's taken from which movie ye hai Arijit Singh aur Shilpa Rao ki aawazon mein and you just have to tell me it's taken from which movie 5499-1294 par send me the right answer right now right away and be our lucky winner win a voucher worth 500 rupees offered to you by Swad restaurant
1: RM2 Radio Masti

बिल्कुल जितने जोर से नाचना कि घुंघरू भी टूट जाए हमें है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि घुंघरू टूटे या ना टूटे है, लेकिन आपने सही जवाब भेजे ये हमें बहुत अच्छा लगा, किसी ने भी गलत जवाब नहीं भेजे। जी हाँ, हमने पूछा है एक सवाल कि ये खूबसूरत सा गाना जो घुंघरू है कौन सी मूवी से लिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग माय डियर लवली लिसनर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर सही जवाब आपने दिया सो जस्ट गेट रेडी टू नो कि कौन है आज का लकी विनर। इज इट यू? यू? यू? नहीं या अभी तो मैं बताऊंगी, अनाउंस करूंगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन है आज का लकी विनर। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए

0: रेडियो मस्ती की गलियों में आओगे तो अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेगा. हे थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए. एंड दिस ब्यूटीफुल ट्रैक वाज स्पेशली फॉर यू हमारे लवली जो कलीग है, जो भाई है अभी उदय जी के लिए, जो अभी जिम में है बट स्टिल लिसनिंग टू अस ऑन R&2 रेडियो मस्ती. जोर लगा के हाय शाह भाई, यह सुनते रहना R&2 रेडियो मस्ती.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: R&2.
0: तो चलिए जो चेक होता है 5:28 हो चुके हैं. फिलहाल आई गॉट दिस ब्यूटीफुल वन फॉर टू ऑल दोस जो अभी काम पे हैं. इफ यू आर वर्किंग राइट नाउ सो कॉश टू यू माय डियर, हम भी तो हैं साथ देने के लिए. अरे दिल छोटा नहीं करते, जल्दी जल्दी से काम करो, आपको घर भी तो जाना है ना.

आई रियली होप दैट एवरीवन इज जस्ट लविंग दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गानों का सिलेक्शन जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इन दिस ब्यूटीफुल शो रफ्तार वाइब्स. बिल्कुल जी, गानों का रफ्तार तो हम हमेशा बढ़ाते ही रहते हैं, अप अप अप एंड जस्ट अप, उसमें तो कोई डाउन ही नहीं जाता है. एंड बस गानों के साथ साथ हम अच्छे अच्छे मीठी मीठी बातें भी तो करते हैं आप लोगों के साथ. सो थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन आवर राइट टू रेडियो मसी. और अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं. और किसी ने बोला है हम घर वापस जा रहे हैं, इवन टू मोटाई ब्लॉन्श ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, कनेक्टेड टू आवर टू रेडियो मसी एंड फैबुलस सॉन्ग लिस्ट के नहीं. थैंक यू सो मच. आप हो मिसेज राम सिंह और आपकी सिस्टर लोमनीटा, हस्बैंड राजीव, बेटी कियाना एंड बेटा रिवाना एंड वनीशा की तरफ से गुलाम शंभू जो है डेडिकेट करना चाहेंगे गाने सभी लोगों के नाम. वरुणा है एज यूजुअल माय फेवरेट आरजे सॉन्ग टॉप है. थैंक यू सो मच माय स्वीट हार्ट, मे गॉड ब्लेस यू एंड जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. राधे राधे जी, दैट्स राधा फ्रॉम कनाडा. कैसे हो आप? ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन गिनी कनाडा से है एंड गाना आपके लिए आरएमटी लिसनर्स के लिए हर हर महादेव एंड नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू माय लवली हियर ब्यूटीफुल लिसनर. सो एशना फ्रॉम माउंट, टुडे इज बेबी कियांश का जन्मदिन. 3 साल के हो गए यारे मेरी जान, हैप्पी बर्थडे टू यू कियांश.

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, शेयर रेडियो मस्ती की तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस एंड स्पेशली फ्रॉम पापा पुवेश, आपके मम्मा ऐशना, डैडी फियाची मम ची पापा फ्रॉम नाना ज्वाला, नानी देवरानी, अंकल नितेश, शांति अनुषा, सिस्टर एंजल यानी अहाना लिया, पल्लवी तुलसी, ब्रदर लियान, पुपू रोशनी, पुष्पा उनके जो गौ मामा है, और मामा मुन, मामू अंकुश एंड मेनी मोर। सो कियांश मेरा सोना बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर, ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज एंड यानी आज थर्सडे 10 ऑफ सेप्टेम्बर, सो कॉन्ग्रेचुलेशन।

0: एंड हैप्पी बर्थडे टू यू ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए अगला गाना जो हम पेश करने वाला है वो खासकर हमारे जितने भी लिसनर्स तैयारियों में लगे हुए हैं गणेश चतुर्थी के नाम। जी हाँ, मस्ती के साथ अब भक्ति का रंग भी चढ़ने वाला है क्योंकि बप्पा के आने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जो आप भी एंजॉय कर रहे हो। सो गली गली में सजावट, घर घर में एक्साइटमेंट, हाथों में डेकोरेशन लेकर खड़े हो आप और दिल में बस एक ही नाम बप्पा। सो कोई पंडाल जो है सजा रहा है, कोई मोदक बनाने की तैयारी चल रही है और कोई बप्पा की मूर्ति को वेलकम करने की तैयारी में है और हर दिल में यही कह रहा है कि बप्पा बस अब आप आ जाओ हमारे घर।
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: RM2 रेडियो मस्ती फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
1: बिल्कुल जी, फैशन टिप्स लेकर रहते हैं रोज दोपहर को, यानी कि एग्जैक्टली पौने 6 बजे आप लोगों के लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती। जी हाँ, इट्स मी गिनेश ऑन द माइक। और आज आप लोगों के लिए लेडीज लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी चीज, यानी कि गणेश चतुर्थी की प्रिपरेशन फुल स्विंग में है ना, और बप्पा के वेलकम के साथ फैशन भी होना चाहिए एकदम ट्रेडिशनल और धमाकेदार। आज का फैशन स्पॉटलाइट है महाराष्ट्रियन काश्ती साड़ी। सबसे जो पहला टिप हम देंगे, कलर को बोल्ड रखो। जी हाँ, ट्रेडिशनल रेड, ग्रीन, रॉयल ब्लू, पर्पल या ब्राइट पिंक, ऐसे कलर्स चूज करो जो फेस्टिव वाइब को इंस्टेंट

0: एलिवेट करें और सेकंडली नवरात्रि स्टाइल जो ड्रेप है उसको ओन करो काश्ती का ब्यूटी ही है इसका ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन लुक प्लीज नीट रखो ड्रेप कंफर्टेबल रखो क्योंकि गणपति सेलिब्रेशंस में आपको सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं कंफर्टेबल भी तो रहना है ना लेडीज और थर्डली नाउ कम्स द रियल मैजिक यानी कि आपके एक्सेसरीज एंड ट्रेडिशनल जो नथ है ना इसके बिना तो आपका लुक इनकम्प्लीट है मेरी जान नथ लगाना झुमकास ग्रीन ग्लास बैंगल्स एंड ब्यूटिफुल हार एंड अगर आप चाहे तो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन मुंडावलिया इंस्पायर्ड और टेम्पल ज्वेलरी जो होते हैं ना जो बड़े बड़े आजकल फैशन में आता है वो भी आप पहन सकते हैं डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं और हेयर स्टाइल जो है क्लासिक बन विव गजरा सिंपल एलिगेंट और कंप्लीटली फेस्टिव और लेडीज एक गोल्डन टेप काश्ती पहनने तो कॉन्फिडेंस भी महाराष्ट्रियन स्टाइल में फुल ऑन पावरफुल रखो क्योंकि गणेश चतुर्थी का जो लुक है वो होना चाहिए ट्रेडिशनल भी ग्रेसफुल भी और थोड़ा सा रफ्तार वाला ग्लैमरस भी जरूर दिखने चाहिए
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती

That's a beautiful one, Kumar Sanu and Shreya Ghoshal की आवाजों में चमक चलो चल चबेली जी हाँ दोस्तों हम कहीं नहीं जाएंगे अब बस यहीं पे रहना हमारे साथ on our into Radio Masti थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे 6 बजे के समाचारों की और उसके बाद of course the good music continues.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
4: Radio Musti.
2: North, South,
4: 103.5.
2: East, West,
4: 96.4.
2: Center,
4: 99.4.

सबसे पहले आज की बड़ी खबरें, रेडियोलॉजी और कैंसर के मिनी इन्वेसिव इंटरवेंशन के सिलसिले में प्रोफेसर एडवर्ड लम शाउलिंग का हवाला दुनिया

0: सतह पर लिया जाता है। वो मोशन डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में अपनी सहायता देने के लिए तैयार। आज दोपहर बाद मोशन मूल के इस डॉक्टर ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से की मुलाकात। विरासतों की हिफाजत करना, ये एक कार्यशाला का आज मुद्दा रहा। मार्च 2027 में नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल को राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा। पहली बार के लिए मुर्शिद में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि मंडल मुर्शिद आया हुआ है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय इदारे के महानिदेशक दाहिन तांग ने विदेश मंत्री से भेंट की। गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकना यानी इलीगल डंपिंग करने की हरकत के सिलसिले में पर्यावरण मंत्रालय ने आज सुबह कुद्दो में मुरी फैसिलिटीज में एक राष्ट्रीय चेतना अभियान की लॉन्चिंग। गणेश उत्सव का माहौल देश में महसूस किया जाने लगा है। वाक्वामी गणपति के भक्त मिट्टी से बप्पा की मूर्तियां बना रहे हैं। विसर्जन विधि के दौरान भक्त उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की इच्छा व्यक्त करेंगे। और फिलीपींस में एक कश्ती में आग, 5 लोगों की मौत, 86 लोग जख्मी। नमस्कार, आदाब। रेडियोलॉजी और कैंसर के मिनी इन्वेसिव इंटरवेंशन के सिलसिले में प्रोफेसर एडवर्ड लाम शांगलिन का हवाला दुनियावी सतह पर लिया जाता है। आज दोपहर बाद उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टलुई में। मोशन मूल का ये डॉक्टर लंदन के इंपीरियल कॉलेज में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि वो मोशन डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में अपनी सहायता देने के लिए तैयार है। इसके अलावा वो अपने मोशन दौरे के दौरान कैंसर से पीड़ित मरीजों की सर्जरी भी करेंगे। विरासतों की हिफाजत करना, ये एक कार्यशाला का आज मुद्दा रहा। मार्च 2027 में नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल को राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा। फ्रांस की मदद से 3 ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये बता दें कि फ्रांस 1 मिलियन यूरो देगा। पहली बार के लिए मॉरिशस में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय इदारे के महानिदेशक दाहिन तांग ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। मॉरिशस ने कई परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग की मांग की है।
1: वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक दाहिन तांग ने इंटरनेशनल प्रॉपर्टी से संबंधित मजबूतीकरण पर एक कार्य सत्र में भाग लिया। इसका मकसद रहा नवाचार रचनाओं और कलात्मक रचनाओं को सुरक्षित रखने वाले इन अधिकारों को आर्थिक जरिया बनाना और रचनाकारों के लिए आय का स्रोत बनाना। दाहिन तांग ने कहा, हमारी विचार से मॉरिशस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर मजबूत नींव है। मॉरिशस के लिए अगले अध्याय के अंतर्गत ये देखना है कि मॉरिशस किस तरह पदार्थ या सेवा बन सकता है। नौकरी पैदा करना, निवेश आकर्षित करना, ठेकेदारों का समर्थन करना, ये भी कि किस तरह फाइनेंसिंग प्राप्त करने के लिए हिस्सेदार बन सकता है। बैंक गारंटी को लेकर इस कोशिश को ज्यादा आगे जाने के लिए मॉरिशस ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समर्थन की मांग की है, जैसे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के माध्यम से स्थानीय पदार्थों का मूल्य बढ़ाना। रम, शक्कर और रोड्रिक्स के नींबू पहले से ही इस लेवल से फायदा उठा रहे हैं। मंत्री रितेश रामफल ने कहा, इससे इन पदार्थों के लिए पहचान मिलती है। जब मंडी में ये सामान बेचे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब पदार्थों को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है। निर्यात किए गए पदार्थ हैं, स्थानीय स्तर पर जो सामान तैयार किए जाते हैं, इन पदार्थों को रजिस्टर करने की संभावना है GI इंडेक्स के अंतर्गत। इसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े कमर्शलाइजेशन और फाइनेंसिंग पर भी बातचीत चली। इन परियोजनाओं को अमल में लाने की दिशा में मदद पहुंचाने के वास्ते मॉरिशस में एक विशेषज्ञ भेजे जाने वाले हैं, जो कानूनी ढांचे की तैयारी और वाहनों के कलपुर्जों तथा दवाइयों के लिए पैरेलल आयात को अमल में लाने की दिशा में कार्य करने में सहायता पहुंचाएंगे।
0: मलागासी उद्योगपति मामी गवातुमांग को जमानत पर रिहा करने की मांग पर बहसें आज बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने खत्म हो गई हैं। मैजिस्ट्रेट इल्फाज फारूक नाचिया 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएंगे। प्रतिरक्षा ने 300 से जायद दिनों तक अपने मुवक्किल के कैद में रखे जाने पर एतराज जताया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि मामी गवातुमांग के फरार होने का खतरा है। गवाहों के साथ बात करने

0: और सबूतों में हेरा फेरी करने का भी खतरा है। अक्टूबर 2025 में मामी गवातुमांग को गिरफ्तार किया गया था और मेलगोज की अदालत में तब से वे कैदी हैं। इस साल मुर्शिद में वर्ल्ड तमिल्स इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कल 11 से 13 सितंबर तक पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में ठेकेदार, अर्थशास्त्री और मुख्तलिफ मुल्कों से आए पेशेवर वैश्विक अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय तजारत की चुनौतियों पर बात करेंगे। यासिंदीन मोहम्मद की रिपोर्ट पर ये विवरण।
1: 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई देशों से आए करीब 150 प्रतिनिधि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर संपत कहते हैं,
2: दिस कॉन्फ्रेंस मेनली टू डिस्कस अबाउट ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन।
1: ये सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिति पर चर्चा का अवसर देता है, साथ ही मॉरिशस और तमिलनाडु के बीच निवेश और विकास के अवसरों पर भी खास तौर पर चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य, मेडिकल टूरिज्म, वित्त और प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है। नेटवर्किंग सत्रों के जरिए नए साझेदारों से जुड़ने और कारोबार के नए अवसर पैदा करने का भी मौका मिल रहा है। इस सम्मेलन में तमिल समुदाय से जुड़े कारोबारी, अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हैं। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूद अवसरों और चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान कर रही हैं। कार्यक्रम में व्यापार में वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है, खासकर भारत, मॉरिशस और अफ्रीका के बीच व्यापार को लेकर। साथ ही कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों पर भी विचार किया जा रहा है।
0: गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकना यानी इलीगल डंपिंग करने की हरकत के सिलसिले में पर्यावरण मंत्रालय ने आज सुबह को दो मेमोरी फैसिलिटीज में एक राष्ट्रीय चेतना अभियान की लॉन्चिंग की। नए उपकरणों को प्रदान करते हुए यह ऐलान किया गया। भारतीय सरकार के सहयोग से 6 स्कैवेंजिंग लॉरियां दी गई हैं। ये चेतना अभियान इलाकाई प्रशासनों की मदद से चलाया जाएगा ताकि जनता के ज्यादा करीब जाया जा सके। गणेश उत्सव का माहौल देश में महसूस किया जाने लगा है। वाकुआ में गणपति के भक्त मिट्टी से बप्पा की मूर्तियां बना रहे हैं। विसर्जन विधि के दौरान भक्त उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की इच्छा व्यक्त करेंगे, अपने सभी दुख दर्द और जीवन की बाधाएं दूर करने की प्रार्थनाएं करेंगे। हर कारीगर के लिए बप्पा की मूर्ति बनाना एक कला और परम्परा के अलावा भक्ति का जरिया है।
3: रंगों से पहले मिट्टी आकार लेती है। कृष्ण राव अप्पा की उंगलियों के बीच मिट्टी दबती हैं, संवरती हैं और फिर उसकी हर छोटी बारीकी पर काम होता है। धीरे धीरे उभरती लकीरें और घुमाव भगवान गणेश की आकृति में जैसे प्राण भर देती हैं। कई दशकों से वे चेहरे और आभूषणों को उसी लगन से आकार दे रहे हैं। यहाँ कुछ मिलीमीटर का अंतर भी मूर्ति के पूरे भाव को बदल सकता है।
4: C'est l'héritage qu'ils transmettent de génération en génération. Et moi, ma quatrième génération qui peut continuer à faire Ganpati. Et la préparation de Ganesh Chaturthi a commencé à partir de Nag Panchami. C'est là, après Nag Panchami, qu'il nous a cessé la terre. Et bien sûr, on a cessé ça, la terre-là, à Bédicap. Et bien sûr, on a une préparation de ça, la terre-là. Quand nous prenons les nouvelles, nous faisons mettre tremper. Et puis ça, après, pour 4-5 jours, et puis ça nous vient nettoyer la terre là, tirer tout simplement l'herbe et les roses, tout ça là, et nous craser la terre là, et pour capable faire ça manière pour nous rendre mortis.
3: ये कला समय के साथ थमी नहीं है, नए रूप जन्म लेते हैं और उन्हें गढ़ने की तकनीक भी निखरती गई है। इस वर्ष उनकी कार्यशाला में दो खास रूप सामने आए हैं। वीरा गणेश भगवान गणेश के वीर स्वरूप को दर्शाती है, जबकि तरुण गणेश उनके युवा रूप की झलक है। इन दोनों कृतियों में कला एक नया रूप लेती है, लेकिन आस्था से उनका नाता वैसा ही बना रहता है।
4: Pour un seul motif, demande beaucoup de dévotion et beaucoup d'émotion chez nous. C'est un sacrifice qu'il fait. À partir de nous commençons à se gampatir, c'est le sacrifice qui commence.
3: सड़क के दूसरी ओर उनके चचेरे भाई राज भाऊ अपनी अलग कलात्मक राह पर चलती हैं। वे भी कई तरह की मूर्तियां बनाते हैं और हर मूर्ति का अपना भाव, अपना स्वभाव और अपनी पहचान होती है। लेकिन ये नई सोच केवल मूर्तियों के रूप तक सीमित नहीं। दोनों कार्यशालाओं

0: कौमी मूर्तियां पूरी तरह मिट्टी से बनाई जाती हैं। पर्यावरण के अनुकूल ये मूर्तियां विसर्जन के बाद पानी में सहज रूप से घुल जाती हैं।
1: Quand on prépare la terre, jamais une mourti va vous filer. Quand on voit la terre, les plis vont pour ventiler l'époque, les bouffons de bord lui-même, mais tandis que le talal, les bouffons, pour l'avoir au moins, il va moins. Mais ça n'arrive au plis vont.
0: दो कार्यशालाएं कला की दो अलग पहचान घरों और पूजा स्थलों तक पहुंचने से पहले हर मूर्ति में कई घंटों की मेहनत और धैर्य समाया होता है। उसकी हर रेखा में रह जाती है कारीगर के हाथ की छाप, उसकी अपनी शैली और उसके मन का भाव।
2: करात इस्लामिक कल्चरल सेंटर पोर्ट लुई में नेशनल कुरान रेसिटेशन मुकाबले का ग्रैंड फिनाले लगेगा। मुल्क के दीगर इलाकों से 175 नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें 9 फाइनल्स तक पहुंचे। जीतने वालों को उमरा अदा करने का पैकेज मिलेगा। मक्कतुल मुकर्रमा सोसाइटी और एमबीसी के तआवुन से कल के ग्रैंड फिनाले में पाकिस्तान के कारी डॉक्टर इकरमुल्ला मोहसिन बतौर खास मेहमान शिरकत फरमाएंगे। आप पाकिस्तान के वजीर आजम के कारी भी हैं। आज आप एमबीसी के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। उनकी खुशगुन आवाज़ में एक ख़ास कशिश है और अरबी अल्फाज की अदायगी में ऐसी मिठास है कि दिल बेइख्तियार मुतवज्जो हो जाता है। कुरानी आयतों पर उनकी महारत यकीनन काबिल दाद है। आप एक माहिर तिब यानी मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ पाकिस्तान की एक मोहतरम शख्सियत है। हमारे दरमियान साहिब इज़्ज़त खुश अलहान कारी डॉक्टर कारी इकरामुल्लाह मोहसिन साहब तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलामु अलैकुम और आदाब। आपको आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू वेरी मच।
2: कारी साहब, आप नेशनल कुरान कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले के लिए खास मेहमान के तौर पर मुशरस आए हैं। आप हमें बताएं कि कुरान की तिलावत के लिए कौन कौन सा पहलू अहम है, मद्देनजर रखना चाहिए जब तिलावत करनी हो।
3: बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला जो पहलू है वो ये है कि हमें खुलूस से दिल के साथ, खुलूस से नीयत के साथ जो है वो कुरान मजीद जो है वो पढ़ना चाहिए। और फिर सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो तजवीद है, यानी कि आपका पूरा फोकस जो है वो तजवीद के ऊपर होना चाहिए। यानी कि तजवीद जो है, आप जो समझें कि तजवीद का मतलब यह है कि कुरान के जो हरूफ हैं उनकी सही प्रोनाउंसिएशन,
2: हाँ।
3: ठीक है, वो उसको तजवीद कहा जाता है। उसके फिर मखारिज हैं, फिर उसकी सिफात हैं। तो कुरान को सही अदायगी के साथ पढ़ना जो है ये बुनियादी चीज़ है। और उसके साथ फिर जो है वो मकामात हैं कि आपने किस लहन के अंदर, किस सुर के अंदर, किस लहजे के अंदर कुरान मजीद को जो है वो अपने पढ़ना है। तो यकीनन ये आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपने ये मकामात सीखे होंगे, आपको ये इन लहजात के बारे में पता होगा। और फिर तीसरी जो अहम चीज़ है वो वक्फ़ और इयादा है कि जब आप कोई कुरान की आयत पढ़ते हैं तो आपने कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पे वक्फ़ करना है और फिर कहाँ से आपने उसको लौटाना है, आपने उसका इयादा कहाँ से करना है। तो ये तीन बुनियादी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। फिर आवाज़ की खूबसूरती ही, आवाज़ का तरन्नुम, ये एक इजाफी चीज़ है। अगर किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी आवाज़ में तरन्नुम ज़्यादा है, तो यकीनन जब वो पढ़ेगा तो उसकी एक अपनी चाशनी और खूबसूरती होगी।
2: 1400 से ज़्यादा सालों से कुरान पढ़ी जाती आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि, लेकिन आज के दौर में कितना ज़रूरी है कि कुरान पढ़ने के साथ साथ कलाम पाक को समझना चाहिए।
3: बड़ी खूबसूरत आपने बात की। कुरान का जो है वो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, इससे कबल बल्कि इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वामु وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا। यकीन कुरान जो है वो मंबा रुश्त हिदायत है और क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए निजात का एक बेहतरीन ज़रिया है। जिस वक्त तक हम कुरान को सही पढ़ के, सही समझ के उस पर अमल पैरा नहीं होंगे, उस वक्त तक कुरान हमारे लिए निजात का ज़रिया नहीं बन सकता।
2: बेशक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि समझना बहुत ज़रूरी है और आप ट्रेनिंग भी देते हैं कुरान पर। कुरान शरीफ जो है वो इस्लाम की सबसे बड़ी किताब है और हमारे रसूल पर नाजिल फरमाई गई थी। आप हमें बताइए कि आप एक आलिम हैं, एक स्कॉलर हैं, और आपके नज़रिए से कुरान पाक का जो सबसे बड़ा दरस है वो क्या है।
3: बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। वाहतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकु, कि कुरान की जो रस्सी है, we have to catch the rope of the Allah, but and the rope of the Allah is the Quran. पूरी इंसानियत के लिए जो है इसमें दरस है, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक फ़र्द के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के आने वाले के लिए जितने भी लोग होंगे, जितने भी जो है वो अफराद होंगे, उन सब

0: के लिए जो है इसमें खूबसूरत दरस है। और लेकिन वो बड़ी बात सबसे यही है कि जिस वक्त हम कुरान को समझेंगे नहीं तो ये हमारे लिए दरस बन नहीं सकता। जब हम जिस वक्त तक इस पर अमल पैरा नहीं होंगे उस वक्त तक ये हमारे लिए निजात का जरिया नहीं बन सकता।
1: कारी साहब, अगर आपको हमारी नई नस्ल के लिए कलाम पाक के हवाले से आपको एक पैगाम देना हो तो आप क्या कहेंगे?
0: नई नस्ल के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो कुरान को पढ़ें, कुरान की तालीमात को आम करें। और आज बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि हमने कुरान की तालीमात को पसे पुश डाल दी है। और कुरान को जब हम आम करते हैं, जब हम कुरान को उसको पढ़ना सीखते हैं, तो यकीनन इसके साथ हमारे बहुत सारे जो मसाइल हैं उनका भी हमें हल नज़र आता है और हम एक पक्के और सच्चे मुसलमान बनते हैं। हमारा अल्लाह ताला के साथ हमारा एक क़ुर्बत का एक जो बेहतरीन ज़रिया है वो भी कुरान मजीद की रीडिंग है और कुरान मजीद की तालीमात पर अमल पैरा होना है। और उस वक्त तक हम मोमिन नहीं कहला सकते। देखें, कुरान एक अल्लाह ताला की एक ऐसी किताब है कि जिसका पढ़ना भी सवाब है, उसका मोहब्बत भरी निगाह से देखना भी सवाब है, उसको छूना भी सवाब है। तो यकीनन कुरान ही वो वाहिद किताब है जो हमारे लिए जो है उम्मत पूरी के लिए जो है वो निजात का बेहतरीन जरिया और सबब।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर क़ारी इकरमुल्ला मोहसिन साहब। आप मक्कतुल मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से एमडीसी के तआवुन से तिलावत कुरान के कौमी मुकाबले के ग्रैंड फिनाले में बतौर ख़ास मेहमान मुर्शद तशरीफ़ लाए हैं। ये कॉम्पटिशन कर रात इस्लामी सकाफती सेंटर ICC पोर्ट भी में किया जाएगा और कुल 9 फाइनलिस्ट हैं। हम आपको बता रहे थे विरासतों की हिफाजत करना, ये एक कार्यशाला का आज मुद्दा रहा। मार्च 2027 में नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल को राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा। फ्रांस की मदद से 3 ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। फ्रांस 1 मिलियन यूरो देगा। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट पर ये विवरण।
2: हमारी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए आयोजित कार्यशाला में अलग अलग तरह के कैमरों के जरिए इन पलों को रिकॉर्ड किया गया। अधिकारी बीते समय की इन निशानियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती हैं और इसी उद्देश्य से नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल को मार्च 2027 तक संसद में पेश किया जाएगा। मॉरिशस की इस पहल में मदद के लिए अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मॉरिशस यात्रा के दौरान फ्रांस के साथ एक समझौता तय हुआ था। इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है।
3: Nous disposons d'une enveloppe sur 2 ans qui est d'1 million d'euros.
2: दो सालों के लिए हम 2 मिलियन यूरो की धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। इस राशि का एक हिस्सा विशेषज्ञता अनुभवों का आदान प्रदान तथा धरोहरों का संवर्धन करने के लिए प्रयोग किया गया है। कार्यशाला में कई मंत्रियों, नागरिक समाज संस्थानों और पुलिस के प्रतिनिधि शामिल हुए। अलग अलग क्षेत्रों से आए इन प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव साझा किए ताकि हमारी सामूहिक समिति से जुड़ी इन धरोहरों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। इन सुझावों को एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जाएगा जिसमें विरासत प्रबंधन के विशेषज्ञ वैसौनिग्री भी शामिल हैं। जब धरोहरों के संरक्षण की बात करते हैं तो हम इलाके के प्रबंधन और विरासत के साथ उसके संबंध की भी बात करते हैं। इसमें विरासत को तोड़े जाने या उससे नुकसान पहुंचाने वालों से बचाव भी शामिल है। इसलिए इस परियोजना के लिए सभी संस्थाओं और मंत्रालयों को साथ लाना जरूरी है। मंत्री महेन गोंदिया कहती हैं, इस विधेयक की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे कई धरोहर हैं जिनका संरक्षण करना जरूरी है और इसके लिए बहुत खर्च होते हैं, पर इस सहयोग के माध्यम से वर्तमान कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस सहयोग की शुरुआत के लिए 3 ऐतिहासिक स्थलों की पहचान की गई है। इनमें ससिव सागर राम गुलाम बोटानिकल गार्डन, पुरानी सुप्रीम कोर्ट और मेबर्ग म्यूजियम शामिल है। विरासत से जुड़े इस प्रोजेक्ट में फ्रांसीसी साझेदारों का सहयोग अगस्त 2027 तक जारी रहेगा।
1: विदेश में फिलीपींस के पालावान राज्य में कश्ती में आग लगी। कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और 87 लोग जख्मी हुए। तटरक्षकों के मुताबिक 82 लोगों को बचाया गया जिनमें 38 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबरान शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर नवंबर के चुनावों में रिपब्लिकन्स की जीत हुई तो हर अमेरिकी नागरिक को $5,000 मिलेंगे। अपनी कार्यवधि के मध्य में पार्टी के पहले जुटाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया है।

और अब करते हैं मौसम की बात। मॉरिशस में कल सुबह 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। मस्करेंस के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में जोरदार एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ठंड महसूस की जा रही है और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात और कल सुबह बादल घिराएंगे, रह रहकर पूर्व और सेंट्रल प्लाटो में बारिश होगी और ऊंचे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। कल दिन के दौरान घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों में रह रहकर हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से हवाई ढलानों पर सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। समुद्र में लहरें उठेंगी 4 मीटर वाली, इसी वजह से समुद्र की हालत खराब रहेगी। सभी प्रकार की सावधानियां बरतने की मांग की जा रही है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ उतर सकती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 20 से 23, साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:10 पर सूरज उगेगा और शाम को 6:03 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी लुडोविक जोहांगिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब।

0: Avenue Konsami Mukami 85 साल के 85 years old श्री कृष्णदत्त सिबरन जो बाबा के नाम से ज्यादा जाने जाते थे और रॉयल कॉलेज क्यूपिप में पढ़ाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनके घर अवेन्यू कोंसामी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास नून रॉयल रोड कॉम्बे में 68 साल की 68 years old श्रीमती साकिला सोवांबेया पैदाइशी नाम लक्ष्मण जो सकीला के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है अर्थी कल शाम चार बजे इनके पति रमेश सोवांबेया के घर रॉयल रोड खोंबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिमा वैपिये खोंबे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 4 PM कोऑपरेटिव रोड लाफ्लोरा में 91 साल के 91 years old श्री केशवरदत्त दुबीजा जो चुनुन क्वाफिया के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी कल 11 बजे के बेटे राज दुबीजा के घर कोऑपरेटिव रोड लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोंबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM रॉयल रोड पिटी राफ्रे में 89 साल के 89 years old श्रीमती मिंत्रावती सिबा पैदाइशी नाम सोनियासी की मृत्यु हो गई है अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर रॉयल रोड पिटी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM मामजल जान गुडलैंड्स में 85 साल की 85 years old श्रीमती यशुमती लकू पैदाइशी नाम रामेश्वर जो दादी भानी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है अर्थे कल सुबह 10 बजे के बेटे संजीव लकू के घर मामजल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM जावियर रोड कास्काविल में 36 साल के 36 years old श्री केविन सोहराय जो कुनाल के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थे कल दोपहर के दो बजे इनके पिता मनोज सोहराय के घर जावियर रोड कास्काविल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बसोंश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM बुलाकी लेन मिडलैंड में 67 साल की 67 years old श्रीमती चंद्रिका सेलिन पैदाइशी नाम नेपाल जो गीता के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है अर्थे कल 11 बजे की मां साबिता नेपाल के घर बुलाकी लेन मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM न्यू रोड खुशनुआ में 89 साल की 89 years old श्रीमती परबावती महेश जो जिब्लोसो मैडम के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है अर्थे कल साढ़े दस बजे इनकी बेटी रानी हीरा के घर न्यू रोड खुशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट दुलास्को की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Check your time, guys. Studio ki ghar mein 6:31 ho chuke hain. Welcome in the third hour of this beautiful show, and that's your Raftaar Vibes. You'll feel me right with Megan Ishan, RMT Radio Masti. Thank you so much for tuning in, and wishing all of you once again a very good evening. Namaskar aur Ganesha ka pranam.
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: नैन शायद आपने भी झुका के रखा है और पलकों में शायद आपने सपने संजो के रखे हैं और आपके सपनों को साकार करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं एंड वी विल बी गिविंग योर ड्रीम्स विंग्स ताकि आप भी उड़ान भर सके। तो चलिए, अगर आपका सपना है एक प्यार भरी दुनिया तो ऑफ कोर्स ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और अगर आपने सपना देखा है कि आपका एक प्यार का घर ओंदा है, उस प्यार में बस उस घर में बस प्यार ही प्यार है, तो आप इसको हकीकत में तब्दील ज़रूर कर सकते हैं। वो है बाई putting so much of effort, और जब आप effort डालते हैं तो believe me, दिन ब दिन ये मोहब्बत, ये प्यार बेमतहा बेशुमार वाला प्यार बन जाता है। और चल, इश्क वाला लव सब लोग करते हैं, बट हमेशा हम कहते हैं ना कि प्यार अपने responsibility के साथ आता है। yes, love comes with a load of responsibility, और इस responsibility को shoulder करना बहुत ही difficult होता है। and प्यार में वही कामयाब होता है जो हमेशा इस responsibility को shoulder कर पाता है। तो चलिए, हम आपको ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालेंगे क्योंकि इवनिंग्स होते हैं बहुत ही स्लो, एंड इस स्लो इवनिंग में आप बस बैठे हुए हैं हमारे साथ हमारे गीतों को एंजॉय करने के लिए। तो चलिए, प्यार भरी बातों के साथ साथ आपके प्यार भरे मैसेजेस को भी हम वेलकम करेंगे ऑन 5499-1294 इज़ द मैजिकल नंबर जहाँ पर आपको अपने मैजिकल मैसेजेस हमें भेजना है। तो चलिए, आपकी राह देख रहे हैं और इवनिंग लाउंज ऐसे ही चलता रहेगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मैजिकल एंड म्यूजिकल जर्नी टिल 9 PM दिव्या के साथ।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: ऊपर वाला करे कि आपको कभी भी अपने प्यार के बिना रहने की नौबत ना आए आपको, एंड हम यही चाहते हैं कि हमेशा आपका प्यार आपके साथ रहे और दिन ब दिन ये प्यार को आप इंक्रीज कर पाए, एंड हम लव डोज को इंक्रीज करने के लिए लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक गाने आप लोगों के लिए। 7:19 हो चुके हैं। चलिए हमारी प्यारी सी पूनम इस वक्त कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ। उनका फ़ोन आया और सीधा पूछती है कि कैसी हो, लग तो रही है कि आवाज़ से ठीक नहीं हो। थैंक यू सो मच पूनम हमारा साथ देने के लिए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो स्वीट कि आपने हमें फ़ोन किया और सेहत के बारे में आपने पूछताछ की। एंड इस वक्त पूनम किचन में खाना नहीं बल्कि प्यार बना रही है, एंड अभी हमारी आपस में बात हो रही थी तो मैंने उनसे यही कहा कि दुनिया का खाना एक तरफ और माँ के हाथ का खाना एक तरफ, और चाहे आप क्यों ना भी कोई भी डिलीशियस खाना खा लें लेकिन माँ का के हाथ का खाना तो अलग ही है। सो थैंक यू सो मच कि आप हैं हमारे साथ कनेक्टेड, एंड द नेक्स्ट ट्रैक इज आउट स्पेशली फॉर योर स्वीट डॉटर एंड हमारी प्यारी सी पूनम के नाम भी। एंड चलिए कुछ और मैसेजेस हैं जो आपने बहुत ही प्यार से हमें भेजे हैं, एंड चलिए यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है। आज मेरी बेबी कियांश का बर्थडे है, 3 साल का हो गया है। विशेज कमिंग फ्रॉम पापा पुवेश, ममा है एशना, दादी फिया, चिमाम, चिपाप फ्रॉम नाना ज्वाला, नानी देवरानी, सभी अंकल की तरफ से वी हैव नीतीश, आंटी अनुषा, बहने हैं एंजल यानी अहना, लिया, पल्लवी, तुष्टि, भाई है लियान, फूफू रोशनी, फूफा उनके घर मामा और उनकी माँ मामून, मामू अंकुश, सभी दादी दादा कियांश को बहुत ही प्यार भेज रहे हैं एंड कहते हैं कियांश आवर लिटिल शोना, वी ऑल लव यू एंड ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ, मे यू ऑलवेज प्रॉस्पर इन लाइफ, एंड बहुत बहुत सारा प्यार कियांश को हमारी पूरी टीम की तरफ से भी, एंड टू ऑल दोज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे टुडे आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। सो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर। अगर आप इस वक्त प्यार की दुनिया में खोए हुए हैं तो आपको कहेंगे उधर ही रहिएगा, क्योंकि प्यार की दुनिया एकदम हकीकत से बेहतर लगता है। एंड हम कह रहे थे ना कि अगर आप अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में तब्दील करना चाहते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज कीप इंक्रीजिंग the dose of love.
1: Evening lounge.
2: Evening lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: बादलों की है साजिश, लेकिन हम तो कहते हैं कि बस प्यार की है साजिश। कहते हैं ना कि जब आप पूरी दुनिया से पूरे दिल से किसी को चाहते हैं तो उनको मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है, और इसको ही प्यार की साजिश कहते हैं। और इस साजिश में हमारे गाने भी शामिल हैं, एंड हम तो चाहते हैं ही कि आप हमारे गीतों को सुनें और प्यार में खोए रहें एंड प्यार में बहते चले। एंड कहते हैं ना कि एट टाइम्स वी डोंट नीड अ परफेक्ट प्लानिंग, वी जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो, और इस फ्लो में आप भी बहते चले जाएं हमारे साथ। चलिए यहाँ पर किसी का मैसेज आया है, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग, आई वांट टू डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर माय बड़ी दीदी वनीदा, आज उनका बर्थडे है, वो मॉरिशस में है, और आप हमें कनाडा से मैसेज भेज रही हैं। थैंक यू सो मच नील हमारा साथ देने के लिए, एंड आई होप यू आर डूइंग गुड एंड यू आर फिट एंड फाइन। तो आपकी बड़ी दीदी वनीदा को हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल दोस सेलिब्रेटिंग दिस स्पेशल डे टुडे। एंड चलिए यहाँ पर कुछ और खूबसूरत गीत हैं जो हमारे बर्थडे गर्ल्स एंड बर्थडे बॉयज़ को नजराने के तौर पर पेश करते आ रहे हैं, एंड हमारा ये साथ रहेगा टिल 9 PM, 9 बजे तक ऐसे ही दिल का हाल सुनने सुनाने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो आपके मैसेजेस का इंतज़ार एक बार फिर से ऑन 5499-1294। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बैठे रहते हैं और हमेशा उन अच्छे पलों के बारे में याद करते हैं, और उन अच्छे पलों को याद करते करते एकदम से आँखें नम हो जाती हैं। इसको कहते हैं खुशी के आँसू, और हम यही चाहते हैं कि कभी भी आपकी आंखों में आंसू आए तो हमेशा खुशी के आंसू ही आए। गम के आंसू को आप एक तरफ रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप अपने गम के बारे में सोचें। ट्राई टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितना आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, जितना भी आप ग्रेटफुल रहेंगे, आपको जिंदगी में क्या कुछ मिला है, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, इन चीज़ों के बारे में अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहेंगे तो ट्रस्ट मी आपकी जिंदगी में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहेंगी।
1: Evening Lounge. Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.
0: वैसे कहा जाता है ना कि you're never too much for the right person. क्योंकि जो सही इंसान होता है, जो सही शख्स होता है, वो परख ही लेते हैं आपके दिल को, आपके इस फितरत को। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी की सूरत से नहीं, किसी की सीरत से प्यार करना चाहिए। ब्यूटी फेड्स विद टाइम, बट द गुड नेचर, द काइंडनेस, द ह्यूमिलिटी, वो हमेशा बस उम्र भर साथ देता ही है। और कभी भी प्यार में सवाल जवाब तो बिल्कुल नहीं चलता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे दिल जीते आपका, आप ही बता दे रास्ता, तो एक रास्ता है, वो है उनके लिए डेडिकेशन भेजना on the magical number which is 5499-1294.

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: One of my favorites and I just know and guarantee के साथ कह सकते हैं कि इस गाने को सुनने के बाद इसका म्यूजिक जैसे ही शुरू होता है तो ये म्यूजिक नहीं मैजिक शुरू हो जाता है 747 ऑलरेडी एंड उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा ये गाना goes out to all the 90s lovers

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: बजकर 9 मिनट हो चुके हैं और आपकी नज़रों ने भी हमारे दिल को चोरी कर ही लिया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम कैसे परख लेते हैं, कैसे जान लेते हैं, तो भाई जिनसे आप प्यार करते हैं ना, उनको आप मन की आंखों से देखेंगे और दिल की गहराई से समझेंगे और परखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल ही जाता है। तो चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है, योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM। कुछ प्यार भरी बातों के साथ प्यार भरे गाने भी आपको सुनाते रहेंगे। इट्स अ वंडरफुल थर्सडे इवनिंग, 10 सितंबर 2026। ये महीने के 10 दिन भी ऐसे ही निकल गए हैं। आई जस्ट होप कि जो भी आपने सपने संजो के रखे हैं आप पलकों तले, आपका ये सपना हकीकत में ज़रूर तब्दील हो। बस थोड़ी सी मेहनत करनी तो बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं ना कि अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो ज़िंदगी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि जिंदगी में बस सोचे और बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलता है, इसके लिए काम करना पड़ता है। यू नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। और आप इतिहास के पन्नों को देखकर आपको पता चल ही जाएगा कि जिनके पास सब कुछ है, एक वक्त पे उन्होंने भी मेहनत की थी। इसलिए यू नीड टू लर्न टू रेस्ट व्हेन यू आर टायर्ड बट नेवर क्विट। चलिए आपके इस करेज को बूस्ट करने के लिए हमारे गाने हैं और साथ में हमारी खूबसूरत प्यारे से आपके मैसेजेस जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं 5499-1294।

पक्का कुछ तो हुआ है एंड आई एम वेरी श्योर कि कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हुआ है। अगर आपको प्यार है और किसी के लिए ख़ास पैगाम भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके खूबसूरत मैसेजेस का तो हम इंतज़ार कर ही रहे हैं। यहाँ पर किसी ने बीबी अरशद के लिए अगला गाना मांगा है और कहती है, यू आर नॉट जस्ट माई फेवरेट पर्सन, यू आर द ओनर ऑफ माई हार्ट, एक दिन हमारे बीच में दूरी नहीं बचेगी एंड हम साथ मिलकर ही रहेंगे एंड दिस इज़ फ्रॉम वाइफ रेबेका, थैंक यू सो मच। एंड एज यूजुअल हमारी प्यारी सी राधा जी ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा, आपका स्वागत है एंड थैंक यू सो मच राधा जी हमारा साथ देने के लिए। लवली प्लेलिस्ट एंड ऑसम बॉबी डियोल के गाने चल रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप मन ही मन मुस्कुरा रही हैं, मे बी फीलिंग नॉस्टैल्जिक एंड रिमेंबरिंग द ब्यूटीफुल एंड द गोल्डन डेज। नेक्स्ट गाना को साथ स्पेशली आपके फैमिली के लिए जो कैनेडा में है, मॉरिशस में भी हैं और आर एम टू लिसनर्स के नाम, थैंक यू सो मच प्यारी सी राधा जी, आपको भी हर हर महादेव और ऐसे ही साथ देते रहिएगा। 8:27 हो चुके हैं, टू ऑल दोस जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मे बी यू आर एट वर्क राइट नाउ, तो चलिए आपका काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा।

0: म्यूजिक सुनते सुनते, और गुड म्यूजिक का साथ हमेशा एक थेरेपी के साथ की तरह काम करता है. सो आई जस्ट होप कि आप अपने माइंड और अपने दिल को फ्रेश रख रहे हैं विद दिस ब्यूटीफुल गाने. तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ, वील कीप यू वेल एंटरटेन्ड टिल 9 PM.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: जी हाँ, 8:45 हो चुके हैं और चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ खूबसूरत मैसेजेस की ओर। यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली शेखर के लिए। कनेक्टेड है हमारे साथ फ्रॉम यूएसए, क्या बात है। एंड नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली फॉर योर लवली वाइफ संध्या, फॉर योर ब्यूटीफुल बेटी रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच शेखर जी आपको कि आप इतने प्यार से हमें सुन रहे हैं। एंड चलिए नेक्स्ट गाना गोज आउट ऑल दोज जो आपको जानते हैं। एंड साथ में ये अगला गाना उन तमाम लोगों के लिए जो शायद ड्राइव करके अभी घर वापस जा रही है, कभी कभी काम देर से ख़त्म होता है और वेट करते हैं आप कि कब घर जाना होगा, अपनों से मुलाकात होगी और बस बैठ कर थोड़ी बातें। जैसे हमेशा हम कहते हैं, आई नो कि आप लोग थके हारे घर वापस जाते हैं, लेकिन काम की थकान को घर के साथ मिलाना अच्छी बात नहीं होती है। बस आप जितने भी क्यों ना थके हारे होते हैं, अपनों का चेहरा देखकर, उनकी मुस्कुराहट देखकर थकान दूर भागी जाती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा और आप ऐसे ही फील करेंगे। एंड बस अपनों का साथ देते देते हमारा भी साथ देते रहिएगा, क्योंकि हम भी आपके ही अपने हैं।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: बिल्कुल दोस्तों, गाने में ज़िंदगी की सीख मिल ही जाती है। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, बस ज़िंदगी को इस तरीके से जिए कि हमेशा आपको बस अपने आज के बारे में ही सोचने का मौका मिले। एंड आपके अतीत में, आपके भविष्य में कुछ नहीं रखा है और उनके बारे में आप बिल्कुल ना सोचें। अतीत में आप रह नहीं पाएंगे और आपके भविष्य में आपका बसेरा उधर नहीं है, तो बचा आपका प्रेजेंट मोमेंट, जो आपको पूरा पूरा फोकस करना है। और जस्ट ट्राइंग टू मेक योर प्रेजेंट मोमेंट अ ब्यूटीफुल एंड अ स्पेशल वन बाय दिस ब्यूटीफुल गाने। और चलिए इसी के साथ इट्स टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी और आपकी मुलाकात कल फॉर योर फ्राइडे इवनिंग एक अलग ही मूड के साथ। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय एंड शुभ रात्रि।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

रात के हमारे जितने भी हम सफर हैं आप सबों का हम स्वागत करते हैं लेट नाइट ग्रूव। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मस्त मूड में हूँ और आपका साथ देने के लिए आई हूँ। सर्दी के इस मौसम में गर्मा गर्म गाने लेकर आई हूँ, एंजॉय करते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जो शुरुआत हुई है लेट नाइट ग्रूव रोमांटिक गीतों के साथ आपका मन कहीं ना कहीं खुश तो जरूर हो रहा होगा। तो चलिए विदिता का साथ देते चलिए और हमारे गाने गुनगुनाते चलिए आपके अपने रेडियो मस्ती पर।

रात का समय है, सर्द का मौसम है, सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म कप होगी अगर कॉफ़ी की और फिर उसके बाद ऐसे रोमांटिक गाने चले, हाय हाय क्या बात है, मूड तो वैसे ही बन जाता है। आपका बनाना

0: नचदी नची जाती नहीं थकदी रब दी सौ तू बड़ा जचदी नची जाती नहीं थकदी है।
1: जो लोग इस समय ड्राइव कर रहे हैं बी केयरफुल ऑन द रोड, आराम से गाड़ी चलाते हुए शीशे को थोड़ा सा नीचे कर ले, थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आएगी और फिर आपके बालों को लहराएंगी। हाँ हाँ, कभी कभी गालों को भी छू जाते हैं। और ये जो मौसम है ना भाई, ऐसे मौसम में गाने रोमांटिक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।

उम्मीद करती हूँ कि आपने डिनर कर लिया होगा। अभी तो काफी लेट हो गया है, डिनर जल्दी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि सेहत पे असर पड़ता है अगर लेट डिनर करते हैं। देर से डिनर करना, देर से सोना, कुछ

दिल से दिल की बातें पहुंच रही हैं हमारे गीतों के जरिए, रोमांस छाया हुआ है, लव इज इन द एयर। यस दोस्तों, विदिता आपके साथ हैं इस खूबसूरत मौसम में, आपके मूड को खूबसूरत बनाने के लिए, लविंग बनाने के लिए, आपको स्माइल देने के लिए। यह है आपका लेट नाइट ग्रूव्स विदिता के साथ।

अंजाम की फिक्र नहीं करते वो, जो डूबे रहते हैं आशिकों की जन्नत में। जाबाज होते हैं वो आशिक, जो तबाह हो जाते हैं इश्क प्यार और मोहब्बत।

तो दोस्तों रेडियो मस्ती पर ये जो रोमांस का मौसम छाया है इसमें हम चाहते हैं कि आप भी हमसफर बन जाइए, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके दिल में कुछ है महसूस करना चाहते हैं तो ये जो गाने हैं ना आपके फीलिंग्स को झंझोड़ के रख देंगे। हाय क्या कहें हम, दिल की बात जुबान तक लाने के लिए अगर आप रेडी हैं तो अगला गाना गुनगुनाने के लिए भी रेडी हो जाइए।

हम सफर थक के घर को चले। अब ऐसा करो, मूड थोड़ा बना लो, घर ही जाना है और कहीं नहीं जाना। ऐसा करो ना कि मूड थोड़ा बना लो, ताकि जब घर पे पहुंचो तो जो सामने वाली आपका स्वागत करे तो कम से कम आपके चेहरे पे एक स्माइल तो हो। तो इस स्माइल के लिए तो हम तो कुछ भी कर जाएंगे, और हम चाहते हैं कि जब आप घर पे जाओ थके हारे ना जाओ, थोड़ा सा तो स्माइल दिखा सकते हो, ताकि जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं उनका भी तो मूड बन जाए कि हाँ भाई, ये होती है बात कि कोई आपको देख के मुस्कुरा ले। तो आप भी मुस्कुराओ और मूड बनाओ। गाना सुनो, अगला गाना आप

चलो जी, अब हमारे जाने का टाइम हो गया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी विदिता आपके अपने लेट नाइट ग्रूव्स में. अब आपसे मुलाकात करेंगे एक अगले प्रोग्राम में. अभी के लिए तो मैं कहती हूँ टाटा बाय बाय. अपना ख्याल रखना, आराम से काम करना, ड्राइव कर रहे हो संभल के. एंड हाँ, जिन लोगों का मूड खराब था, हमारे गीतों से कुछ मैजिक हुआ? अरे हुआ तो बहुत अच्छी बात है. चलो मैं विदिता अब आपसे फिर मिलूंगी बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय, टेक केयर.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते